आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त 2026। प्रातः के 5:58 और ठीक 45 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, SP मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी CID जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और CBI जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC A और OBC B के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में OBC A और OBC B वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

पथ प्रदर्शक, शिष्य को ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करने वाला यानी गुरु, शिष्य का बेड़ा पार करा देने वाले गुरु की महिमा अपरंपार है।

सर्वत्र ज्ञान प्रसारित करने वाले हे गणपति, मुझे भी बुद्धि विवेक प्रदान कर, मेरा मन प्रकाशित कर। हे दाता, मेरा नमन स्वीकार करो।

अनर्गल प्रलाप और दूसरों की निंदा के द्वारा हे जिह्वा, तूने जो पाप संचित किए हैं उसमें सब कुछ भस्मीभूत हो सकता है। इसलिए वाचाल वृत्ति छोड़कर सतनाम का जाप कर, तभी तेरा उद्धार संभव है।

महबूब से रूबरू होने की रात यानी शबे मेराज। यहाँ वक्त गुजरता नहीं, ठहर जाता है। सुबह तब होती है जब बिना एक कायनात का इशारा पा जाती है।

हरिओम शरण और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। आइए सुनते हैं संगीतमय श्री रामचरितमानस गान।

भरत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें।

0: समाज में सबसे महत्वपूर्ण है सशक्तता। सशक्तता और सक्षमता दोनों सगी बहने हैं। क्षमा सच्चे अर्थों में ऐसी स्थिति को कहा जा सकता है जहां सशक्त या सक्षम व्यक्ति अपनी तुलना में अपने से कम सशक्त या सक्षम व्यक्ति को अपनी स्वेच्छानुसार क्षम्य होने का अनुभव कराए और उसका सम्मान कर क्षमा कर दे। वर्तमान में जीने के लिए, वर्तमान को जीने और उसमें विश्वास रखने के लिए स्वयं का विश्वास होना पूर्णतः अपेक्षित है। इसीलिए लोगों का विश्वास है कि क्षमा एक भाव नहीं, एक आस्था है। क्षमा विश्व की सबसे सक्षम भावना है, जिसमें शत्रु या विद्रोही को विजित करने की अद्भुत क्षमता है। आजकल क्षमा को लोग कमजोरी या कायरता के साथ मिलाकर देखने लगे हैं। स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में क्षमा सुहती उसी भुजक को जिसके पास गरल है को शायद हम भूल गए हैं। बहादुर ही क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है। शायद लोग भूल रहे हैं कि सक्षम सशक्त होने के बाद भी क्षमा करना किसी को महान बनाता है। क्षमा दान से बड़ा कोई दान नहीं है, यह व्यक्तित्व का अद्भुत गुण है। इसीलिए एक हिंदी कवि ने क्षमा बड़न को चाहिए कहकर क्षमा के महत्व को स्वीकार किया है। क्षमा देने के साथ साथ क्षमा मांगने का भी महत्व है। क्षमा मांगने से अहंकार गलता है, ढलता है। इसीलिए क्षमा विश्वास एवं परिष्कार का विधान है। मनीषियों का विश्वास है कि भीतर क्षमा तो क्षमा ही बाहर निकलती है। भीतर क्रोध हो तो क्रोध ही अभिव्यक्त होता है। क्षमा का जीवन में बहुत महत्व है। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल क्षमा के महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये भी कभी कभी निष्प्रभावी हो जाते हैं। स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने इसीलिए कुरुक्षेत्र में कहा है, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। इसीलिए संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की कहकर उन्होंने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार किया है। क्षमादानी और क्षमा प्रार्थी दोनों ही महान हैं, दोनों ही मानवता और सामाजिकता की अपेक्षा और आवश्यकता हैं। हमें मन से सशक्त और सक्षम बनना चाहिए, जिससे कि क्षमा प्रार्थी और क्षमादानी बनने की सामर्थ्य जुटा सकें। सामाजिक संरचना मात्र इसी आधार पर टिकी रहकर समाज के लिए उपयोगी और लाभदायक बनी रह सकती है। श्रोताओं, सशक्त बनिए और क्षमादान देने वालों की स्वर्णिम सूची में सम्मिलित होकर महान होने के लिए पंक्तिबद्ध होइए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। काव्यधारा के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्री करमवीर सिंह से उनका काव्य पाठ।
2: माँ शारदे को नमन करता हूँ। शीर्षक है वंदनम।

0: काव्यधारा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री करमवीर सिंह से उनका काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह की 6:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत में तत्पश्चात हिंदी में।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयकम् 26,000 सर्वसम्मत्या पारितम्। अनेन विधेयकेन निगमाय स्वकीयानि कार्याणि औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमन्यन्ते। अथ च राज्य सर्वकाराः सहकारिता विकास कार्य

0: ये संस्थापिताय कस्मैश्चित् अपि निकायाय अस्याः संस्थायाः वित्तीय साहाय्यं दातुम् अधिकृताः। एतद् अतिरिच्य संसदा संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां केरल इति राज्यस्य नाम परिवर्त्य केरलम् इति विधातुं केरल नाम परिवर्तन विधेयकं 26-2000 अपि स्वीकृतम्। अपरतः वैदेशिक अनुदानानाम् उपयोगम् अधिकाधिकं पारदर्शिकम् उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् आनीतम्। वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकम् 26-2000 विस्तृत सूक्ष्म परीक्षणार्थं संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् गृहमंत्री अमित शाहः लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला महोदयाय पत्रं लिखित्वा नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये प्रदर्शनकाले घटितानां विविधानां घटनानां उपरि पुनः एकवारं विस्तृत चर्चायै स्वकीयां सम्मतिं प्राकटयत्। संसद परिसरे पत्रकारैः सह सम्भाषमाणः मन्त्री अकथयत् यत् सर्वकारः स्वयं वदति यत् सः चर्चायै सन्नद्धः अस्ति तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति, किन्तु विपक्षः उत्तराणि श्रोतुं न वाञ्छति, चर्चायाश्च पलायनं करोति।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम रेल विभागस्य गैरातपुर अहमदाबाद खण्डे चतुर्मार्गीय उपरि सेतोः निर्माणार्थं 53-100 कोटि रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृतास्ति। रेल मन्त्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्यान्तर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां पुनर्निर्माणार्थं स्वीकृतास्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् रेल सेतु भागस्य समग्र दीर्घता 100-100 मीटर भविष्यति। अस्मिन् 53 मीटर परिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हरघर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मण्डल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्तिभावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्याम् एका विशाल तिरंगा नौकायात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वम् एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्रगतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण यात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते। भारत ऋतु विभागेन उत्तर बंगाल खात्याः उपरि न्यून चाप क्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशा राज्ये गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिक वृष्टिः भवितुम् अर्हति। ह्यः नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीय दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्ण पदकानि, एकं रजत पदकं, एकं कांस्य पदकं च प्राप्तम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखने

0: वो मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा की पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि लगभग 100 लोगों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना की बमबारी और गोलीबारी में कई नागरिक हताहत हुए और परिसंपत्ति का नुकसान हुआ। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। संगठन ने सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आइए सुनते हैं गर्भवती महिला का आहार विषय पर जानकारी।
4: लोग सोचते हैं कि एक स्त्री जब गर्भवती हो जाती है तो उनको लगता है कि इसको खूब खिलाया जाए। ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि भोजन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसके लिए। हरी सब्जियां और फल, जो भी मौसमी फल हैं, वो लेने बहुत जरूरी हैं। आपके भोजन में टोटल जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ाने जरूरी हैं। ये नहीं कि जो कैलोरी की मात्रा बढ़ाओ। एक नॉर्मल औरत

0: और एक गर्भवती स्त्री की कैलोरी में सिर्फ 300 किलो कैलोरी का अंतर है, जबकि पोषक तत्वों में बहुत अंतर है। तीन चीजों बहुत जरूरी है इसमें, एक तो प्रोटीन, कैल्शियम और आपके भोजन में जो खनिज लवण होते हैं। प्रोटीन के लिए आप चाहें तो मतलब अगर आप मांसाहारी हैं तो मांस या मछली लें, लेकिन अगर आप ये सब नहीं खाते तो अंडा खाइए दिन में एक या दो। अगर अंडा ये भी नहीं खा सकते तो आप अंकुरित दालें लीजिए या फिर पनीर के 4-5 टुकड़े डेली लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप महंगी चीजें लेंगे ही तो ही प्रोटीन मिलेगा, सस्ती चीजें हैं जैसे आप अंकुरित दालें, आप दाल को भिगो के उसको सुबह ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन की मात्रा है। साबुत दालें, सब तरह की दालें आप इनको अंकुरित कीजिए और फिर आप ले सकते हैं। कैल्शियम के लिए आपको जैसे है तो दूध जरूरी है, दूध से आपको पूरा कैल्शियम मिल जाता है। इसके अलावा जो आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगी वो भी आपको कैल्शियम की गोलियों की सलाह देंगे, लेकिन दूध एक गर्भवती स्त्री को दिन में कम से कम 1 या 2 लीटर दूध पीना आवश्यक है। इसके अलावा आपके जो आयरन होता है जिसकी नॉर्मल कमी बहुत पाई जाती है, तो इसलिए सस्ता उपाय जैसे आप पालक लीजिए, गुड़ लीजिए, ये बहुत जरूरी है, इनसे आपको कमी भी नहीं होगी। और आजकल तो सरकार हर जगह फ्री में आयरन की गोलियां सप्लाई कर रही हैं, वो सब भी आप ले सकते हो। हम नॉर्मल तौर पे मानते हैं कि प्रेगनेंसी में एक औरत का जो वजन है वो 11 से 12 किलो तक बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स जितने जरूरी हैं उससे ज्यादा लेंगे तो अकारण वजन बढ़ेगा, और जो वो वजन है वो आपका प्रेगनेंसी के बाद भी रहेगा, फिर उसको मतलब घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा नहीं लेनी है, जैसे खाने में मिठास बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मीठा खाना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और आलू चावल ये सब चीजें हैं, पर उनसे जरूरी जो पहली चीजें मैंने बताई हैं, प्रोटीन्स, कैल्शियम, हरी सब्जियां, फल, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। उसके बाद जो बाकी कैलोरीज बचती हैं वो हम फिर कार्बोहाइड्रेट से पूरी। पुरानी धारणाएं ये हैं कि घी के लड्डू बना के खिलाए जाते हैं या फिर ज्यादा घी वाला देसी घी से बनी हुई हलवा और ये सब चलाए, तो ये सब चीजें की वजन बढ़ाएंगी। तो इनकी जितनी मात्रा नॉर्मल लेडी लेती है ऑलमोस्ट उतनी, जितना मैंने बताया कि 300 कैलोरी बढ़ाना है हमें टोटल डाइट में आपके, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना। तो मतलब अगर आप सोचे कि इससे कोई फायदा होगा तो अलग से कोई फायदा नहीं करता। तो हम भी मानते हैं कि बाहर की चीजें साफ सुथरी नहीं बनी होती, तो अगर आपका खटाई चली चीजें गोलगप्पे या ऐसी चीज खाने का मन करता है तो घर पे बनाइए और स्वस्थ तरीके से खाइए, और खाना जो है थोड़ा थोड़ा करके खाइए। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं दोपहर के खाने में ही 3-4 रोटी खा लूं, 2-2 घंटे में कुछ कुछ थोड़ा बहुत लेते, कभी एक फल ले लिया, कभी दूध ले लिया एक ग्लास, कभी दही ले लिया, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति जो होती है औरतों की वो कम हो जाती है जब औरत गर्भवती होती है। तो अगर आप धीरे धीरे लेंगे तो वो पचेगा भी और आपको फायदा। पानी खूब पीना चाहिए, पानी की तरफ से कोई रोक नहीं है, पानी जितना पिएंगी आपको थकावट भी कम होगी, और कम से कम दिन में 8-10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। समय पे खाना बहुत जरूरी है, ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप प्रोटीन्स, कैल्शियम और उन चीजों पे ध्यान दीजिए। तो अगर आप रोटी कम भी खाएंगे, आपका मन नहीं भी कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी समय पे वही 2-2 घंटे में कुछ खाते रहिए। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो पहला मतलब हम कहते हैं भाग होता है गर्भावस्था का, उसमें उल्टियां आने की वजह से औरतें कम खाती हैं, और वो सोचती हैं कि मुझे उल्टी आ जाएगी मैं नहीं खाऊं, तो ये बात भी गलत है। अगर आप नहीं खाएंगी तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसलिए आप खाइए, उल्टी आ जाती है तो भी खाइए बार बार, और सुबह उठते ही जब आप बिस्तर से उठती हैं उससे पहले ही 1-2 बिस्किट या चाय ऐसा कुछ लेके उठिए, फिर दिन में थोड़ा थोड़ा करके 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ लेते रहिए। ड्राई फ्रूट्स जितना नॉर्मल हम लोग लेते हैं उतना ही लेना चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा कुछ मतलब लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा गर्भावस्था का हमारा एम है लास्ट में कि आप स्वस्थ हो, बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे गर्भवती महिला का आहार विषय पर जानकारी। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है अमरूद के बागों में समसामयिक कार्य। किसान भाइयों अगर हम फलों की बात करें तो फलों की खेती में अमरूद का विशेष महत्व है। यह भारत के प्रमुख व्यावसायिक फलों में शामिल है और अपनी अच्छी उत्पादन क्षमता, पौष्टिकता, बाजार मांग तथा अपेक्षाकृत कम लागत में उत्पादन के कारण किसानों के लिए महत्वपूर्ण फल फसल है। किसान भाइयों अगर हम अमरूद की बात करें तो अमरूद के बागों में समय समय पर किए जाने वाले कार्य, फसल की अच्छी वृद्धि,

0: स्वस्थ पौधों, गुणवत्तापूर्ण फलों और अधिक उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अमरूद एक ऐसी फल फसल है जिसकी उचित देखभाल करने पर लंबे समय तक उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन यदि बाग में समय पर निराई गुड़ाई, सिंचाई, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, कटाई छटाई, कीट एवं रोग नियंत्रण तथा फल तुड़ाई जैसे कार्य ना किए जाएं, तो पौधों की उत्पादकता और फलों की गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं। इसलिए किसानों को अमरूद के बाग में मौसम और पौधों की अवस्था के अनुसार समय समय पर आवश्यक कार्य करते रहना चाहिए। अमरूद की अच्छी खेती के लिए सबसे पहले बाग का नियमित निरीक्षण करना आवश्यक है। किसान सप्ताह में कम से कम एक बार पौधों को ध्यान से देखें और पत्तियों, नई शाखाओं, तने, फूलों तथा फलों की स्थिति का निरीक्षण करें। किसी पौधे में पत्तियां पीली पड़ रही हो, नई बढ़वा रुक गई हो, शाखाओं का सूखापन दिखाई दे रहा हो या फलों में छेद एवं सड़न दिखाई दे रहा हो, तो उसका कारण समय रहते पता लगाकर नियंत्रण करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में समस्या की पहचान होने पर कम खर्च में प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में वर्ष भर सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में भूमि की साफ सफाई और खरपतवार नियंत्रण शामिल है। खरपतवार पौधों के साथ पानी, पोषक तत्व, प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अधिक खरपतवार होने पर बाग में कीट एवं रोग का प्रकोप भी बढ़ सकता है। इसीलिए पौधों के आसपास की जमीन को साफ रखना चाहिए। छोटे पौधों में हाथ से निराई गुड़ाई की जा सकती है। बड़े बागों में आवश्यकता के अनुसार हल्की गुड़ाई या यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, अमरूद के पौधों में सिंचाई का विशेष महत्व है। गर्मी के मौसम में पौधों को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। साथ ही भैया, बरसात के मौसम में बाग में जल निकास की व्यवस्था विशेष रूप से अच्छी होनी चाहिए। यदि खेत में पानी जमा हो जाता है तो अमरूद की जड़ों को बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए वर्षा शुरू होने से पहले नालियां साफ कर लेना चाहिए और जहां पानी जमा हो वहां से निकासी का प्रबंध हमें कर लेना चाहिए। साथी भैया, अमरूद में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन पर भी समय समय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पौधे की उम्र, मिट्टी की उर्वरता, पौधे की अवस्था और उत्पादन क्षमता के अनुसार खाद एवं उर्वरकों की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। किसान भाई, अमरूद में शाखाओं की कटाई छटाई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यदि पौधे की सूखी, रोगग्रस्त, कमजोर और आपस में रगड़ खाने वाली शाखाओं को नहीं हटाया जाता है तो पौधे का अंदरूनी भाग बहुत घना हो सकता है। इससे प्रकाश और हवा का आवागमन कम होता है तथा कीट और रोग बढ़ सकते हैं। इसलिए समय समय पर सूखी, टूटी और रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर हटा देना चाहिए। किसान भाइयों, फूल आने के समय बाग का विशेष निरीक्षण करना चाहिए। इस समय पौधों में पर्याप्त नमी बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक सिंचाई से बचना चाहिए। फूलों के समय कीटों की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। फूलों पर अनावश्यक कीटनाशकों का छिड़काव करने से परागण करने वाले लाभकारी कीट प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए कीट की वास्तविक समस्या होने पर ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित उपाय करना चाहिए। इसके साथ ही भैया, बरसात के मौसम में अमरूद के बाग में रोग प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लगातार बारिश और अधिक नमी के कारण कई फफूंद जनित रोगों की संभावना बढ़ सकती है। गिरे हुए पत्तों और फलों को समय समय पर हटाना चाहिए। पौधों की शाखाओं को इतना घना नहीं होने देना चाहिए कि अंदर हवा और प्रकाश ना पहुंच सके। जल निकास की उचित व्यवस्था करने से जड़ों से संबंधित समस्याओं को कम किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें। कल हम फिर से एक नई खेती की बातों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। संध्या 4 बजे युद्धनायकों पर आधारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, रात 8 बजे संसद समीक्षा, रात 9:30 पर कंट्री वाइड तथा इनसाइट्स कार्यक्रम और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल में हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग, ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल और संध्या 6:50 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का छठा भाग लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। सूचना और मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ प्रसारित किया जाएगा सुबह 7

करीब 31 मिनट पर, प्रातः 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में आप सुनेंगे नरेंद्र के स्वर में रागनी। दिन में 11:30 पर सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1349वां भाग। दोपहर 1:15 पर महिला जगत के उड़ान हौसलों के क्रम में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अदिति सिंधु से भावना अरोड़ा की पूर्व प्रसारित बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही क्रम होगा आधी आबादी से। दिन में 1:45 पर लोकधारा में सुनिएगा रविंद्र वर्मा के स्वर में जौनसारी लोकगीत। संध्या 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में पर्यटन को समृद्ध करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना पर चर्चा होगी। शाम 5:15 पर युववाणी के कुछ खास है आज क्रम में आज का विषय होगा विश्व अंगदान दिवस। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के तहत 80वें स्वतंत्रता दिवस के रन अप पर विशेष कार्यक्रम होगा। गुफ्तगू बस यूं ही क्रम में स्टूडियो में आमंत्रित प्रतिभागी युवा मान्य राजपूत से उनकी पसंद और व्यक्तित्व के बारे में यूसुफा की बातचीत सुनवाई जाएगी। इसके अलावा बूझो तो जाने क्रम में हाइड्रोजन ट्रेन से संबद्ध सवाल पूछा जाएगा। संध्या 6:05 पर कृषि जगत में फसल बीमा योजना पर चर्चा होगी। संध्या 7:32 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे नुसरत अली और साथियों के स्वर में कव्वालियां। फिल्मी गीत हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे सवेरे 8:45 पर गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में। सुबह 10 बजे गीत तुम्हारे कार्यक्रम के तहत, सवेरे 11 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में, दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए में, दिन में 12:30 पर मिड डे मेलोडी के अंतर्गत, दोपहर 2:30 पर एक ही संगीत कार्यक्रम में सुनिएगा खयाम के संगीतबद्ध किए हुए गीत, रात 8:15 पर गीत संध्या कार्यक्रम में और रात 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। ये थी कार्यक्रमों की जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने के लिए संसद ने पारित किया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी, चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3।

0: नाम। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर जिले के बांसगांव ब्लॉक को मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला पुरस्कार। और प्रदेश में फिर मानसून सक्रिय होगा, 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी, जबकि लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। यह विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट किया।
0: इस बीच विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। संसद के दोनों सदनों ने कल विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया कल पूरी हो गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रक्रिया के दौरान 18 आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय चयन समिति ने पहले दिन करीब 10 आवेदकों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें रिटायर आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र, रिटायर आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल रहे। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभवों का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम 3 नाम की सूची तैयार करेगी। ये नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो के दूसरे दिन कल कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी की राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है।
3: देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगले दिनों में जैसा कि आपके अपने प्रेजेंटेशन में आया कि कंप्रेस्ड बायोगैस में भी हम देश में सर्वाधिक उत्पादन करें, यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर है।
0: कार्यक्रम में दूसरे दिन भी प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में गोरखपुर जिले का बांसगांव विकास खंड नंबर 1 चुना गया है। यह जानकारी नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में दी गई है।
4: इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोरखपुर को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का जोर समावेशी विकास के जरिए नागरिकों के जीवन में सुगमता और गुणवत्ता के वृद्धि और समग्र रूप में जीवन स्तर के सुधार पर होता है। इसके अंतर्गत 5 थीम स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत ढांचा और सामाजिक विकास के कुल 39 संकेतकों पर संबंधित आकांक्षी ब्लॉकों का मूल्यांकन किया जाता है। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: हर घर तिरंगा अभियान के

0: तहत प्रदेश के कई जिलों में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई। लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम मुख्यालय से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकली। बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल और अमरोहा में भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना है। हापुड़ जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को 2.5 लाख झंडे बनाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव अनवरपुर के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हेमलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान के लिए आभार जताया।
1: हमारे SSG अधिकारियों ने हमें 10,000 झंडे का टारगेट दिया था बनाने के लिए, हमने वो लक्ष्य पूरा किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ कार्य करने को मिला महिलाओं के लिए। और पहले गांव में महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, हम SSG से जुड़े तो हमें बाहर जाने का अवसर मिला और हम बहुत खुश हैं इस चीज।
0: स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश में युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए रंग दे बसंती अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत कल लखनऊ में विश्वविद्यालय के पास भित्ति चित्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने माफिया मुक्त और बदलते उत्तर प्रदेश की थीम पर सार्वजनिक भित्ति चित्र बनाए। इस अभियान के क्रम में आज मुजफ्फरनगर में कॉमिक वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज ही रंग दे बसंती अभियान का गीत डर से आजादी भी लॉन्च किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।
2: नशा किसी भी युवक की शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। यह व्यक्ति से उसका विवेक, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, परिवार का विश्वास और जीवन का उद्देश्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने का जन आंदोलन है।
0: प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश न होने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ रही है। कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की खबर भी मिल रही है। उधर मौसम विभाग आगामी 18 अगस्त तक मानसून के फिर सक्रिय होने और राज्य के कई जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना जता रहा है। इस बीच पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से मात्र 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहां बाढ़ से राहत के लिए विविध इंतजाम किए जा रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने के लिए संसद ने पारित किया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी, चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर जिले के बासगांव ब्लॉक को मिला पहला स्थान, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला पुरस्कार। और प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है।

0: स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: के साथ साथ।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में तिथि विशेष पर जानकारी, अंगदान को लेकर डर और अफवाह विषय पर चर्चा विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे पर जानकारी और फिल्मी सफर में वैजयंती माला के फिल्मी सफर पर प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही अखबारों की सुर्खियाँ होंगी और कार्यक्रम में फिल्मी गीत भी शामिल रहेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विश्व अंगदान दिवस विषय पर। श्रोताओं, आमतौर पर आर्थिक सहायता को ही दान के रूप में देखा जाता रहा है, जबकि वास्तव में दान का अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। अभयदान, जीवनदान, भूदान, रक्तदान, अंगदान आदि, इसकी सूची बहुत विस्तृत हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंगदान के बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया में हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है अंगदान दिवस। किसी व्यक्ति को अंगदान का महत्व समझाने के साथ ही अंगदान के लिए उसे प्रेरित करने हेतु सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। अंगदान दाता का अंग किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। मरीज में प्रत्यारोपित करने से पहले दिया गया अंग ठीक ढंग से सुरक्षित रखा जाता है, जिससे समय पर उसका इस्तेमाल हो सके। इस तरह दान किए गए अंग से किसी को नया जीवन मिल सकता है। एक रिपोर्ट बताती है कि विभिन्न व्यक्तियों के मुख्य क्रियाशील अंग के खराब हो जाने की वजह से प्रतिवर्ष कम से कम 5 लाख भारतीयों की मौत हो जाती है। भारत में अंगों की मांग और आपूर्ति के बीच कई गुना का अंतर है, जिसका कारण कम जानकारी और जागरूकता का न होना है। अंगदान करने से लेकर लोगों में बहुत सी अफवाहें और डर भी है। ज़्यादातर लोगों के पास अंगदान करने को लेकर जागरूकता नहीं है, जैसे कौन सा अंग दान किया जा सकता है, कब इसे दान करना है, कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो सकता है आदि इत्यादि। लोग अपने डर और मिथक या पारिवारिक दबाव की वजह से अंगदान करने की अपनी स्वतंत्र इच्छा को उजागर नहीं कर पाते हैं। कुछ समुदायों की परंपराएँ और पुराने नियम भी इस काम में बाधा डालते हैं। इंसानियत के नाते हमें इन तमाम बाधाओं से पार पाने की आवश्यकता है। आज के दिन को मनाने के संदर्भ में हमारी कोशिश होनी चाहिए अंगदान के प्रति समाज में फैली गलतफहमियों को दूर करना, अधिक से अधिक लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित और पंजीकृत करना, तथा एक दानदाता द्वारा कई जिंदगियों को बचाने के महत्व को उजागर करना, ताकि सभी जरूरतमंदों को सही समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। आज के दिन का यही सुंदर सा संदेश है, जिसे हम सबको आत्मसात करना है।

तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी।

0: ना पहचाने, मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाए।
1: दोस्तों, समाज में प्रचलित एक मुहावरा आपने ज़रूर सुना होगा, ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है, यानी जो काम आम लोगों के लिए मुश्किल है उसे मैं आसानी से कर लेता हूँ। ये एक तरह की गर्वोक्ति है। साथियों, बाएं हाथ से काम करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि सामान्यतः लोग दाहिने हाथ से ही काम करने के आदि होते हैं, लेकिन कुछ लोग विशेषतः लेफ्ट हैंडर्स होते हैं जो अपने सभी काम बाएं हाथ से करते हैं। लेकिन समाज में बाएं हाथ से काम निपटा लेने के मुहावरे को अपनी विशेष योग्यता की तरह साबित करने वाले लोग इन वास्तविक लेफ्ट हैंडर्स को हीनता का बोध कराने में पीछे नहीं रहते। श्रोताओं, आज इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे है, यानी उन लोगों के लिए एक खास दिन जो बाएं हाथ से लिखते हैं और उनका सारा काम बाएं हाथ से ही होता है। साल 1991 में इस दिन की शुरुआत हुई थी और हर साल 13 अगस्त को ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद उन लोगों में मौजूद हीन भावना को खत्म करना है जिन्हें लेफ्ट हैंडर होने के कारण उपहास का सामना करना पड़ता है। लोगों में लेफ्ट हैंडर्स के लिए जागरूकता और उनके साथ अच्छे ढंग से पेश आने के उद्देश्य से शुरू होने वाले इस दिन को आज एक नया मुकाम मिल गया है। आज एक नहीं बल्कि कई ऐसे

0: ही परिपक्व हो जाते हैं। अमेरिकी अपोलो मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में हर चौथा लेफ्ट हैंडर था। लेफ्ट हैंडर्स काफी तेज दिमाग और अधिक कल्पना शक्ति वाले होते हैं। बराक ओबामा, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जॉन मैकेंड्रो और प्रिंस विलियम बाएं हाथ से ही सारा काम करते हैं और कभी नहीं कहते कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: साथियों, आज हम बात करेंगे अपने जमाने की बहुत ही मशहूर हीरोइन वैजयंती माला के बारे में। वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को मद्रास में हुआ था। उनकी माँ वसुंधरा देवी भी तमिल फिल्मों की एक प्रमुख अभिनेत्री रही हैं। लेकिन वैजयंती माला अपनी सफलता का श्रेय अपनी नानी यदुगिरी देवी को देती हैं, जिन्होंने उनका लालन पालन करने के साथ ही उन्हें नृत्य की शिक्षा भी दिलाई, जो बाद में उनके करियर का आधार बनी। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उन्होंने पारंपरिक भारतीय नृत्य की प्रस्तुति के साथ स्टेज शो किया। इसके बाद वैजयंती माला ने भरतनाट्यम सीखा और 13 साल की उम्र में स्टेज पर इसका प्रदर्शन शुरू किया। फिल्मों में अपने अभिनय और कला के दम पर नए मानक स्थापित करने वाली इस शास्त्रीय नृत्यांगना ने उस दौर में नायिका के नृत्य को बहुत ही अहम बना दिया था। वेस्टर्न के साथ क्लासिकल डांस को मिलाकर वैजयंती माला ने नृत्य की अनोखी कला ईजाद की थी। वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा में स्टार का दर्जा हासिल किया था। 1949 में तमिल फिल्म वाजकई से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। तमिल संस्करण की भारी सफलता के बाद इसे 1950 में तेलुगु में जीवितम नाम से और 1951 में हिंदी में बहार नाम से बनाया गया था। मजेदार बात यह है कि इन तीनों ही संस्करणों में वैजयंती माला ने ही मुख्य भूमिका निभाई थी। वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण भारतीय हीरोइन थी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करने पड़ते थे। उन्होंने हिंदी में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी सीखी थी। 1954 में फिल्म नागिन में उनका अभिनय और उसके बाद 1955 में देवदास में चंद्रमुखी के किरदार को उन्होंने कालजयी बना दिया। इस फिल्म में वैजयंती माला के अभिनय को बहुत सराहना मिली और उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उनकी फिल्मों में देवदास, मधुमती, आम्रपाली, गंगा जमुना, संगम, नया दौर और नागिन प्रमुख हैं। वैजयंती माला को पद्मश्री, पद्म विभूषण और 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें 1996 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।

दोस्तों अब जान लेते हैं आज के दिन हो चुकी प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज गुरुवार 13 अगस्त है साल 2026 का 225वां दिन। 13 अगस्त 1784 को ब्रिटेन की संसद ने पिट्स इंडिया अधिनियम पारित किया, जिससे भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसके जरिए ब्रिटिश सरकार का भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के पास कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में जो कुछ किया वो आश्चर्यचकित करता है। एक बहादुर योद्धा और कुशल तीरंदाज के रूप में उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने कलकत्ता से बनारस तक सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर, गया में विष्णु मंदिर के अलावा घाटों, कुओं और बावड़ियों का निर्माण कराया। 13 अगस्त 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। 13 अगस्त 1863 को हरदोई में जन्मे गंगा प्रसाद वर्मा 1885 के कांग्रेस स्थापना अधिवेशन में यूपी से भाग लेने वाले मुख्य प्रतिनिधि थे। स्वामी रामतीर्थ से प्रभावित गंगा प्रसाद ने सन 1883 में पाक्षिक पत्र एडवोकेट के संपादन से अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था। आधुनिक लखनऊ के निर्माता कहे जाने वाले गंगा प्रसाद सभी धर्मावलंबियों के बीच मैत्रीभाव के प्रबल समर्थक थे। स्वतंत्रता सेनानी नरेंद्र मोहन सेन देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ढाका मेडिकल स्कूल में दूसरे वर्ष की पढ़ाई छोड़ क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ गए थे। उन्होंने 1911 में क्रांतिकारियों को रूस, जर्मनी जैसे देशों में भेजने की योजना बनाई और कृषि फार्म खोलकर उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। सन 1913 के बारिसाल षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किए गए नरेंद्र मोहन को पुलिस कभी सजा नहीं दिला पाई। नरेंद्र मोहन सेन का जन्म 13 अगस्त 1887 को जलपाईगुड़ी में हुआ था। आधुनिक नर्सिंग के जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने प्रेम, दया और सेवा भाव के कारण दुनिया भर में द लेडी विद द लैम्प यानी दीपक वाली महिला के नाम से मशहूर हैं। एक उच्च समृद्ध ब्रिटिश परिवार में जन्म लेने के बावजूद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लोगों की सेवा का मार्ग चुना था। सन 1845 में परिवार के भारी विरोध के बाद भी उन्होंने अभावग्रस्त लोगों की सेवा का व्रत धारण किया और अंत तक अपने इस फैसले पर कायम रही। 13 अगस्त 1910 को उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटेन

0: शेफील्ड शहर के एक धातु विज्ञानी हैरी ब्रैडली ने 17 अगस्त 1913 को स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। ब्रिटिश सेना के लिए बंदूकों और राइफलों की नाल को गर्म होने और घिसने से बचाने के लिए प्रयोग कर रहे हैरी ब्रैडली ने पिघले हुए लोहे में 12.8% क्रोमियम और 0.24% कार्बन मिलाकर ये जंग रहित इस्पात तैयार किया था। पहले इसे रस्टलेस स्टील नाम दिया गया और बाद में स्टेनलेस स्टील के नाम से ये जाना गया। अभिनेत्री, खाद्य तथा यात्रा लेखिका और टेलीविजन का जाना पहचाना नाम है माधुरी जाफरी। 13 अगस्त 1933 को दिल्ली में जन्मी माधुरी जाफरी को हिंदुस्तानी जायकों और व्यंजनों को दुनिया भर में पहुंचाने का श्रेय जाता है। उन्होंने एक दर्जन से अधिक कुक बुक लिखी हैं। सन 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित माधुरी जाफरी ने 15वें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का रजत पदक जीता था। वे रेडियो, टेलीविजन और मंच पर कई नाटकों में हिस्सा ले चुकी हैं। जर्मनी के स्टटगार्ड नगर में 22 अगस्त 1907 को हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए सुविख्यात मैडम भीकाजी कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थीं। उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका का दौरा कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे अपने क्रांतिकारी विचार अपने समाचार पत्रों, वंदे मातरम और तलवार में प्रकट किया करती थीं। दुनिया भर के साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने वाली भीकाजी कामा का निधन 13 अगस्त 1936 को हुआ। प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक योगिता बाली का जन्म 13 अगस्त 1952 को बंबई में हुआ था। सन 1971 में बनी फिल्म परवाना से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कुल 61 फिल्मों में काम किया। फिल्मों में ज्यादातर सहायक अभिनेत्री की भूमिका निभाने वाली योगिता ने किशोर कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे मशहूर अभिनेताओं के साथ लीड रोल में भी फिल्मी पर्दे को साझा किया। 1963 के 13 अगस्त को श्रीदेवी शिव काशी में जन्मी थी। 1975 की फिल्म जूली से बाल अभिनेत्री और 1979 में फिल्म सोलवा सावन से मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्मों में बेहतरीन डांस और अपनी अदाओं से दर्शकों पर जादू कर देने वाली सदाकारा ने चालबाज, मवाली, लम्हे, मिस्टर इंडिया, हिम्मत वाला, खुदा गवाह, नगीना और तोहफा जैसी बेहतरीन फिल्में की। श्रीदेवी को पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया था।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: दोस्तों, अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से महंगाई 19 माह के शीर्ष पर, इस सुर्खी के साथ दैनिक हिंदुस्तान। सोने चांदी के गहनों और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से जुलाई में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.45% पर पहुंचने की खबर देता है। खबर में बताया गया है कि महंगाई की यह दर बीते 19 महीनों के उच्चतम स्तर पर है। जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध तीनों आरोप सही पाए गए, जांच समिति। इस शीर्षक से प्रकाशित समाचार में दैनिक जागरण ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में संसद की जांच समिति द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाए जाने की खबर दी है। विपक्ष के विरोध और वापस लेने की मांग के बीच लोकसभा ने विदेशी योगदान संशोधन विधेयक FCRA 2026 संसद की 31 सदस्यों वाली संयुक्त समिति को भेज दिया है। विदेश से मिलने वाले पैसे की कड़ी निगरानी से संबंधित इस विधेयक पर विस्तृत खबर के साथ दैनिक अमर उजाला ने सुर्खी लगाई है FCRA JPC के हवाले।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजे हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप

0: पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
2: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ। समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
4: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोच के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स

0: आप मिलके आवाज उठाने लगे हैं एक दूसरे के साथ ताल मिला के, ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
2: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
4: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंग वस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
5: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
6: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर्न नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजीमाला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चोबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
7: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के

0: ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहे स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरली के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कलकत्ता हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल OBC सर्टिफिकेट्स इश्यूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय previous Trinamool Congress government in West Bengal. Punjab pharmacy officers' recruitment stayed by High Court over allegations of organized cheating. IMD predicts heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal due to formation of low pressure area over North Bay of Bengal. More than 30 civilians including women and children killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny.

0: की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी। जबकि पेपर लीक हुआ था, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने, छात्रों के सामने जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे उनके सामने सच्चाई आई है।
1: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के 14वें इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ उम्मीदवारों की तरफ से एहतजाज जारी है। उम्मीदवार इस इम्तिहान में हुई मुबैना बेजाबतगियों की गैर जिम्मेदाराना जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म फोरम की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें इस तहरीक की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एजाज दिए जाने की एक खसूसी तकरीब में 115 फनकारों को 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स अता करेंगी। इस मौके पर सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और सकाफत के वजीर मुमलिकत राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अकेडमी अवार्ड्स देने का सिलसिला 1952 से जारी है। ये एजाज न सिर्फ उम्दा कारकर्दगी और कामयाबी के आला तरीन मयार की अक्कासी करते हैं, बल्कि इनके जरिए उम्दा इनफरादी काम और अहम रोल को तस्लीम भी किया जाता है। एकेडमी फेलोशिप के एजाज के तहत 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि एकेडमी अवार्ड एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के साथ साथ 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल होता है। फेलोशिप और अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए अफराद मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और इस तरह वह पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। दिल्ली से ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: केरलम में यौम आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज रियासत में 3 मकामात पर मुसल्ला अफवाज की जानिब से मौसीकी से मुतालिक प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: बहरी और फजाइया के बैंड मौसीकी के जरिए मुल्क की यकजहती को फरोग देने के मकसद से आज तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और कोची में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। फजाइया का बैंड तिरुवनंतपुरम में निशा गांधी में, कोची जुनूबी बहरी कमांड का बैंड अन्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजिमाला नेवल अकेडमी बैंड कन्नूर के ताजवे चोवा में अपने फन का मुजाहरा करेगा। इन प्रोग्रामों का आगाज आज शाम 6 बजे किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: यौम आजादी से कबल पूरे मुल्क के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा मुहिम से लोगों में हुब्बुल वतनी का मजबूत जज्बा पैदा हो रहा है। पूरी रियासत में तिरंगा रैलियों और कई दीगर प्रोग्रामों का अहतमाम किया जा रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: यौम आजादी से कबल मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ रही है। ये मुहिम 9 अगस्त से 17 अगस्त तक मुनक्किद की जा रही है। इसका आगाज वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एक तिरंगा रैली के साथ किया था। इसके बाद रियासत भर में तिरंगा रैलियां, बाइक रैलियां और साइकिल रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेला, नुमाइश और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज रंगोली, पेंटिंग, मजमून नवेसी और हुब्बुल वतनी के नगमों के मुकाबलों का इनेकाद करके बच्चों और नौजवानों को इस मुहिम में शामिल कर रहे हैं। लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों, दुकानों और इमारतों पर कौमी परचम लहराने के लिए कहा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी कल तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के सूराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं, दर्जनों लोग जख्मी भी हुए हैं। एक बयान में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ग्रुप ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज और फजाइया ने सुराब के गुदर मोहल्ले और आसपास के सिविलियन इलाकों

0: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के आइंदा एपिसोड में आज हम विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से गुफ्तगू करेंगे, जो दुनिया की पहली हमा निस्वा फौजी बहरी मुहिम का हिस्सा थी, जिसके दौरान उन्होंने समंदरी रास्ते से दुनिया का चक्कर मुकम्मल किया। इस बातचीत को आज सुबह 9:10 पर 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। क्रिकेट में BCCI और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान भारत के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगा। ये सीरीज अगले महीने की 13 से 17 तारीख तक होगी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये सीरीज अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के टूर प्रोग्राम का हिस्सा है और ये मैच भारत में खेले जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर ओपोजिशन को नीट पेपर लीक पर बहस के लिए आमादा करने पर जोर दिया। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला के इस बयान को अव्वलियत के साथ सुर्खी बनाया है कि ओपोजिशन के तमाम सवालात का जवाब देने को तैयार हूं। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अहमियत के साथ शाये किया है कि एहतजाज के दरमियान FCRA तरमीमी बिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द JPC में बिल की दफात पर तफसीली गौर किया जाएगा। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त की रस्म इजरा के मौके पर वजीर आजम के इस बयान को अखबारात ने शह सुर्खी बनाया है कि साबिक सदर की जद्दोजहद और खिदमत एक काबिल तकलीद कहानी।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। गैर मुल्की एहतियात को मुंसबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द किया गया है। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा नए जाब्तों के तहत जारी किए गए सभी OBC सर्टिफिकेट मंसूख कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने मुनज्जम धोखाधड़ी के इल्जामात के तनाजुर में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती पर रोक लगा दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के सूराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। और क्रिकेट में BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज होने की तस्दीक की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

आशा भोसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म का गीत। गीत लिखा था साहिल लुधियानवी ने और संगीत था एन दत्ता का।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

शिकस्त फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के जुगल स्वर में आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी का लिखा गीत। दत्ताराम ने इस गीत की धुन परवरिश फिल्म के लिए तैयार की थी।

0: चंदन का एहसास।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

उजाला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और धुन थी शंकर जयकिशन की। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में छाया फिल्म का गीत। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन है सलील चौधरी की।

तलत महमूद की आवाज में आप सुन रहे थे छाया फिल्म का गीत। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और धुन सलील चौधरी की थी।

0: Çıkıda.
1: मेरी सूरत तेरी आंखें, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। शब्द रचना थी शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की थी।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म भाभी के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:15 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जालौन और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का।
2: जनपद जालौन में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों की मदद की जा रही है। प्रदेश सरकार की यह योजना अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता, मुफ्त शिक्षा और विवाह सहयोग प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत COVID-19 के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों को 4,000 रूपए प्रति माह की आर्थिक मदद मिलती है। अन्य कारणों से माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले अथवा बाल श्रम भीख मांगने वाले मुक्त कराए गए बच्चों को 2,500 रूपए प्रति माह दिए जाते हैं। DPRO सुरेंद्र पटेल ने बताया।
3: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जिसमें इन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों को खोया है, उनको हमारी सरकार कोविड से अक्षरित बच्चों को 4,000 रूपए प्रति महीने और कोविड से भिन्न अन्य कारणों से 2,500 प्रति महीने सरकार के द्वारा राशि प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य है कि उनकी शिक्षा स्वास्थ्य और के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जनपद जालौन को 1,273.96 करोड़ की लागत वाली 374 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 216 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 158 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, विद्युत, नगर विकास, पुलिस एवं राजस्व विभाग से जुड़ी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आयुष्मान भारत योजना

0: योजना कृषि एवं पशुपालन विभाग सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, आवास की चाबी, ऋण स्वीकृति, सोलर रूफटॉप स्वीकृति, कृषि यंत्र, गोल्डन कार्ड एवं अन्य सहायता सामग्री वितरण की गई। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के खातों में 13,14,30,000 रूपए की CCL, RF एवं CIF धनराशि हस्तांतरित कर महिला सशक्तिकरण और रोजगार की नई मजबूती प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जालौन को औद्योगिक, कृषि एवं निवेश के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, डाटा सेंटर क्लस्टर और MSME आधारित उद्योगों के माध्यम से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और डाटा सेंटर क्लस्टर जैसी परियोजनाएं लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगी। अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इस अवसर पर जनपद के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार, विधायक विनोद चतुर्वेदी, मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे मौजूद रहे। कोतवाली उरई पुलिस द्वारा जी हरियाणा निवासी ब्रजेंद्र मोर का अपहरण और हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त और घटना में साजिश में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया। इस बारे में पुलिस अधीक्षक जालौन ईशान सोनी ने बताया।
1: 4 मई 2026 को हरियाणा प्रांत के जीत जनपद के निवासी बिजेंद्र मोर के अपहरण के संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। अज्ञात अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए। अभियुक्तों के विरुद्ध 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसमें एक अभियुक्त मोहित मलिक वह गिरफ्तार किया गया है और एक महिला सपना उसको भी गिरफ्तार किया गया है। 120 का मूल्य मनाया गया।
0: प्रदेश के हर ग्रामीण घर तक नल में जल पहुंचाने के लक्ष्य में जुटी राज्य सरकार अब परियोजनाओं को पूरा कर मिशन मोड में ग्राम पंचायतों को हैंडओवर करने में जुट गई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने कदौरा विकासखंड के चमारी गांव में जल अर्पण कार्यक्रम कर ग्रामीण वासियों को नल से जल पहुंचाने वाली इस योजना की कमान सौंपी। बताया कि केन वेतवा लिंक परियोजना से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। किसान 3-3 फसलें ले सकते हैं।
2: जालौन जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का।
3: यूपी के हाथरस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 548 करोड़ की 143 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास तब होता है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हो रहे चौमुखी विकास का जिक्र करते हुए हाथरस के नए इंडस्ट्रियल एरिया में तेजी से आ रहे दोनों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इससे यहाँ रोजगार की संभावना प्रबल हो रही है। आलू किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में आलू प्रोसेसिंग केंद्र भी लगेगा, जिससे क्षेत्र में किसानों को उनकी उपज का सीधा लाभ मिलेगा और कोल्ड स्टोरेज की समस्या का समाधान भी होगा। उन्होंने कोसी कला में बने एक प्रोसेसिंग केंद्र का जिक्र किया और कहा कि आलू की अच्छी फसल के बीज के लिए आगरा में इंटरनेशनल सेंटर स्वीकार हुआ है और वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है। इससे किसानों का अच्छा उत्पादन होगा, लागत कम हो जाएगी और मुनाफा बढ़ जाएगा। जिलाधिकारी अतुल वस्त ने अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार के कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से संभव अभियान 2026 का आयोजन जुलाई 2026 से सितंबर 2026 तक किया जा रहा है। अभियान के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए शासन द्वारा विस्तृत संयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान का संचालन बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पंचायती राज विभाग के संयुक्त समन्वय में किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी को जनपद स्तर पर अभियान का नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो संबंधित विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए अभियान की समस्त गतिविधियों का समयबद्ध एवं सफल संचालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने संबंधित विभाग

0: अधिकारियों को एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे अभियान के दौरान निर्धारित दायित्वों का गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करें तथा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करें, जिससे जनपद को कुपोषण मुक्त बनाने के लक्ष्य को साकार किया जा सके। जिलाधिकारी अतुल बस ने जनपद के मध्य स्थलों की सूची को अंतिम रूप देने के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर विस्तृत चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मध्य स्थलों के संभाजन एवं प्रवर्तन से संबंधित प्राप्त शिकायतें एवं सुझावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव वित्त सभी मध्य स्थलों का संबंधित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जा चुका है। सत्यापन के दौरान प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का नियमानुसार परीक्षण एवं निस्तारण करने के उपरांत मध्य स्थलों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके पश्चात मध्य स्थलों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता निष्पक्षता एवं सुगमता के साथ संपन्न की जा रही है। श्रावण मास के अवसर पर तहसील समाधान दिवस के पश्चात जिलाधिकारी अतुल बस ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीव सिन्हा के साथ अलीगढ़ आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ यात्रा व्यवस्था को स्थलीय निरीक्षण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मार्ग पर आवश्यक स्थानों पर चेक पॉइंट स्थापित करने तथा भारी वाहनों को गए डाइवर्जन को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि कांवड़ यात्रा पूर्णतः दुर्घटना रहित ये सुचारू रूप से संचालित हो सके। तहसील शासनी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त अलीगढ़ मंडल संगीता सिंह ने जिलाधिकारी अतुल बस व पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी सिन्हा के साथ जन सुनवाई करते हुए फरियादियों की शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता पूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र के स्वर में रागनी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र के स्वर में रागनी।

0: नरेंद्र के स्वर में अभी आप सुन रहे थे रागनी। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है आपके अनुरोध पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। सभी श्रोताओं को ताहिर महमूद
1: और फरीना का
0: नमस्कार। श्रोताओं, आप लोग भी इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेशों के जरिए शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए नंबर बता रही हैं हमारी सहयोगी फरीना।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर सुन लीजिएगा, 9457078288। और श्रोताओं, अगर आप पत्रों के माध्यम से भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा पत्र हमारे इस पते पर, कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। तो ताहिर जी, क्यों ना पत्रों से ही आज कार्यक्रम शुरू किया जाए।
0: ठीक है, पत्र पढ़िए।
1: तो कार्यक्रम का ये पहला पत्र हमें भेज रहे हैं मंडावर करतपुर से बाबर इरफान और उनके परिवार के सदस्य। और जो कार्यक्रम का पहला गीत है उसी को सुनने के लिए ये फरमाइशी मैसेज हमें भेजा है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। और ये अगला मैसेज भेज रहे हैं हमें रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार।
0: आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश करते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां। कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से आप हैं नाना डोंगर दिवे, रमा ताई डोंगर दिवे, सीमा ताई डोंगर दिवे, रीमा ताई डोंगर दिवे, दीक्षा ताई डोंगर दिवे और राहुल डोंगर दिए। ये पत्र हमारे पास आया है अलीका डब्बाली से। अनुरोध करते हैं बसंत सिंह चन्न, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। मालवा रेडियो श्रोता संघ

प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से फरमाइश करते हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। तो आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, संदेश से पहले आप सुन रहे थे गीत। जो आपने सुना था वो था फिल्म पर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। आनंद बख्शी के गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी और साथियों ने।

0: मैजिक बॉक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, वारिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन थी राहुल देव बर्मन की। पसंद आप सब श्रोताओं की थी। तेलीपुरा रवाना, शिकारपुर बिजनौर से मोहम्मद यूनुस अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अताउर रहमान अंसारी, निरंजन सिंह सैनी और अब्दुल अजीज जिजवा। तेलंगाना भोगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया और उनके परिवार के सदस्य। ये पत्र आया था सरोज चौक उमरावती महाराष्ट्र से। अनुरोध करते थे कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से आप थे रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ये पत्र था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से। अनुरोध करने वाले श्रोता थे एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अल कमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम।
1: इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी थी पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक ने। इस गीत की ख्वाहिश की थी महफूज हसन, फिरदौस अंसारी, हुमा हिफ्जा, जिक्रा हबीबा हसन, चिट्टू ने, जिला अमरोहा, मोहल्ला कटरा मंडी धनोरा से। और यही गीत सुनना चाहते थे बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी, इरफान खान, जिला अमरोही, नई बस्ती, पतई खालसा से। इसी गीत को सुनना चाहा था शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। इसी गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी थी वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष, उनके साथ थे रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कवन और उनके परिवार के सभी सदस्य।

0: हस्तियां हैं, हाय कितने ये चेहरे हसी।
1: कार्यक्रम में अभी आप आपने सुना गीत आशा भोसले और जानी बाबू की आवाज में। इंडीवर के लिखे इस गीत की को संगीत दिया था बालू सीरानी ने और फिल्म का नाम था मैजिक बॉक्स। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म छोटे बाबू से। मदन मोहन के संगीत में इस गीत को आवाज दी है हेमंत कुमार ने और गीत के बोल लिखे हैं चंद्रशेखर पांडे ने और इस गीत के लिए ये फरमाइशी पत्र हमें भेजे हैं।
2: मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोरहारकर, नर्मदा पोरहारकर, सुनील पोरहारकर, साहिल पोरहारकर, अंश पोरहारकर और सुजाता पोरहारकर। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से वंदना मराठा, देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। ये पत्र था बागपत गांव चौहलदा से संजय ढींगिया, नमन मुस्कान और कुणाल का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और उनके परिवार के सदस्य। कालका से आप थे शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज।

0: छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, अंशुमन और उनके दोस्त। जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से फरमाइश करते थे अमर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा सैनी, अजय आंचल, विक्की आकांक्षा, आकाश सैनी, नैना मानवी, आयुषी और हीरावती देवी।
1: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए जो फरमाइश हमें मिली है वो भेजी है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक कुमार, अशोक वर्मा, राजकुमार बौड़ाना। ये मैसेज आया है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद का पाकुड़ झारखंड से, और उनके साथ हैं बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने। कोरिया से डोनब पाबो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गोरैया जालंधर से अशोक जाटव भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेज रहे हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बवलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, और डांगरी से बाबू राम जयपाल भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। ये अगला मैसेज हमें भेजा है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेरा, कोमल मेरा, किरण मेरा, कपिल मेरा, कुणाल मेहरा ने, और ये मैसेज हमें भेजा है नजीबाबाद से, इन्होंने भेजा है ये मैसेज, माफ कीजिएगा, ये मैसेज इन्होंने भेजा है परी महल कासगंज से, आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी, जाहिद अली, और उनके साथ हैं बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान। तो आइए श्रोताओं, इन सब की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: छोटे बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार के स्वर में। गीत लिखा था चंद्रशेखर पांडे ने और धुन थी मदन मोहन की। पसंद करते थे इस गीत को आप सब श्रोता। दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और उनके परिवार के सदस्य, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। ये पत्र आया था गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक और जयतेग बिरक के साथ मीका बिरक का। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, सरिता गवाणकर और प्रिंस एकांश गवाणकर। बहादुरा नागपुर से आप थे वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर परी। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये।
1: इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी थी कस्बा गुनौर लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, प्रकाश वीर राजपूत। डोंडी लोहारा बालोद से थे कमलेश जयपुरिया, शनि चौक खंडवा से पिंकी मिंकी शिक्की और रिंकी फरमाइश करते हैं। जेल रोड रायगढ़ से ये हसरत हमें लिख भेजी है लालचंद मिश्रा, रमेश चंद्र और कुमकुम मिश्रा ने। ये मैसेज हमें भेजा है डोंडी लोहारा बालो से राधिका तिवारी, पूजा तिवारी, अनुषी तिवारी, प्रभा तिवारी। जे लोड बक्सर से राज अंसारी, शिल्पी राज, उमा राज, इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अंसारी, बेबी अंसारी, यामिनी राज। और जे लोड रायगढ़ से हैं नरेंद्र यादव, महेंद्र, जानवी यादव। अगला मैसेज हमें भेजा है मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी ने।

0: मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। रोशन ने इस गीत की धुन तैयार की थी बरसात की रात फिल्म के लिए। इस गीत को पसंद किया था आप सब श्रोताओं ने। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी से मुस्कान रागिनी श्रीवास्तव और विनेश कुमार ने, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, ये संदेश था। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा का, मेन बाजार नेट और उत्तर प्रदेश से एम जुल्फकार राही, एम मुमताज राही, एम जुनैद राही, अलसबा गुल, गुलफिशा रानी, मोहम्मद अयान फरीदी और मोहम्मद कैफ फरीदी, शहबाजपुर कलां कस्बा पाकबाड़ा से आप थे मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईसा नाज, मुजक्किर बाबू, मजहर आसिम और सुमैया महक, रेलवे रोड गंज डूंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम और एम फारूक शेख ने भी इस गीत को पसंद किया था।
1: इंदौर से इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी थी पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना, मराठा देविका चौधरी, स्वाति प्रज्ञा चौधरी और उनके परिवार के सदस्यों ने। ये मैसेज आया था एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा का। ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरु शब्द। ये मैसेज भेजा है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति और संजीव बंटी जिंदल।

0: बलखाती शर्माती आ जा, लहरों सी लहराती आ जाओ कुड़ी ओ कुड़ी, बलखाती शर्माती आ जा,
1: आ जा, आ जा, आ जा।
0: दुपट्टा धनी ओढ़ के गली के हर मोड़ पे हंसे वो मुख।

0: उसने कहा था। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार सलील चौधरी थे। इस गीत को पसंद करते थे आप सब श्रोता। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। ये पत्र था मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से। फरमाइश करते थे पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमवती भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। पुराना शहर मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। ये पत्र था कंवर कॉलोनी बड़वाह से। पसंद करते थे गीत को प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। राज पैलेस मौनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार।
1: इसी गीत के लिए ये मैसेज हमें आया था ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत प्राजल, समीक्षा और आराध्या साहू का। ये मैसेज

हिना हेमलता लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से आपने ये मैसेज हमें भेजा था। इसी गीत के ख्वाहिशमंद थे हमारे श्रोता अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनीश्री बुरांडे। आपने मैसेज भेजा था गांव पांडर कवड़ा से। ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से मैसेज भेजा है। कृष्णा पार्क दिल्ली से मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना और उनके परिवार के सदस्य। ये मैसेज भेजा था हमारे श्रोता जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।

आशा भोसले के स्वर में आप सुन रहे थे मैजिक रिंग फिल्म का गीत। शब्द रचना थी जफर राही की और संगीत रचना सुरेश कुमार की थी। इस गीत के लिए अनुरोध किया था मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी ने। ये पत्र था यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से। अनुरोध करने वाले श्रोता थे दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार।

0: भास्कर और मुस्कान मालाकार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय। दुबेहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से फरमाइश करते थे अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। ये पत्र आया था मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से। गीत को पसंद करने वाले श्रोता थे विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनितापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लायसा कपूर, रामा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी, अरुणपुरी, नेहापुरी, एकतापुरी, शम्मीपुरी, बोधीपुरी, सुनीलपुरी, वीकेपुरी और आरएसपुरी ने।
1: इसी गीत के लिए ये ख्वाहिश पेश की थी मैसेज के माध्यम से बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर ने। महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, अलशिफा अंसारी, जसपुर रोड दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से इसी गीत की फरमाइश कर रहे थे। जैन मंदिर कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आस्ना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी भी इसी गीत की ख्वाहिश कर रहे थे।

0: रोशन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे देवर फिल्म का गीत। आवाज थी मोहम्मद रफी की और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में बनफूल फिल्म का गीत। गीत एक बार फिर आनंद बख्शी का है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। दोनों गीतों की मिलीजुली फरमाइश कुछ इस तरह से है। सुरेशवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि और सोहन बोरगांवकर। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्यों में मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। दौलतबाग मुरादाबाद से फरमाइश की थी जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी ने। बिलरामगेट कासगंज से आप थे हम असलम सैफी, जैबुलनिसा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान। जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज।
1: इसी गीत के लिए ये मैसेज हमें भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आप हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी, अदीब चौधरी, कादिर चौधरी। ये मैसेज भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से, विनोद खट से और उनके परिवार के सदस्यों ने। ये मैसेज हमें भेजा है नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनास, सलमा नाज, असद अरहम और मोहम्मद आलम हाशमी ने। और कार्यक्रम का ये अंतिम मैसेज भेजा है जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे बन फूल फिल्म का गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर।
1: श्रोताओ, दिन के 11 बज रहे हैं, अब आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। श्रोताओं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों में खुशी दे जाते हैं और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारी आंखें नम कर जाते हैं। जिंदगी में भी कुछ चेहरे हमारी आंखों में बस जाते हैं और कुछ नाम हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में उतरते जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है मगर कुछ सितारे हमेशा चमकते रहते हैं। श्रोताओं, आज का चित्रपट समर्पित है उस अभिनेत्री को जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिन्होंने अपने अभिनय से किरदारों में जान फूंकी, अपनी आंखों से भावनाएं कही, अपनी मुस्कान से अपने चाहने वालों का दिल जीता और अपने नृत्य से हर दिल को धड़का दिया। श्रोताओ, आज है 13 अगस्त और हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी की। आज उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर आइए उनके बेमिसाल सफर के कुछ सुनहरे पन्ने पलटते हैं और उनके यादगार किरदारों को याद करते हैं और साथ ही सुनवा देंगे आपको सदाबहार गीत जिनमें उन्होंने अपनी चंचलता, अदाएं और जादू दिखाया। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने पर्दे पर कदम रखा तो बॉलीवुड में बिजलियां ही गिरा दी।

आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म मिस्टर इंडिया में जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, श्रीदेवी का नाम आते ही आंखों में एक चुलबुली सी अदाकारा की तस्वीर सामने आ जाती है। उनकी हर अदा हर किसी को दीवाना बना देती है, चाहे वो मिस्टर इंडिया की सीमा हो या फिर चांदनी हो या फिर फिल्म नगीना की इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाने वाली एक खूबसूरत अदाकारा। उनका नृत्य, उनकी अदाएं, उनके चेहरे के बदलते भाव, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को वाकई में बॉलीवुड का नगीना बना दिया था। श्रीदेवी, जिनकी आंखों में शरारत थी, कदमों में बिजली थी और अदाएं ऐसी कि जिसकी हर कशिश देखकर दर्शक बस देखते ही रह जाते थे। नागिन फिल्म की इच्छाधारी नागिन के किरदार ने श्रीदेवी को इतना फेमस कर दिया कि फिर इसके बाद एक के बाद एक इच्छाधारी नागिन पर फिल्म्स बनी, लेकिन जो जादू श्रीदेवी का था वो भला किसी और का कैसे हो सकता है।

श्रोताओं, लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म नगीना में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, श्रीदेवी जिनके लिए ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं, वो आई तो पर्दे पर उजाला हो गया, वो आई तो पर्दे पर उजाला हो गया, एक मुस्कान से हर दिल उनका दीवाना हो गया। श्रीदेवी का नाम आया तो यूं लगा जैसे, श्रीदेवी का नाम आया तो यूं लगा जैसे सिनेमा का हर रंग और भी सुहाना हो गया। तो आइए कार्यक्रम को और सुहाना बनाते हैं और उनके रंग में आपको फिर रंग देते हैं उन्हीं की फिल्म के एक गीत से।

0: लता मंगेशकर, किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म हिम्मत वाला में। गीतकार इंदिवर और संगीतकार थे बप्पी लाहिरी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज का ये कार्यक्रम समर्पित है मशहूर अदाकारा श्रीदेवी पर। श्रोताओं, एक कलाकार का सफर फिल्मों में चलता रहता है, लेकिन एक दिन हर इंसान की तरह उसकी जिंदगी का सफर भी रुक जाता है। 24 फरवरी 2018 वो तारीख जब श्रीदेवी हमेशा हमेशा के लिए हमसे विदा हो गई। एक ऐसी अभिनेत्री जिसके चेहरे पर हमने हंसी देखी, जिसकी आंखों में हमने प्यार देखा, जिसके नृत्य में हमने जिंदगी की रफ्तार देखी, जिसके अभिनय में जाने कितने रिश्तों और भावनाओं को महसूस किया। चाहे कोई भी किरदार हो, श्रीदेवी को दर्शकों ने, उनके चाहने वालों ने हर किरदार में कबूल किया।

खुदा गवाह, इस फिल्म में आपने सुना मोहम्मद अवीज़ और कविता कृष्णमूर्ति को। संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। श्रोताओं, आज श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी चांदनी की धुन बजेगी, जब भी हवा हवाई पर कोई मुस्कुराएगा, जब भी सदमा की अदाकारी हमारी आंखें नम करेंगी, जब भी इंग्लिश विंग्लिश की शशि हमें अपना सम्मान याद दिलाएगी, तब तब श्रीदेवी हमारे बीच होंगी। क्योंकि सितारे आसमान से भले ही दूर चले जाएं, लेकिन उनकी रोशनी हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। श्रोताओं, श्रीदेवी वो सितारा है जिनकी चमक हिंदी सिनेमा के आसमां पर हमेशा बनी रहेगी। तो आइए कार्यक्रम के इन अंतिम लम्हों में हम सुनवाते हैं आपको उन्हीं की फिल्म लम्हे का ये गीत, जिसको आवाज़ दी है लता मंगेशकर हरिहरन ने, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है शिव हरि ने।

अभिनेत्री श्रीदेवी की अनगिनत यादों और गीतों से सजा आज का ये चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
2: जी
3: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशोसी वर्मा।
3: और पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
3: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गाँव में हुआ था।

0: वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
1: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
0: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
1: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
0: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
1: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कूल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
0: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
1: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
0: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
1: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
0: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
0: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
1: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
1: जी,
0: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचानें।
2: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
3: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।

0: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
1: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
2: कौन है?
3: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
2: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
3: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
2: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
3: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
2: ये इस शीशी में क्या है?
3: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
2: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
3: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
2: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
3: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
0: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
1: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
3: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
3: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश दे

0: इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
3: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम शोरवीर।

0: बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी 2 साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा बताओ हमें क्या करना होगा?
1: आजादी। अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
2: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं
3: सहेंगे।
0: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
4: My God, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
5: यस सर,
4: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर

0: इनकी बस्तियों में छोड़ दें।
1: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
0: थैंक यू सर।
1: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
0: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
1: सिपाही।
0: यस सर।
1: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
0: यस सर।
2: भागो।

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन,
2: दुश्मन। हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने घरों में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो चलो चलो चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
3: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
4: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
3: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे, फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
3: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।

0: करते हैं।
1: यस।
2: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा।
3: ये क्या हुआ सर?
2: कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था? इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूरवीर था। शूरवीर।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए अब सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत, सारे जहां से अच्छा।
5: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत ना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: अच्छा। अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनिएगा आज रात 10 बजे। रात्रि 8 बजे समय रहेगा संसद समीक्षा का और साप्ताहिक कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन सकेंगे शाम 4 बजे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारण किया जाएगा संध्या 6:50 पर। शाम 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में नुसरत अली और साथियों की आवाज में कुछ कवालियों का लुत्फ उठाइएगा। समय याद रहे शाम 7:32 पर।

किसान भाइयों के पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत में आप सुनेंगे अंकित सैनी द्वारा प्रस्तुत पगडंडी हरियाली तीज। वाचन और प्रस्तुति सहयोग रहेगा प्रमोद सिंह का। साथ ही सुनिएगा फसल बीमा योजना पर चर्चा। कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:05 पर। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे रोजाना की तरह ही 5:15 पर। कार्यक्रम में आज की सौगातें होंगी बूझो तो जाने कुछ खास है आज, नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, गुफ्तगु बस यू ही और बूस्टर्स। 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में पर्यटन को समृद्ध करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना की जानकारी लीजिएगा

दोपहर 1:15 पर महिला जगत कार्यक्रम में आज क्रम रहेगा आधी आबादी से और उड़ान हौसलों की का, जिसमें डॉक्टर अदिति सिंधु से भावना अरोड़ा की पूर्व प्रसारित बातचीत के साथ आप सुनेंगे विश्व अंगदान दिवस पर एक चर्चा। लोकधारा कार्यक्रम में रविंद्र वर्मा के स्वर में जौन सारी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा दोपहर 1:45 पर।

सैनिक भाई बहनों के लिए विशेष कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुनेंगे। हमारी इस सभा के अंत में यानी दोपहर 2:30 पर एक ही संगीतकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा, मशहूर संगीतकार खय्याम पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात 8:30 पर। गीत संध्या का समय रहेगा रात 8:15 पर। मिड डे मेलोडी दिन में 12:30 पर। और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आज शाम कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे अंकित सैनी द्वारा प्रस्तुत पगडंडी हरियाली तीज, जिसका वाचन और प्रस्तुति सहयोग रहेगा प्रमोद सिंह का। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 12:05 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे फिल्म हू तू तू से। आवाज थी लता मंगेशकर की। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी विशाल भारद्वाज ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में इंदिवर के लिखे गीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम है अंगारे। श्रोताओं, आज 13 अगस्त है और 15 अगस्त वक्त के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, जब तिरंगा हमारे दिलों में भी लहराएगा। हमारा देश सिर्फ सरहदों से नहीं बल्कि अपनी उस खूबसूरत तहजीब से भी पहचाना जाता है जो हमारे सैनिकों के दिल में बसी है। अलग अलग बोलियां, अलग अलग मजहब के ये लोग सिर्फ अपने देश के लिए जीते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मजहब उनका देश है। क्योंकि श्रोताओं, देश की बोलियों, मजहब और संस्कृतियों से मिलकर ही तो हिंदुस्तान बनता है। गंगा जमुनी तहजीब की ये खूबसूरती है जहाँ मंदिरों की घंटियों, मस्जिदों की आजान के बीच गुरुद्वारे से शब्द की आवाज सुनाई देती है। और इस साझा विरासत की हिफाजत के लिए हमारे ये वीर सैनिक सरहदों पर डटे रहते हैं। आजादी के पर्व की आहट के बीच आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को बयां करता है।

श्रोता, हमारे देश की आज़ादी का दिन 15 अगस्त जो नज़दीक ही है, वो सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस जज्बे का नाम है जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की लगन पैदा करता है। हमारे वीर सैनिक तो हर दम तैयार रहते हैं देश के लिए मर मिटने के लिए, लेकिन बात जब हमारी आती है तो हमें भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। श्रोता, हमारे जवानों के दिल की जो धड़कन है, अगर वो हमारे दिल में भी धड़कने लगे तो देश की तस्वीर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। देश की मिट्टी की हिफाजत की लगन

यलगार। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज, नितिन मुकेश, सुरेश वाडेकर और साथियों को। शब्द रचना थी सुदर्शन फाकिर की और संगीत रचना चन्नी सिंह की। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म माँ तुझे सलाम से, जिसको आवाज दी है शंकर महादेवन ने। गीत रचना है समीर तेजपाल और विक्की सागर की। संगीत बद किया है साजिद वाजिद ने। श्रोताओं, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया, जिस वतन ने हमें पहचान दी, उस मिट्टी को माँ कहकर पुकारना, उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना, इससे बड़ा जज्बा भला क्या होगा। सरहद पर खड़े हमारे वीर यही तो अपने वतन के लिए करते हैं। उनका वतन सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, वो माँ है जिसकी उन्हें रक्षा करनी है, जिसकी रक्षा के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते। तो आइए कार्यक्रम के अंत में उनके अदम्य साहस और बलिदान को दिल से सलाम करते हुए सुनते हैं ये गीत।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। मिड डे मेलोडी सुन रहे सभी श्रोताओं का हमारे आज के कार्यक्रम में स्वागत है। और श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम हमने सजाया है उन खूबसूरत अदाकारों से जिनका आज जन्मदिन है। उनकी अदाकारी हमारे दिल में बसी है, क्योंकि श्रोताओं, कुछ अदाकार ऐसे होते हैं जो वक्त की गलियों के साथ साथ वक्त उन्हें आगे तो ले जाता है, लेकिन उनके गीत संगीत आज भी हिंदी फिल्म सिनेमा को महकाते रहते हैं। हम याद करेंगे आज हिंदी फिल्म सिनेमा की 3 ऐसी ही अदाकाराओं को, जिन्होंने अपनी अपनी अदा से, अपने अपने अंदाज और अपने अपने दिलकश किरदारों से अपनी अलग पहचान बनाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अदाकारी की, अदाकारा की, जिनके लिए अभिनय और नृत्य दो अलग अलग हुनर नहीं बल्कि खूबसूरत अभिव्यक्ति के दो रंग थे। और उस महान अदाकारा का नाम है विजयंती माला। विजयंती माला जिनका आज जन्मदिन है। पर्दे पर उनकी मौजूदगी में एक खास गरिमा हुआ करती थी। उनकी आंखें भाव कहती थी और उनका नृत्य कहानी कहता था और उनकी मुस्कान तो पूरे दृश्य को रोशन कर देती थी। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में उन्होंने नागिन, नया दौर, देवदास, गंगा जमुना, संगम और ज्वेल थीव जैसी न जाने ऐसी कितनी फिल्में बनाई जिनकी भूमिकाओं को आज भी भुलाया नहीं जा सकता।

ज्वेल थीफ। इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी एसडी परमन ने। श्रोताओं, आज वैजयंती माला अपना 93वां जन्मदिन मना रही हैं और जब उनका जिक्र हो तो उन गीतों को कैसे भुलाया जा सकता है जिसमें उन्होंने शरारत दिखाई और कभी चंचलता। शायद इसी वजह से ही उनको इतना पसंद किया जाता था, चाहे भारतीय शास्त्रीय नृत्य हो या फिर अदाकारी, वो हर किरदार में डूब जाती थी। तभी तो वो भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म सुपरस्टार मानी जाती थी। 1950 और 1960 के दशक में वो सबसे अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक थी। इसलिए उनको भारत सरकार द्वारा साल 1968 में पद्मश्री और 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आइए कार्यक्रम के आगे सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज में उनके अभिनय से सजा फिल्म संगम का ये गीत, जिसको संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने और गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आप सुन रहे हैं मिड डे मेलोडी कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और श्रोताओं कार्यक्रम के सफर को अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं उस दौर में जब बड़े पर्दे पर अनीता राज की खूबसूरत मुस्कान और सहज अदाकारी दर्शकों के दिल में जगह बना रही थी। जी हां, अनीता राज, जिनका आज जन्मदिन है। आप प्रसिद्ध अभिनेता जगदीश राज की बेटी हैं। साल 1981 से प्रेम गीत फिल्म से फिल्मों में डेब्यू करने वाली अनीता राज ने अनगिनत फिल्मों में काम किया। 80 के दशक में फिल्मों में अनीता राज ने रोमांस से लेकर भावनात्मक किरदारों तक अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी खूबसूरती में एक सादगी थी और अभिनय में एक सहजता जो उन्हें दूसरी अभिनेत्रियों से अलग बनाती थी। हालांकि वो अब फिलहाल फिल्मों में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन पर नजर आती हैं। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं उन्हीं पर फिल्माया फिल्म गुलामी का ये गीत, जिसको आवाज दी है लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार ने गीत के बोल लिखे हैं, गुलजार ने, और धुन तैयार की धुन

श्रोता, अभी आपने गुलामी फिल्म का गीत सुना जो फिल्माया गया था अभिनेत्री अनीता राज पर, और साथ में उनके थे मिथुन चक्रवर्ती। और श्रोता, आपको पता है आज मिथुन चक्रवर्ती की जीवन संगनी का भी जन्मदिन है। अनीता राज के बाद हम उन्हीं की बात करेंगे। श्रोता, अनीता राज जिनकी फिल्में आज भी हम सबको याद हैं, उनके किरदार भी याद हैं, उनकी प्रेम गीत फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है नौकर बीवी का, जिसमें उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र के साथ नटखट सा अभिनय किया। आज उनके जन्मदिन पर

जमीन आसमान, इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। गीत के बोल थे अनजान के और संगीत निर्देशन किया था आरडी वर्मन ने। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की जीवन संगनी का जन्मदिन है और उनका नाम है योगिता बाली। श्रोताओं, योगिता बाली 13 अगस्त 1952 को जन्मी थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा के सफर के दौरान कई यादगार भूमिकाएं निभाई। उनका नाम आते ही 70 के दशक का वो दौर हमारी आंखों के सामने आ जाता है जब फिल्मों में मोहब्बत को बड़ी ही खूबसूरती और सादगी के तरीके से दिखाया जाता था। योगिता बाली की खूबसूरती की खास बात ये थी कि उसमें बनावटीपन नहीं था, बल्कि एक प्यारी सी सादगी सी नजर आती थी। यही वजह है कि उनके ऊपर फिल्माए गए गीत अपने चाहने वालों को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो चलिए हम भी खींचते हैं उनके गीत की तरफ, जिसे हमने लिया है फिल्म मेम साहब से।

0: श्रोताओ, फिल्म चौकीदार का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में इसको लिखा था वर्मा मलिक ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है चौकीदार और गीत रूप दिया है राजेंद्र कृष्ण ने। इस पर अभिनय किया है योगिता बाली ने। योगिता बाली, जिनका दिलकश अंदाज सबके दिलों को जीत लेता है। आइए सुनते हैं गीत जिसमें दो दिलों के करीब आने की कहानी है, जिसमें प्रेम को शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से और अभिनय से बयां किया गया है।
1: चलूं मैं जिधर से,
2: अच्छा जी

0: श्रोताओं, आज का ये खूबसूरत बस अब यहीं पर संपन्न हो रहा है। हमने आज सिनेमा की तीन अलग अलग रंगों वाली अदाकाराओं वैजयंती माला, अनीता राज और योगिता बाली के फिल्मी सफर को याद किया। उन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
3: इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवियों और सज्जनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षता को कला के व्यापक संस्कार में स्थान
1: दिया है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
4: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के

0: ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कल रियासत के कई अजला में तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया। लखनऊ में मेयर सुषमा खरकवाल ने लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर से गांधी मुजस्मे तक तिरंगा यात्रा की कयादत की। बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल और अमरोहा में तिरंगा यात्रा में तलबा और मकामी बाशिंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। काबीना के वजीर राकेश सचान ने कानपुर देहात में तिरंगा यात्रा की कयादत की। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों में कौम परस्ती और इत्तेहाद के जज्बे को तकवीत देना है। यौम आज़ादी से पहले रियासत में नौजवानों को तख्लीकी इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है। इसका मकसद के लिए रंग दे बसंती मुहिम शुरू की गई। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कल लखनऊ के एक यूनिवर्सिटी के करीब एक ग्राफ्टी तकरीब में इनेकाद किया गया। फनकारों ने माफिया से पाक और बदलते उत्तर प्रदेश के मौजू पर अवामी ग्राफ्टी बनाई। इस मुहिम के हिस्से के तौर पर आज मुजफ्फरनगर में मजाहिया तकसीम मकालमे का प्रोग्राम मुनक्द किया जाएगा। रंग दे बसंती मुहिम का गाना डर से आज़ादी भी आज ही लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार श्रोता बहनों, कहते हैं आसमान की कोई सीमा नहीं होती और जब उड़ान हौसलों की हो तो मंजिल भी दूर नहीं होती। इन्हीं प्रेरणादायी खूबसूरत पंक्तियों से स्वागत करते हैं हमारी सभी बहनों का कार्यक्रम महिला जगत में। और बहनों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रही होंगी, सभी स्वस्थ होंगी। और बहनों, आज मैं आपके साथ हूँ प्रियंका त्यागी। बहनों, आज कार्यक्रम में बात करेंगे देश की उस बेटी की, महिला की, जिन्होंने अपने हौसलों को पंख दिए और साबित किया कि अवसर मिले तो महिलाएं भी हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं। तो बहनों, जुड़ी रहिए हमारे साथ और सुनती रहिए कार्यक्रम महिला जगत। बहनों, कहते हैं इंसान इस दुनिया से चला जाता है लेकिन उसके अच्छे कर्म उसे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखते हैं। अंगदान करना भी एक ऐसा ही महान कार्य है जिसके माध्यम से मृत्यु के बाद भी किसी जरूरतमंद को जीवन की नई उम्मीद दी जा सकती है। आज दुनिया भर में ऐसे बहुत से पीड़ित हैं जिन्हें हृदय, किडनी, लीवर, फेफड़े या अन्य अंगों के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। विश्व अंगदान दिवस, जो कि आज संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है, हमें याद दिलाता है कि अंगदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया मात्र नहीं है बल्कि मानवता और जीवन के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। विश्व अंगदान दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना, अंगदान से जुड़े भ्रम को दूर करना और अधिक से अधिक लोगों को जीवन बचाने के लिए प्रेरित करना है। बहनों, विश्व अंगदान का दिवस इतिहास चिकित्सा विज्ञान की एक बड़ी सफलता है। दुनिया का पहला सफल अंग प्रत्यारोपण 1954 में अमेरिका में हुआ था, जिसमें पहली बार गुर्दे का सफल प्रत्यारोपण किया गया। इसके बाद से आज तक अंगदान के द्वारा कई जिंदगियों को बचाया जा रहा है। बहनों, हमें समझना होगा कि अंगदान केवल किसी एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदलता बल्कि उसके परिवार को भी एक नई उम्मीद देता है। तो आइए विश्व अंगदान दिवस पर हम इसके बारे में और संकल्प लें, क्योंकि जीवन केवल जीने का नाम नहीं बल्कि किसी और के जीवन में उम्मीद जगाने का नाम भी है। श्रोता बहनों, इस खास दिवस के साथ अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये संदेश।

0: हर पल चंदन का एहसास।
1: अभी हम सुन रहे थे ये संदेश। बहनों कहते हैं सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान मुश्किलों से लड़ना और लगातार मेहनत करना जानता है। बात करें अगर खेल के मैदान की तो जीत केवल पदक मात्र नहीं होती बल्कि वह वर्षों की मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। हमारे क्रम आदि आबादी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी युवा खिलाड़ी की जिन्होंने जूडो के मैदान में अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। उनकी कहानी है दृढ़ हौसलों और हिम्मत से मुकाम हासिल करने की। तो बहनों सुनते हैं हमारा क्रम आधी आबादी। हमारे आज के आधी आबादी क्रम में हमारी प्रेरणादायक नायिका है भारत की युवा जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के दम पर कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। बहनों सीमित संसाधनों वाले एक साधारण परिवार से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना आसान नहीं था उनके लिए, लेकिन अस्मिता ने साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। बहनों त्रिपुरा के बेलोनिया में जन्मी अस्मिता डे का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। 22 मार्च 2003 को एक साधारण परिवार में अस्मिता डे का जन्म हुआ। इनके पिता अर्जुन कुमार डे एक साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते थे। तीन भाई बहनों का पालन पोषण और सीमित आय होने के बावजूद भी अस्मिता डे ने कठिनाइयों को पार करते हुए विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। अस्मिता ने अपने खेल जीवन की शुरुआत दौड़ के मैदान से की और उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा और ताकत रहे उनके पिता, जिन्होंने अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने में भरपूर योगदान दिया। बहनों अस्मिता ने अपने करियर की शुरुआत 800 मीटर धावक के रूप में की थी और जिला स्तर पर उनके प्रदर्शन के लिए बहुत से मेडल भी मिले, लेकिन बाद में उनकी रुचि जूडो में बढ़ी और उन्होंने इसी को अपना लक्ष्य बना लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र में हुआ। धीरे धीरे अस्मिता ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बनाई और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। लेकिन बहनों जीवन हमेशा आसान नहीं होता। इस जीत के पीछे भी एक भावुक कहानी छिपी है। प्रतियोगिता से कुछ महीने पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था, जो कि अस्मिता के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। जीत की खुशी में भी बहुत गम था। बहनों सुनते हैं।
2: मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते थे, उसके बीच में मेरे को नी में इंजरी भी हुई थी, तो पापा मेरे लिए दिल्ली आए थे, मेरे लिए दवाई दुवाई लगाए, सब कुछ मतलब हेल्प किए थे। पापा बहुत सपोर्ट करते थे, मम्मी पापा दोनों ही। मम्मी को कम ही समझ आता है, पर पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते थे। बट अचानक मेरे पापा ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गई थी 2025 दिसंबर में, तो उसके बाद मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी।
1: एक प्रेरणादायी पिता का जाना अस्मिता के लिए बहुत बुरा था और एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में उनकी मां ने उन्हें संभाला और पिता के सपने को पूरा करने की प्रेरणा दी। बहनों यही हौसला उन्हें फिर से जूडो मैट तक ले आया और अस्मिता डे ने इतिहास रच दिया। जूडो के प्रति उनका लगाव बचपन से ही रहा है। खेलों के प्रति अस्मिता के विचार और इन्होंने कैसे शुरुआत की, सुनते हैं उनकी इस यात्रा के बारे में।
3: मैम मैंने जब मैं छोटी थी क्लास 4-5 में, तब से मैंने जूडो करी थी। तो मतलब पहले मैं एक दो दिन ऐसे खेली थी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुछ हुई थी तो उसमें मैं जीत गई थी। तो फिर उसके बाद और एक दो हफ्ते ट्रेनिंग करी थी जूडो, ऐसे मतलब दो टेक्निक आती थी मुझे पकड़ना और बस ही। तो मैं मेरे अंदर मतलब छोटे टाइम से एक एग्रेसिव वो था जीतने का, मतलब चाहे कोई भी हो बस ऐसे मतलब मारना है करके। तो फिर उस टाइम से मैं फिर आगे स्टेट जीती ऐसे कर करके, फिर मैंने एक साल के अंदर नेशनल भी चली गई थी, मतलब स्कूल नेशनल गई थी दिल्ली में। उसके बाद मैम मेरा फिर त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया था, फिर मैं वहाँ चली गई थी 2015 में।
1: बहनों बता दे कि अस्मिता डे उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनकी इस यात्रा में सभी का सहयोग रहा। बहनों जूडो ज्वाइन करने के बाद

0: कि 2 साल बाद मेरा सब जूनियर में सिल्वर भी आ गया था। तो फिर मेरे को, मतलब मेरे फैमिली और मेरे कोचेस सब, मतलब प्राउड फील किया, और उन्होंने सोचा कि ये लड़की कुछ कर सकती है करके। फिर मेरे पापा और इंटरेस्ट हो गए कि हाँ तुम्हें मतलब करना है, ठीक है, ऐसे करके।
1: देखिए बहनों, हमारी सफलता में एक गुरु का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग होता है। अस्मिता डे की जिंदगी में भी उनके गुरु, उनके कोच का बहुत योगदान रहा। पिता के जाने के बाद उनके कोच ने उनके आगे का मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें राह दिखाई। बहनों सुनते हैं इस बारे में।
0: 12 तारीख को मेरा गोल्ड आया था, फिर 25 तारीख को मेरे पिताजी का डेथ हो गया था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा था, मतलब अब कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ खत्म, क्या ही करूंगी अब ऐसे। फिर मैंने, मेरे कोच ने बोला है कि करना ही है बहुत कुछ। मतलब सबसे ज्यादा मेरे कोच जो है यशपाल सोलंकी सर, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। मतलब उनके हर एक वर्ड मुझे उतना ही सही और सच लगता था जैसे, सच बताओ तो, मैंने गीता बहुत पढ़ती हूँ। तो गीता में जब के माधव करके जो कृष्णा जी अर्जुन को बोलता है, तो जो सुनता है वही होता है, वैसे मैं बस सर का सुनती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपने गुरु का सुनना है तो सच में वो उसी रास्ते पे जाते जैसे गुरु बोलते। तो
1: अपने कोच की प्रेरणा से अस्मिता आगे बढ़ती गई।
0: एक से, मतलब एक महीना 10 दिन इतना बचा था, मतलब पापा के डेथ के बाद मैं बिल्कुल डाउन चली गई थी। मतलब क्योंकि उसके बाद हम खाना नहीं खा सकते थे, 12 दिन तक बस पानी और फ्रूट ये खाए थे, आपको भी पता है मैम। तो 10 दिन बाद, 12वीं के बाद मेरे मम्मी ने मुझे भेज दिया। सर ने मम्मी को कॉल किया, समझाया भैया को, मम्मी को। और फिर वो टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड था, बट मुझे नहीं पता उस टाइम से मैं कैसे निकली हूँ। मेरे कोच ने मुझे दिल्ली बुलाया, फिर वहां से भोपाल भेजा, वहां जाके ट्रेनिंग किया, फिर आउट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग भेजा। फिर उसके बाद आई मेरे एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स का ट्रायल था, तो उसमें मैं फिर फाइनली फर्स्ट ही आई थी मैम।
1: अस्मिता ने बहुत कम समय में कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को पूरा किया। यह उपलब्धि केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि भारतीय जूडो के इतिहास में एक नया अध्याय भी है। अस्मिता डे अपने देशवासी अवतार सिंह और जापान के महान खिलाड़ी उता अबे को अपना आदर्श मानती हैं। उनका करियर ग्राफ शुरू से ही अच्छा रहा है। अपने देश में भी अस्मिता का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कई स्वर्ण पदक जीते और वर्ष 2023 वर्ष 2024 में जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब हासिल किया। और फिर आया वह ऐतिहासिक पल जब ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता डे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल करके भारतीय जूडो के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया और देश का गौरव बढ़ाया। बहनों अस्मिता डे की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि यह उस जुनून और हौसले की सशक्त मिसाल है जो हर चुनौती को सामने डटकर खड़ा होना सिखाता है। ऐसी ही है हमारे देश की आधी आबादी। बहनों कहते हैं सपनों को पंख हौसलों से मिलते हैं और मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों के आगे झुकते नहीं। हर महिला के भीतर एक ऐसी उड़ान छिपी है जो उसे अपनी पहचान बनाने और अपने सपनों को साकार करने का साहस देती है। इन्हीं जज्बों और सफलता की प्रेरक कहानियों को हमारी श्रोता बहनों के साथ साझा करने वाला हमारा सेगमेंट उड़ान हौसलों की। तो बहनों आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अदिति सिंधु की सफलता की यात्रा और इनसे बातचीत कर रही है डॉक्टर भावना अरोड़ा।
2: उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जी हाँ बहनों, इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम उड़ान हौसलों की। बहनों उड़ान हौसलों की में हम बात करते हैं अपनी कुछ बहनों से जिन्होंने अपने हौसलों के दम पर उड़ान भरी और आज समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान पर है। ऐसी ही एक मेहमान आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में है जिन्होंने अपने दृढ़ इरादों के बल पर सफलता प्राप्त की।

0: और आज समाज में एक आदर्श शिक्षिका के रूप में अपनी पहचान बनाई है। बहनों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अदिति सिंधु, जो SBT कॉलेज धामपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। तो चलिए बहनों, आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू भावना जी, आपने हमें एक मौका दिया यहाँ आकर अपनी बात अपनी श्रोता बहनों से रखने के लिए। और मेरी सभी श्रोता बहनों को सबसे पहले मेरा नमस्कार।
0: सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
1: मेरा नाम डॉक्टर अदिति सिंधु है। मैं SBD महिला महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान में 2009 से कार्यरत हूँ। मेरे पति डॉक्टर हैं, डॉक्टर विपिन कुमार आर्य, और मेरे दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी गोरांगी और छोटा बेटा नमशीत गंधार।
0: बहुत सुंदर। तो अदिति जी, किस तरह से शुरुआत हुई आपके सफर की, या हम कहें कि आपकी सफलता की शुरुआत किस तरह से हुई?
1: बात करें अगर हम सफलता की, मैं आज जिस भी मुकाम पर हूँ या जहाँ भी हूँ, मेरे परिवार का मेरे साथ हमेशा सहयोग रहा। असल में मेरा जन्म एक गांव में हुआ है। मैं सिंभावली के पास गांव हसुपुर से बिलोंग करती हूँ, और मेरा कॉलेज गांव से लगभग 3.5-4 किलोमीटर दूर था। लेकिन परिवार का हमेशा मेरे साथ सहयोग रहा, हम तीन बहनें और एक भाई हैं, तो कभी ऐसा भेदभाव हमारे साथ नहीं हुआ कि हमारी पढ़ाई पर या हमारे कैरियर के लिए ना सोचा जाए या सहयोग ना किया जाए।
0: जी, तो कहने का मतलब है कि परिवार का पूरा साथ रहा आपके साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम। और अगर मैं बात करूं अपनी, तो BSc तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी
0: जी।
1: मैं बहुत टॉपर या बहुत ज़्यादा नंबर लेने वाली बच्ची नहीं थी। तो कहते हैं ना, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो MSc में बॉटनी में हमारा कॉलेज का हमारा पहला ही बैच था, और उस टाइम एग्जाम में 10 क्वेश्चन आया करते थे
0: जी।
1: पेपर पे, और जिसमें से आपको 5 करनी हुआ करते थे
0: जी।
1: तो MSc के पहले एग्जाम में मैंने पूरी रात बैठ के पढ़ाई की, और एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए भी मैं नहीं सोई।
0: अच्छा।
1: जैसे ही एग्जाम पेपर मेरे सामने आया, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे वो 10 के 10 क्वेश्चन आते थे और मुझे सिर्फ 5 क्वेश्चन करने थे। लेकिन आपको मैम यकीन नहीं होगा कि जब मैं लिखने बैठी तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक, मुझे रोना आ गया कि मैं लिखूं तो लिखूं क्या। और मैम, पता है आपको मेरे उस पेपर में कितने नंबर आए
0: जी?
1: 50 में से सिर्फ 10।
0: अरे।
1: मैंने उस पेपर में बैक दिया
0: जी।
1: और दोबारा जब मैंने वही एग्जाम दिया,
0: हाँ।
1: और बहुत तसल्ली के साथ, बहुत आराम से दिया,
0: हाँ।
1: तो उसी पेपर में मेरे 50 में से 48 नंबर थे।
0: बहुत सुंदर। यानी शुरू से ही आप बहुत ही मेहनती कह लीजिए और संघर्षशील रही, कि आपने कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानी, अपनी नाकामी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कम मार्क्स पाकर फिर एक हौसला टूट जाता है कि अरे इतना पढ़ने के बाद भी इतने कम मार्क्स आए। आपने फिर से मेहनत की और मेहनत के बल पर आपने अच्छे मार्क्स के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। तो ये तो हुई परीक्षा की बात, आगे का सफर कैसा रहा, किस तरह से फिर आपकी शादी हुई या पहले आप जॉब में आई?
1: मैम, मेरा बचपन से ही रुझान पेड़ पौधों की तरफ बहुत ज़्यादा था
0: जी,
1: और इसीलिए शायद यही कारण रहा कि MSc में भी मैंने सब्जेक्ट अपना बॉटनी चुना
0: जी।
1: और बॉटनी में ही मैंने 2004 में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था PhD में
0: जी,
1: और 2007 में मेरी PhD अवार्ड हो गई थी। मैं अपने एरिया में पहली वो लड़की थी जिसने PhD कंप्लीट की थी
0: जी।
1: तो जब हम MSc में थे, एक्चुअली हमारा बॉटनी MSc का पहला बैच था
0: जी
1: कॉलेज में, तो हमने खुद को ही फ्रेशर पार्टी दी थी।
0: अच्छा।
1: तो हमारे वहाँ लैब में एक प्रमोद सक्सेना जी हुआ करते थे
0: जी,
1: उन्होंने एक गजल सुनाई थी निदा फाजली की।
0: अच्छा।
1: और वो गजल मुझे आज भी बहुत प्रेरणादायक लगती है, तो मैं वो अपने श्रोताओं के साथ यहाँ सुना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी, निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो।

0: कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। तो मुझे लगता है
1: बहुत
0: इस गजल में अपने कैरियर को लेके, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा के लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है।
1: वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक शब्द है। तो अदिति जी, जानना चाहेंगे कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आप वास्तव में शुरू से ही टीचिंग जॉब में ही जाना चाहती थी या कुछ और करना चाहती थी?
0: मैं शुरू से ही टीचिंग जॉब में ही जाना चाहती थी, लेकिन टीचिंग के साथ साथ मैं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। 2007 में मेरी PhD कंप्लीट हो गई थी
1: जी।
0: और 2007 में ही का ही मेरी बेटी का बर्थ था। PhD के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया अपनी बच्ची के लिए
1: जी।
0: क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है
1: जी,
0: उसकी पूर्ति इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल,
0: हमें अपने कैरियर के साथ साथ अपनी देश की आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, उनके भविष्य का अपने का भी निर्माण हम ही लोगों को करना है
1: जी।
0: उन्हें सही समय पे जो गाइडेंस हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद लगातार मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ती रही और ज्वाइनिंग हुई
1: जी।
0: और 2010 में हमारे कॉलेज में NCC आई पहली बार
1: जी।
0: और मैं उसमें केयर टेकर थी। ये कह लीजिए कि मुझे बच्चे इतने अच्छे मिले या फिर शायद मैंने उनके साथ इतनी मेहनत की कि हमारे पहले बैच में ही हमारे दो बच्चे राजपथ पर चले। ऑल UP 20 बच्चे पैरा जंपिंग के लिए सेलेक्ट होते हैं जिसमें से एक बच्ची हमारे कॉलेज से थी।
1: बिल्कुल, बहुत ही गर्व की बात है ये।
0: और इसी के साथ TSC कैंप, बहुत सारे कैंप में मेरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ
1: जी।
0: और वहाँ से वो सर्टिफिकेट और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके भी आए
1: जी।
0: उसके बाद मुझे इसमें आगे बढ़ने के लिए एक ट्रेनिंग करनी थी
1: जी।
0: ग्वालियर से, वो ट्रेनिंग होनी थी और 3 महीने की वो ट्रेनिंग थी। उसके बाद मुझे लेफ्टिनेंट की रैंक मिल जाती
1: जी।
0: और शायद वो मेरे कैरियर में एक
1: हाँ, एक अपॉर्चुनिटी
0: अपॉर्चुनिटी भी थी। लेकिन उस टाइम मेरा बेटा छोटा था और मेरे पास दो ऑप्शन थे
1: जी।
0: या तो मैं अपने कैरियर की तरफ ध्यान दूं और लेफ्टिनेंट की रैंक लूं
1: जी,
0: एक टीचर के साथ साथ,
1: बिल्कुल,
0: या फिर अपने बच्चे को मैं टाइम दूं। और मेरा बेटा छोटा था और वो बाई बर्थ एनेमिक भी था। उस टाइम मुझे दोनों में से अपने बेटे की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी लगी और मैंने वही चुना और इसके लिए मैं आज भी बहुत खुश हूँ। क्योंकि फिर मैं बात वही कहूँगी, जो हमारे बच्चे हैं इस दुनिया में हम लेके आए हैं उन्हें सही दिशा निर्देश देने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आज के समाज में हम देखते हैं, चर्चा करते हैं, युवा पीढ़ी में भटकाव आ रहा है
1: जी,
0: गलत राह पे चल रही है। क्यों? क्या हम अपने कैरियर के साथ साथ उन बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं? तो मैं टीचर हूँ और मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, हर क्षेत्र में अच्छे हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा मैं कभी अपने बच्चों को बैठ के पढ़ाती नहीं हूँ
1: जी,
0: क्योंकि मैं उनकी माँ बनना चाहती हूँ।
1: हाँ,
0: एक टीचर नहीं, टीचर मैं अपनी कॉलेज में, अपनी क्लास में हूँ, उनके टीचर उनकी लाइफ में हैं, मैं उनके साथ उनकी माँ बने रहना चाहती हूँ जिससे वो अपनी बातें मुझसे खुल के रख सके।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार अदिति जी आपके। और वास्तव में एक माँ के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि वो अगर उसको ज़रूरत पड़ने पर वो अपने बच्चों को समय देकर अपने कैरियर को ना ध्यान दे। तो मैं कहूँगी कि माँ के लिए बहुत आत्मसंतुष्टि की बात होगी कि उसने अपने कैरियर की जगह अपने बच्चे के पालन पोषण को चुना। और वास्तव में आज उसी का परिणाम है कि जैसा कि आप बताते हैं, आपके दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी प्रेरणा है, आपकी मेहनत है, आपकी तपस्या है आपने उनके लिए की। तो अदिति जी, बहुत सुंदर विचारों से आपने हमें अवगत कराया, बहुत सुंदर विचार आपके हैं। चलते चलते आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप हमारी श्रोता बहनों या हमारी युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरह से वो अपने कैरियर में आगे बढ़े या अपने हौसलों की उड़ान भरें।
0: बिल्कुल भावना जी, हम सभी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई गुण छुपा होता है। जरूरत है सबसे पहले अपने अंदर छुपे हुए गुण को पहचानने की।

0: और अगर हम अपने गुण को पहचान कर उसी दिशा में अपने कैरियर का निर्माण करें तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा और ज्यादा आसान होगा
1: जी।
0: या आज के जमाने में क्या कैरियर चल रहा है, इसमें जॉब ज्यादा है। और एक दूसरा होता है कि हमारे अंदर एक गुण है और उस काम को करने में हमें बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
0: और उसी के क्षेत्र में अगर हम अपना कैरियर चुन लें तो वो कैरियर हमें, वो काम हमें एक बोझ ना लग के अपना एक शौक लगेगा और हम उसमें हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और जरूरी नहीं है जो आपने चुना है वो आपको पहली बार में ही अचीव हो जाए, पहली बार में ही आप उसे प्राप्त कर लें। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस जरूरत है अपने लक्ष्य की तरफ सोचकर हमेशा लगे रहने के लिए। बस मैं दो लाइनों में अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। हौसलों को तुम कभी खुद से जुदा ना करना, हौसलों को तुम कभी खुद से जुदा ना करना और हार के भी तुम कभी कोशिशें कम ना करना। एक दिन होगा तुम्हारा ये ऐतबार करना, एक दिन होगा तुम्हारा ये ऐतबार करना और सब्र से बस तुम उस दिन का इंतजार करना।
1: बहुत सुंदर। वास्तव में अतिथि जी, आपकी जो संघर्ष की कहानी है बहुत ही प्रेरणादायक है और हमारी बहनें भी आपकी इस कहानी से ज़रूर प्रेरणा लेंगी और अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि सोचती हैं हम हाउसवाइफ हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या हम परिवार में शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर वास्तव में मन में दृढ़ संकल्प हो तो आप अपने लक्ष्यों को ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं और समाज में अपनी एक पहचान बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियोज़ में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: उड़ान हौसलों के क्रम में अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर अदिति सिंधु के हौसले की उड़ान के बारे में और बातचीत कर रही थी डॉक्टर भावना अरोड़ा। अब बहनों, जैसे कि 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और यह दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि उन अनगिनत वीर और वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान को याद करने का अवसर है जिनके संघर्ष से हमें आजादी मिली। और बहनों, हमारा तिरंगा हमारे स्वाभिमान, एकता और राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा लहराकर राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव व्यक्त करने का अवसर देता है। बहनों, जब हम स्वतंत्रता और तिरंगे की बात करते हैं तो महिलाओं की भूमिका को कैसे भूल सकते हैं। आजादी की लड़ाई में हमारे देश की अनेकों वीरांगनाओं ने बलिदान देकर यह सिद्ध कर दिखाया है कि राष्ट्र निर्माण में महिलाएं किसी से पीछे नहीं। हर घर तिरंगा फहराने की भावना को हम केवल घर पर तिरंगा लगाने तक सीमित ना रखें। आइए इसे अपने जीवन में राष्ट्र प्रेम और जिम्मेदारी से भी जोड़ें। हमें अपने बच्चों को भी देश का इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों और तिरंगे के सम्मान के बारे में बताना चाहिए। बच्चों में ऐसे संस्कार रोपित करने चाहिए जो आगे चलकर भारत देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में समर्पित हो। और बहनों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, लेकिन जाने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। बहनों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हमसे अपने विचार साझा करने चाहती हैं, तो बहनों आप पत्रों के साथ साथ हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकती हैं। बहनों, हमें मैसेज करने के लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है 94, हमारा व्हाट्सएप मैसेज का नंबर है 9457078288। और बहनों, पत्र लिखने के लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। बहनों, पता एक बार फिर से नोट करें, कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो बहनों, जुड़ी रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ आज का महिला जगत कार्यक्रम संपन्न करने की प्रियंका त्यागी को दे अनुमति। नमस्कार।

सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। दोपहर के 1:45 हो रहे हैं। अब सुनिएगा कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा सुन रहे सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। और आज का ये कार्यक्रम हमने सजाया है जॉन सारी लोकगीतों से, जिसको आवाज दी है रविंद्र वर्मा ने। श्रोताओं, लोक जीवन की अनगिनत धुनें होती हैं जो हमारे लोक संस्कृति को बयां करती हैं, जिसमें कहीं विरह की टीस होती है तो कहीं जीवन की सहज उमंग। तो आइए लोक धुनों की उन्हीं खूबसूरत रंगत को आप पर बिखेरते हैं इन जॉन सारी लोकगीतों से।

श्रोता, लोकगीत किसी एक कलाकार की आवाज नहीं होते, बल्कि वो तो पीढ़ियों से चली आ रही हमारी संस्कृति होते हैं, जिसमें मिट्टी बोलती है, पहाड़ गाते हैं और लोक जीवन खूबसूरती से मुस्कुराता है। तो आइए एक और जौनसारी लोकगीत हम आपको आगे सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, जॉन सारी लोकगीतों की इन सुरीली लोकधुनों ने हमें जॉन सार की लोक संस्कृति के लिए कुछ क्षण के लिए करीब ला दिया। तो आइए कार्यक्रम के अंत में एक और जॉन सारी लोक संस्कृति के रंग में रंगा ये अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

इसी जौनसारी लोकगीत के साथ लोकधारा में आज की ये प्रस्तुति यहीं विराम लेती है। फिर मिलेंगे किसी और अंचल की मिट्टी से निकली किसी और लोक धुन की मीठी सुगंध के साथ। तब तक सुनिए, सुनते रहिएगा आकाशवाणी नजीबाबाद। अभी आप सुन रहे थे लोकधारा कार्यक्रम हम आकाशवाणी के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
0: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और मिथिला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटी, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य

0: देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
1: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए काम किया है।
0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्रेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉक्टर एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
2: ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
3: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
5: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
1: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्यों के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमरीकी ताने बाने में भारतीय अमरीकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। अपराहन के 2:30 हुए हैं। पेश है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही संगीतकार। स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम एक ही संगीतकार में। और आज का हमारा एक ही संगीतकार कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर संगीतकार खयाम पर। संगीतकार खयाम के संगीत को सुनना सिर्फ गीत संगीत का आनंद लेना नहीं, बल्कि उस तहजीब से मिलना है जहां शब्दों के साथ हर सुर बड़े अदब और एहतराम के साथ बरसता है, जहां धुन आवाज से

आगे नहीं निकलती और आवाज कभी शायरी पर हावी नहीं होती, और जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा खूबसूरत एहसास रचा जाता है जिसे ये दुनिया हमेशा हमेशा याद रखती है। मोहम्मद ज़हूर खय्याम हाशमी एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने बहुत कम कहा, मगर जब कहा तो शुरू में कहा, जब भी अपनी आरजू बयां की तो सुरीले गीतों में बयां की।

संगीतकार खयाम के सुरों में रचे इस गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म थी रजिया सुल्तान और गीत के बोल लिखे थे जानिसार अख्तर ने। 18 फरवरी 1927 को अविभाजित पंजाब के राहो नगर में जन्मे संगीतकार खयाम ने लगभग 4 दशकों तक हिंदी फिल्म संगीत को अपनी बेमिसाल धुनों से सजाया। उनकी जिंदगी का सफर अपने आप में

किसी कहानी से कम नहीं है। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्हें फिल्मों का ऐसा शौक था कि छिप छिप कर वो फिल्में देखा करते थे और फिल्मों के लिए उनका जुनून धीरे धीरे हम सब के सामने संगीत का इश्क बनकर आया। शुदा हुआ ये था कि अपने सपनों की दुनिया सजाने 10 साल के नन्हे खयाम ने दिल्ली से सुरों का सफ़र तय करते हुए मुंबई तक अपनी मंजिल तक पहुँचे। सपना तो था अभिनेता बनने का, लेकिन किस्मत ने उनके हाथों में अभिनय की जगह संगीत की तान थमा दी। उनके संगीत से संवारा ये गीत उनकी जिंदगी के सफर को बड़े ही खूबसूरत तरीके से बयां करता है।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है।

0: क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोता, समय सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही संगीतकार, और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर संगीतकार खयाम पर। श्रोताओ, आपने साल 1948 में फिल्म हीर रांझा से शर्मा जी वर्मा जी की जोड़ी के रूप में संगीतकार के तौर पर शुरुआत की, और शुरू हो गया 1950 से उनका दौर। फिल्म बीवी, उसके बाद फुटपाथ, इस फिल्म से ही आप शर्मा की जगह खयाम नाम से मशहूर हो गए। श्रोताओ, उनका शुरुआती सफर हमें ये बताता है कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते हमेशा वो नहीं होते जैसा कि हम सोचते हैं। वो अभिनय की चाहत रखते थे, लेकिन संगीत ने उन्हें बाहें फैलाकर अपना बना लिया, और उनके संगीत की छुअन से हर गीत की कली गुलाब की तरह खिलकर महकने लगी।

शुदा कुछ नहीं हुआ है, बस आप पर असर हो रहा है खयाम जी के संगीत का। उनके संगीत की एक ऐसी खास बात थी जो उन्हें कभी भी औरों जैसा नहीं जाहिर करती थी। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता के लिए संगीत नहीं बनाया। वे शब्दों के एहसासों को बड़ी खूबसूरती से समझते थे। एक शायर, एक गीतकार क्या कहना चाहता है, हर शब्द को कौन सा भाव देना है, किस शब्द पर कहाँ और कितना ठहराव लाना है, ये सब उनकी धुनों में समाया रहता है। और जब शब्द हो साहिर लुधियानवी के और उस पर उनका हो संगीत, तब बनते हैं ऐसे गीत जो हमेशा गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं, पर बनते हैं कभी कभी।

श्रोताओं कहते हैं कि साल 1976 में आई कभी कभी फिल्म के गीतों से अभिनेता राजेश खन्ना इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने खुश होकर संगीतकार खयाम को एक कार तोहफे में पेश की। लेकिन खयाम साहब के संगीत सफर की सबसे बड़ी उपलब्धियां अभी बाकी थी, वो संगीत जिसके लिए उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला, जिसके लिए आपने इतिहास को पढ़ा, समझा और जिया, उस दौर की तहजीब को अपने दिल में उतारा और तैयार किया एक ऐसी फिल्म का संगीत जिसका गीत संगीत हमेशा हमेशा सदाबहार है, और वो है साल 1981 की फिल्म उमराव जान।

श्रोताओं राम जान के इस गीत को जिसे आवाज दी थी आशा भोसले ने लेखनीबद्ध किया था शहरयार ने। इस गीत में रेखा के अभिनय के लिए खयाम जी ने रेखा के अभिनय की बे इंतहा तारीफ करते हुए कहा था कि उनके मस्ताने अंदाज ने उमराव जान के किरदार में और संगीत में जान ही फूंक दी। यही तो किसी महान संगीतकार की खूबी होती है, वो सिर्फ संगीत ही नहीं बनाता बल्कि मोहब्बत, अदब और किरदार को हर सुर में घोल देता है। संगीतकार खयाम के ऐसे सुरीली तहजीबी हुनर को सलाम करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। लेकिन किसी कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार नहीं होता है, उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार और सम्मान होता है लोगों के दिलों में जिंदा रहना। 19 अगस्त 2019 में आप भले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, पर आपकी धुनें हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ हैं, जो हर बार सुनने में एक नया एहसास देती हैं। उसी

खूबसूरत एहसास के साथ आज के इस संगीत के सफर की मुलाकात यहीं तक संपन्न होती है। फिर मिलेंगे जल्द ही फिर एक सुरीली पेशकश के साथ। एक ही संगीतकार, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 4 बजे फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिएगा।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 4 बजने को हैं, हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा फेवरेट शो, वीकली शो संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस खास एपिसोड के साथ हाजिर है शाहिद, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मेजर मानिक एम जोली, सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड ऑफिसर है, इंडियन आर्मी के वेटरन है, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका एक्सपीरियंस है, फील्ड कमांडर, कॉर्बेट इनोवेटर एंड मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के, मेजर मानिक एम जॉली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शायद, बहुत अच्छा लगा आपसे आज फाइनली बात करके।
0: जी सर, हमें भी बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, और सर आपने अपना समय निकाला, कीमती समय आपने निकाला है और आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत हम करना चाहेंगे, और जैसा कि हमने आपको आपके बारे में सर थोड़ा सा बताया है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो बातचीत अभी इंटरव्यू से पहले आपसे चल रही थी तो उसमें मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ पता लगी, और लग रहा है कि ये शो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से ये शुरुआत होती है एक आर्मी ऑफिसर बनने की तरफ, जो एक एक यंग कैडेट जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या महसूस करता है, वो क्या जोश, वो जज्बा, वो नेशन और एक देश के लिए एक जज्बा होता है जब जाते हैं?
1: तो शायद सब सबके अपने अपने रीजंस होते हैं आर्मी ज्वाइन करने के, लेकिन एक कॉन्स्टेंट फिक्स रीजन सबका ये होता है कि हर फौजी का अपने देश के प्रति सर्विस करने का, माँ भारती के लिए सेवा करने का एक पक्का जज्बा फिक्स रहता है। बाकी सब एक्सक्यूज हैं, पर आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि एक फौजी इससे हट के जवाब दे कि हाँ मैं देश की सेवा नहीं करना चाहता था, कोई और कारण था।
0: जी
1: तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो मैं भी बचपन में, मेरे नाना जी भी आर्मी में थे।
0: अच्छा।
1: तो मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे यही कहा था तुमने फौज में ही जाना है,
0: यानी कि ऑलरेडी आपको जो है ग्राउंड बना हुआ मिल गया था, बस तो आपने उस पर या तो अपना सफर शुरू किया।
1: यस, जैसे मैंने 6th, 7th, 8th क्लास के दौरान तैयारी शुरू करी एनडीए की, तो 12th खत्म होने से पहले मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था। तो स्कूल के एकदम बाद फिर मैं एनडीए चला गया। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ
0: जी,
1: तो वहां से मेरी क्लास से हम 5 गए थे, तो वो शहर में भी थोड़ा इट हैज दी वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहतक सिटी का रिकॉर्ड है मैक्सिमम ऑफिसर्स प्रोड्यूस करने का हरियाणा में। तो बस हमारे यहाँ काफी ट्रेंड होता है आर्मी में जाने का, आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब।
0: जी सर, आपने मेजर मानिक एम जॉली हमारे साथ जो सेना मेडल से सम्मानित है सर, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया और दूसरे अवार्ड भी आपको प्रदान किए गए हैं, साथ ही आपको पीएम मोदी का मिशन इनोवेशन नेशनल चैंपियन का भी अवार्ड दिया गया। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं आपकी, जिसमें आपके पूरे करियर में लगातार कुछ ना कुछ आप हासिल करते रहे अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। उसके अलावा हम और

0: चीजें जो हमें आपके बारे में पता लगी हैं, क्योंकि आप कमीशन हुए थे गोरखा रेजिमेंट में 1999 में, फिर उसके बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया और आपने 10 साल से करीब 10 साल आपने वहां पर अपनी सर्विसेज प्रदान की और काउंटर इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर। तो ये बहुत ही एक ना वैरायटी वाला और बहुत ही अलग अलग तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक आर्मी ऑफिसर, फिर उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में काफी लंबा समय दिया है, सर्व किया है आपने, और जिस टाइम पर आप कमीशन हुए उस टाइम पर कारगिल वॉर का मेरे ख्याल से टाइम था।
1: बिल्कुल, हम जब कमीशन हुए 99 जून में कारगिल वॉर चल रहा था।
0: अच्छा,
1: तो जब हमारी कमीशनिंग परेड थी हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि अब लड़ाई में जाने
0: हम भी जाएंगे। अच्छा,
1: मुझे याद है कि स्टार न्यूज ने एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट को भेजा था हमें इंटरव्यू करने के लिए।
0: ओके।
1: और जो जो लड़के इन्फेंट्री में गए थे जो वहां पे लड़ाई के लिए जा रहे थे, यूनिट्स थी, तो उनका उन्होंने हमारा अलग से इंटरव्यू लिया था। अच्छा। कि आप लोग लड़ाई में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो हम सारों का एक ही जवाब था, बहुत एक्साइटेड है, जल्दी भेजिए। लेकिन जब तक हम कमीशन हुए एक्चुअली सीज फायर अनाउंस हो गया।
0: अच्छा।
1: तो ये हम अपना, ठीक है, देश के लिए युद्ध ना होना एक तरह का अच्छी, लेकिन पर्सनली आपस में ये है कि हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि मैं उस लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला।
0: मतलब एक फौजी है और वो चाहता है कि मैं किसी तरह से मैं लड़ाई का हिस्सा बनूं।
1: इससे बड़ा टेस्ट क्या है हमारे लिए कि लड़ाई में लड़ने का मौका
0: मिला। बिल्कुल।
1: तो वो यूं लगा लीजिए 2-3 हफ्ते से हम मिस कर गए थे।
0: अच्छा। और सर ये भी है कि उस कारगिल वॉर में जो लोग, जो फौजी शामिल थे उस वॉर का हिस्सा थे, जिसमें से काफी सारे जो फौजी थे उनको शहादत भी हुई, तो वो आपके इमीडिएट सीनियर भी थे, मतलब आपसे उनकी अच्छी खासी जब आप ट्रेनिंग में थे तब उनसे मिलते थे, बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, बहुतों को हम बहुत अच्छे से जानते थे। हमारा वो हमारे से 1 या 2 और सीनियर्स थे, काफी को हम एनडीए में मिले थे, कुछ को आईएमए में जानते थे। जो फेमस कैप्टन विजयन थापर थे,
0: जी
1: वो मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे, और मुझे याद है मैंने उनसे जब वो पास आउट होके जा रहे थे, वो 6 महीने पहले पास आउट हुए थे।
0: अच्छा।
1: तो मैंने उनसे, उन्होंने मेरी कैसेट ले रखी थी माइकल जैक्सन की।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा सर कैसेट तो वापस कर जाओ। कहते अरे यार जब नेक्स्ट मिलेंगे तब दे देंगे। Okay. मतलब आज भी वो बात याद है। उसके बाद फिर तो हमें यही पता लगा कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया।
0: जी।
1: सुमित रॉय, विक्रम बत्रा, सारे हमारे सीनियर्स थे।
0: अच्छा।
1: और मतलब देश इनके बारे जितनी बात करे उतनी कम है। इतनी यंग एज पर, आप किसी भी वॉर में देखिए इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स की जो रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस है वो किसी भी देश से ऊपर मानी जाती है। क्योंकि जब हम लोग पहुंचते हैं
0: जी,
1: तो सारे टैक्टिक्स एक तरफ, हम कहते हैं हम ही चार्ज करेंगे, आप हम अपने जवानों को सभी यही बोलते हैं मेरा पीछा मेरा। तो इसीलिए ये एक प्रिंसिपली हमारी आर्मी बहुत, ना केवल एथिकली, बहुत
0: एथिकली और साथ ही साथ
1: वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लेस्ड, लेकिन उसका ये भी कारण है कि जितने यंग ऑफिसर्स जाते हैं
0: उनमें से
1: कोई ऐसा नहीं होता तुम आगे चलो हम तुम्हारे, हम कहते
0: हम आगे चलेंगे
1: तुम हमारे पीछे चलो।
0: क्या बात है, ये जज्बा तो सर काबिल तारीफ है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और यादगार किस्से हैं जो हम मेजर मानिक के साथ डिस्कस करेंगे आज के संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही एक चीज और आपको मैं बता दूंगा कि जिसमें हम आगे बात करेंगे कि मेजर मानिक ऑथर भी हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो हमारे साथ है मेजर मानिक एम जॉली, इंडियन आर्मी से सेना मेडल से सम्मानित। आज के रहेगी बात जारी संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और मेरे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट इनोवेटर, मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, नेत्रम डिफेंस रिव्यू के फाउंडर हैं और साथ ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में कश्मीर में इन्होंने ट्रूप्स को भी कमांड किया है। हम एक बार फिर स्वागत करेंगे मेजर मानिक जॉली का। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: थैंक यू शाहिद, थैंक यू।
0: सर मैं आपके बारे में जब बात करना शुरू करता हूँ तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन उसके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे। पहले सर मैं आपके वो जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। आपको पहला सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जो गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है आर्मी का, तो वो किस तरह से और किस उपलक्ष्य में आपको दिया गया?
1: ये मेरी नौकरी का पहला दूसरा साल ही था। मैं यंग कैप्टन था और कुपवाड़ा में हम लोग तैनात थे। मेरी गोरखा रेजिमेंट यूनिट का हिस्सा था मैं
0: जी।
1: तो मेरी जो यूनिट है फर्स्ट बटालियन फोर्थ गोरखा राइफल्स, तकरीबन 200 साल पुरानी हो जाएगी थोड़े दिन में।
0: ओके।
1: वन ऑफ

0: दी ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स, तो बहादुरी और ड्यूटी हमारे रग रग में तैयार
1: बिल्कुल
0: किया जाता है। तो उसमें हमारी यूनिट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा था, हमने 1.5 साल में तकरीबन 100 टेररिस्ट मारे थे,
1: ओके
0: तो यूनिट को भी साइटेशन मिला था। तो हमने बहुत ऑपरेशंस करे, उनमें से एक ऑपरेशन में मुझे अवार्ड मिला था जिसमें टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था जंगल
1: अच्छा
0: में, और उन्होंने हमारे भी एक सैनिक शहीद हो गया था। फिर उन टेररिस्ट को मार के अपने शहीद सैनिक की बॉडी वापस लाने के लिए मुझे सेना
1: अच्छा
0: मेडल दिया गया था।
1: तो ये पूरा एक मिशन रहा होगा, जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा एक
0: हाँ
1: पूरा
0: जी,
1: ऑपरेशन रहा होगा,
0: हाँ
1: तो
0: जी।
1: सर वो तो बड़ा टफ और बड़ा ही खतरनाक रहा होगा, कुछ बताइए उसके बारे में।
0: देखिए, जो ये ऑपरेशन है, आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मैं और यही बात आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूँ
1: जी
0: कि हम सब अपने घर में बैठे हैं, FM सुन रहे हैं, बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े खा रहे हैं,
1: जी
0: पर यही टफ और डेंजरस मिशन इस टाइम लाखों सैनिक कश्मीर के जंगलों में और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में कर रहे हैं
1: अभी भी कर रहे हैं अपनी
0: इस
1: ड्यूटी।
0: दिस वेरी मोमेंट एज वी आर स्पीकिंग। डेली करते हैं, तीन
1: जी
0: सौ पैंसठ दिन। तो एक सोल्जर की लाइफ, किस सेकंड आपको जंगल में कहाँ टेररिस्ट मिल जाए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कभी कभी आप महीनों सालों भटकते रहते हैं, आपका इनकाउंटर नहीं होता, कभी आपके एक महीने में चार इनकाउंटर हो जाते हैं। तो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जीरो, बट पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। सो व्हाट हैपेंस, आप जाते हैं, आपको इनकाउंटर हो गया, इसमें बड़ा चांस है आपने पहले उनको देख लिया, उन्होंने आपको पहले देख
1: अच्छा
0: लिया, वो फायर करके भागना चाहेगा, वो रुक के लड़ना चाहेगा। बहुत इतने ज्यादा फैक्टर्स आते हैं, वो ऊपर है, आप नीचे हैं, आप नीचे, तो इतने फैक्टर डिसाइड करते हैं उस इन दैट वेरी मोमेंट कि व्हाट विल बी द आउटकम, कि
1: और
0: इस लड़ाई से कौन कैसे निकलेगा।
1: तो सर जब मिशन पर निकलते हैं सोल्जर्स हमारे निकलते होंगे, तो वो ये पता होता होगा कि या तो मतलब जीत कर वापस आएंगे मार करके, या फिर
0: या शहीद हो,
1: शहीद होकर के।
0: यही है, ये फौज का प्रिंसिपल है हमारे यहाँ, देर इज नो रनर्स अप, यू नो, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडियन आर्मी में हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, विक्ट्री और
1: और डेथ
0: सेक्रीफाइस। या सो आप, अगर आपको कहा गया है, और कारगिल वॉर अगेन फिर से जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो यंग
1: जी
0: ऑफिसर्स इतने
1: जी
0: सेक्रीफाइस हुए, क्योंकि ट्रेनिंग डे पहले दिन, हम 16 साल के होते हैं जब NDA ज्वाइन करते हैं,
1: अच्छा
0: उस दिन से लेकर जब तक 4 साल ट्रेनिंग है, कमीशन होते हैं, एक ही चीज सिखाई जाती है कि अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए, अपनी यूनिट के लिए, आपके ट्रेंच में जो साथी है उस बड़ी के लिए लड़ाई लड़नी है।
1: उस बड़ी के लिए
0: या तो आप उसके लिए लड़ते हो, वो आपके लड़ता है, ऐसी टीम बनती है।
1: क्या बात है सर, मतलब वो आपके लिए जान कुर्बान के लिए
0: या
1: तैयार है और आप
0: या
1: उसके लिए, एक दूसरे के लिए।
0: यही कॉन्फिडेंस है जो आर्मी लीडर्स को कॉर्पोरेट लीडर्स इतना फर्क बनाता है, क्योंकि एक एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है।
1: जी
0: उस जवान को पता है मेरा जो ऑफिसर है कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि मेरी जान खतरे में आए।
1: क्या बात है सर,
0: अगर
1: ये
0: अगर खतरा होगा तो खुद पहले जाएगा। और एक ऑफिसर को मालूम है कि जब तक मैं हूं, ये मेरे जवान मेरे से आगे लड़ने को तैयार है। तो जब ये इस तरह की,
1: ये
0: यू नो,
1: जो जज्बा है
0: हाँ जी, जज्बा रहता है, तो सब एक से बढ़कर
1: एक दूसरे के
0: एक
1: लिए,
0: दूसरे के
1: अपने
0: लिए
1: साथी के लिए, बड़ी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं
0: बिल्कुल, और
1: सर,
0: कॉन्फिडेंस रहता है कि
1: कॉन्फिडेंस रहता
0: मुझे
1: है।
0: अपने सुपीरियर के ऑर्डर में पूरा फेथ है कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि मेरी जान खतरे में। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना, गिविंग लाइफ फॉर योर कंट्री इज एन ऑनर, तो लेट दैट ऑनर बी ऑफ एनिमी।
1: क्या बात
0: ठीक
1: है,
0: है, वो
1: क्या बात
0: हाँ, तो हमारा काम है जीतना, दुश्मन को मारना। तो एक बहुत ही अलग लेवल की ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी डेवलप करी जाती है आर्मी में,
1: जी
0: इसी कारण वो ऐसे ऑपरेट करती है। अगर आप उस ढर्रे को कहीं और अप्लाई करना चाहेंगे जहां पे लाइफ एंड डेथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो ऑपरेट वो नहीं एक सक्सेसफुल होता।
1: नहीं हो सकता सर, वही चीज है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग कितनी टफ होती है एक आर्मी ऑफिसर की, लेकिन उस टफ ट्रेनिंग के बावजूद भी वो जो जज्बा है, शायद वो उससे भी ज्यादा भारी है उस पर, उस ट्रेनिंग पर, वो जज्बा कि वो जो अपने नेशन, अपने वतन के लिए, देश के लिए, अपने बड़ी के लिए, अपनी यूनिट के लिए।
0: देखिए, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। वही भी हम NDA जाए 16-17 साल, इट्स अ जिसको बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज। 16-17 साल में आप दुनिया को समझना शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब जो लोग कॉलेज जाते हैं उनके चारों तरफ, फॉर एग्जाम्पल आज का देखते हैं, इंस्टाग्राम पे वायरल रील बनाना,
1: बिल्कुल सर, सोशल
0: स्टूडियो
1: मीडिया
0: मूवी
1: पूरा पूरा
0: हीरो,
1: एकदम
0: यू नो, हमारे आसपास क्या होता था, हम जहां ट्रेनिंग करते थे वहां लिखा था एक गोली एक दुश्मन, जो हमारे कमरों, किल डेथ बिफोर इट किल्स यू, आई विल डाई फॉर माई कंट्री, चारों तरफ आप
1: वो
0: ऐसे,
1: मोटिवेटेड
0: हाँ
1: मतलब स्लोगन्स आपको मिल
0: या
1: रहे हैं।
0: आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो कि दिन रात आप एक ही चीज सोचते हो कि मैं इस

0: देश के लिए बनाओ, और अगर कभी जरूरत पड़ेगी,
1: तो मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा,
0: बिल्कुल विदाउट अ डाउट,
1: विदाउट अ डाउट।
0: ये तो
1: क्या बात है
0: इसमें कोई हेजिटेट नहीं करेगा कभी।
1: सर बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपसे आगे भी करूंगा। अभी एनडीए के बारे में आपसे पूछूंगा कि आपने उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या, जाहिर है वो वक्त बड़ा ही मेरे ख्याल यादगार होता है बडीज के साथ, और इंटरेस्टिंग भी, और कुछ शरारतें भी जरूर होती हैं उस जमाने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो एज ऐसी होती है और टाइम ऐसा,
1: और टाइम ऐसा होता है। तो हम अपने लिसनर्स को यहाँ बताना चाहेंगे कि आप हमें मैसेज करें, मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं सर, मैं आपको बता दूं, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करके हमारे आज के गेस्ट मेजर मानिक एम जौली से सवाल कर सकते हैं। नंबर है 9868107070। सर मैं सोचता हूं कि आगे बढ़ूं तो कुछ मैसेजेस तो मैं अभी ले लूँ। ये असम से सर मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, ये हितेंद्र दास हैं सर, आपको भी और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए हितेंद्र। और उसके बाद मैसेज आया है स्वतंत्रता दिवस का, सब सोल्जर भाइयों का हमारा सल्यूट, हमारा भारत माँ की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान क्या श्रेष्ठ जीवन का संदेश है। कर्नाटक राज्य विजयपुर डिस्ट्रिक्ट आराकेरी गांव से, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, आरकेडी पंडित चन्नप्पा सरवाड़कर, सर ये मैसेज है।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद आपको भी।
1: और सर ये मैसेज है, हाय आई एम अजय अहिरवार फ्रॉम मध्य प्रदेश, क्लास 12 सर ये स्टूडेंट है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, वॉट थिंग्स शुड आई रिमेंबर ड्यूरिंग प्रिपेरेशन एंड फॉर SSB इंटरव्यू, मेनली SSB गाइडेड फॉर सिविलियन। और अजय अहिरवार सर मध्य प्रदेश है, सर इनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे?
0: तो शायद वैसे तो ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत लंबा होता है, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो
1: जी
0: अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करके, इंटरव्यू की तैयारी करके कुछ और बन के दिखाना
1: अच्छा।
0: चाहते हैं और वो पक्का रेसिपी टू फेलियर है।
1: अच्छा,
0: आप इंटरव्यू में जैसे हैं 100% वैसे रहिए, और वो तो फिर इंटरव्यू पर है, वो आपको शेयर, दैट इज उसको कोई गारंटी नहीं कर सकता, पर अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली थ्रू नहीं होंगे। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखें
1: इंटरव्यू की, जो आप हैं,
0: जो आप हैं।
1: क्या बात,
0: अगर
1: है?
0: आपको पिक्चर पसंद है, आप बोलिए मुझे पिक्चर देखना पसंद है, ये मत
1: अच्छा,
0: बोलिए
1: अच्छा,
0: मुझे
1: अच्छा।
0: बुक्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि टेबल के उधर जो बैठे उसने बहुत बुक्स पढ़ी है पकड़ लेगा आपको
1: तो आपको जो आप हैं वही दिखाएं वहां पर। सर एक और मैसेज है, जय हिंद सर जी, जय हिंद मेजर साहब, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से मैसेज कर रहे हैं सर ये। और सर ये है संदेश,
0: जय हिंद
1: जी, शो बहुत खूबसूरत शुरू है जी, दिल को छू लेने वाली बहुत खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं, शाहिद जी नमस्ते, मानिक सर नमस्ते, जय हिंद वंदे मातरम, यश शिंदे हैं सर ये मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, जय हिंद। और सर ये एक और मैसेज आ गया है, जय हिंद मेजर साहब, कारगिल वॉर तो हमने नहीं देखा है, मूवी में देखा, लेकिन आपके जरिए हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। एडवांस 80th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, वंदे मातरम। रोहित मेहर हैं सर ये, बुदापाली विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबको जय हिंद।
1: और सर सभी लोग इस वक्त जो है देशभक्ति के जो ना उसमें सराबोर हैं, जुनून में, जोश में, क्योंकि 15 अगस्त पर सब परसों नजदीक ही है, और ये स्वतंत्रता दिवस जो हमें याद दिलाता है कि जो कुर्बानियां दी गई इस देश की आजादी के लिए, उन सबको हम याद करते हैं। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे सर, हम बात करेंगे अब एनडीए की। आपने एनडीए में जब आप आए तो क्या माहौल था वहां पर, नया नया एक्सपीरियंस कैसा लगा एक 16 साल के जब मानिक वहां पर आ रहे थे तो?
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत देखिए, एक तो आप घर से पहली बार बाहर गए होते हैं, और घर से पहली बार बाहर जाके आप किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो बात अलग है।
1: अच्छा।
0: लेकिन आप बिल्कुल एक वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी में चले गए
1: जी,
0: जहां पे डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट, आपका आपसे 6 महीने सीनियर वो आपके लिए भगवान की तरह है, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा, फिजिकली इट्स वेरी स्ट्रेनिंग। वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में था, लेकिन एनडीए का अलग लेवल होता है, तो शुरू में आपको यू नो रूटीन इज वेरी टाइट, फिजिकली इतना डिमांडिंग है
1: जी,
0: तो एक बार तो हर कोई हिल जाता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स में तो आप थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स अलग है जो हम स्कूल में करते हैं या आपने, लेकिन जो आप एकेडमी में कर रहे हैं।
0: बट हमारे स्कूल में बाई चांस स्पोर्ट्स की अच्छी लेगेसी थी, तो मेरे को फिजिकली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफॉर्म करने में, बट ये है कि शुरू में जाके, क्योंकि हम यू नो अपने घर पे रहे थे, कई बच्चे सैनिक स्कूल से आते हैं, उनको थोड़ी आदत होती है।
1: ओके,
0: हम पहली बार घर से आए थे, मुझे याद है कि पहले एक दो हफ्ते में घर की बहुत याद आती
1: जी,
0: क्योंकि चारों तरफ हर कोई आपको खाने को दौड़ता है एनडीए में, और घर पे तो जो भी है आपको
1: बिल्कुल जाहिर है प्यार से, बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो मैं एक बार काफी दुखी बैठा था अपने रूम में, तो मेरे एक सीनियर आए, वो सीनियर मोस्ट थे, 6th टर्म में थे वो, तो क्या हुआ? मैं कहा सर घर की बहुत याद आ रही है, तो कहते चिट्ठी लिखो।
1: अच्छा,
0: तो मैं आपको बस बता रहा हूँ बस सोच कैसे होती है। मैं कहता चिट्ठी तो लिख चुका, कहते इधर आओ, मुझे अपने रूम में लेके गए
1: जी,
0: अपना परफ्यूम निकाला अच्छा सा, मेरे पे स्प्रे करा।

0: बस अब खुश हो जाओ, यही खुशी है वही तुम्हें ऑर्डर है खुश होने का. मैं ठीक है सर. तो और उसके आई थिंक बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैड वॉज हमारे टाइम वहां पे मेजर साहब पिक्चर की शूटिंग हुई थी.
1: अच्छा, मेजर साहब अमिताभ बच्चन
0: हाँ जी.
1: और अजय देवगन जी।
0: तो उस थोड़े महीनों के लिए एकेडमी का में इतने फनी इंसिडेंट्स हुए थे. आई
1: अच्छा, तो कई महीने वो शूट चला था।
0: थिंक दो तीन महीने तो चला था मेरे ख्याल से. तो
1: अच्छा
0: उसमें क्या हुआ कि 1-1.5 महीना तो चला था फॉर श्योर.
1: जी,
0: अकेडमी ने मना कर दिया कि हम अपने कैडेट शूटिंग के लिए नहीं देंगे.
1: ओके।
0: तो जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो बॉम्बे से यंगस्टर्स को लेके आए. उनको तो 150 चाहिए थे. उन्होंने हमारे जैसी यूनिफॉर्म पहनाई
1: ठीक है
0: और उनसे परेड वरेड कराते थे और उनके शूटिंग वूटिंग के लिए यूज करते थे.
1: ठीक है।
0: लेकिन अब अकेडमी में ऐसा हो गया जब भी आपको कोई सीनियर पकड़े इधर आओ जूनियर यू. हम तो मुंबई से आया है तो शूटिंग वाला है. तो काफी क्योस मचा हुआ था उन दिनों.
1: अच्छा
0: थोड़ी देर में सब सॉर्ट आउट हो गया. और फिर एक दो सीन थे जैसे क्रॉस कंट्री का सीन है जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर वो दिखाते हैं अजय देवगन फर्स्ट आया.
1: अच्छा
0: तो उसमें उन्होंने हमारे कैडेट्स वगैरह को बुलाया था कि पीछे आप लोग भागना, लास्ट में ये आगे आके फर्स्ट आ जाएंगे.
1: ओके, हीरो मतलब हीरो बन
0: हाँ
1: जाएंगे। ठीक है
0: हमारे कैडेट थोड़ा दिल पे ले गए कि हमारे रहते कैसे फर्स्ट आ
1: अच्छा
0: जाएगा. वो आई थिंक 10-15 बार शूट करना पड़ा. हर बार हम आगे आ जाते थे कोई ना कोई. तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत. इट वॉज वेरी फनी. तो
1: अच्छा
0: हम लोग आई मीन काफी क्लोजली शूट. मैं भी एक दो किसी शूट में हूँ भीड़ में कहीं पे दिख रहा हूँ इधर उधर.
1: अच्छा हम सर मैं मूवी देखूंगा आपको देखने के
0: हाँ जी
1: लिए
0: प्लीज. तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी. और
1: जी
0: उसका गाने भी एक्चुअली इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे सभी.
1: हाँ, गाने सर बड़े सुंदर गाने थे और सिंदूर सुंदर हीरोइन भी थी इसके अंदर, सोनाली बेंद्रे।
0: बिल्कुल
1: तो सर
0: बिल्कुल.
1: वहां पर गाने भी शूट हुए होंगे उसी एकेडमी में।
0: गाने शूटिंग हमने कभी देखे नहीं. आई
1: अच्छा,
0: थिंक हमारे कुछ सीन्स वगैरह मैस के, पीटी ग्राउंड, क्रॉस कंट्री,
1: ये
0: मिलिट्री
1: हुए।
0: हॉस्टल, ये सब होते थे. लेकिन और सोनाली बेंद्रे तो पूरी एकेडमी की फेवरेट थी.
1: अच्छा
0: मतलब आप आई डोंट नो लेट 90s में
1: जी जी
0: एंड
1: जी
0: स्टिल टुडे शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस
1: यस
0: में.
1: ऑफ कोर्स।
0: और वो एक्टिंग एज अ पर्सन शी सो नाइस. जिनसे मिली भी सब इतनी तारीफ करते थे कितने अच्छे से बात करती हैं. तो पूरी एकेडमी बस सारी
1: दीवानी थी
0: दीवानी थी. कहीं जहां बहुत ही देखने भाग जाते थे.
1: तो मैंने तो सर आपसे बात करते करते ना वो एक सॉन्ग भी निकाल लिया है, तो उसके बारे में बताइए सर कुछ, कोई किस्सा किसी शूट के दौरान आपके सामने आया हो, आपकी टीम के सामने आया हो।
0: हमें बस एक बार एक मिलिट्री हॉस्पिटल का वहां पे सीन है
1: अच्छा
0: मूवी में. तो जैसे ही होता था तो सारी एकेडमी में बात हो जाती सोनाली बेंद्रे मिलिट्री हॉस्पिटल में आई है.
1: अच्छा
0: तो 1 घंटे में कई मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरी हाथ दर्द हो रही है. वहां पे पहुंच गए बहुत सारे रिपोर्ट करने, सबको वापस भगा दिया था.
1: अच्छा
0: तो सब चलता रहता था वहां पे.
1: जी,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: अजय देवगन की कभी कोई शूट आपके आसपास आपके सामने कभी हुआ, क्योंकि एकेडमी में ही शूट चल रहा था।
0: हाँ जी. वो ड्रिल ड्रिल में पीटी में कई बार आते थे. बट आई मीन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर जो लेवल ऑफ फिटनेस, जो लेवल एनडीए कैडेट्स का होता है
1: बिल्कुल
0: वो फिल्मी हीरोज का नहीं होता. तो अक्सर मतलब थोड़ा सबड्यू करके थोड़ा खर्च के उनसे करवाया जाता था
1: अच्छा,
0: ताकि फिल्मी इफेक्ट पूरा दिख जाए.
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: रीटेक्स के साथ
0: हाँ
1: वो
0: जी.
1: सब ठीक से हो
0: पर मैं
1: जाए।
0: आपको ये बता रहा हूँ, हमें बहुत अच्छा महसूस होता था. मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होता था
1: कॉन्फिडेंस
0: कि बॉलीवुड वो बनने की कोशिश कर रहा है जो हम हैं.
1: जो आप हैं
0: जो एक कॉन्फिडेंस आता
1: बिल्कुल
0: है कि ये मतलब वो एक्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो फौजी नहीं है, वो अंडर
1: बिल्कुल
0: ट्रेनिंग नहीं है. पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता था देख के कि हमने जो अचीव किया है, जो हमारी पर्सनालिटीज हैं, जो हमारा फिटनेस है,
1: फिटनेस है
0: वो लोग एज एन एक्टर बनने की कोशिश करते हैं टू मेक अ गुड मूवी. सो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ सारी लाइफ रहता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजर साहब मैंने यहां पर ये उस फिल्म का जो आपके साथ यादों में जुड़ी हुई है
0: बिल्कुल
1: मेजर साहब, उसका ये खूबसूरत ट्रैक निकाल लिया है और आपकी पसंद का भी है। मेजर मानिक एम जौली हमारे साथ हैं, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। आप बने रहे हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स का और मैसेज करते रहे।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। शाहिद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जोली। इंडियन आर्मी वेटरन हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं और गोरखा राइफल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं। फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट इनोवेटर और मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं। फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के और सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं। टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार अगर बताना भी चाहूं तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मेजर साहब, हम बात कर रहे थे सर आपके एनडीए के दौर की, वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आपने जो सुनाया और हमने गाना भी वो सुना, सोनाली बेंद्रे पर और अजय देवगन पर जो पिक्चराइज किया गया। हाँ। आपने उनको देखा कि वो शूट के दौरान क्या क्या वहां पर इंसिडेंट्स हुआ करते थे। तो मैं आगे बढ़ूं, मैं सोच रहा हूं कि पहले क्यों ना मैसेजेस ले लेता हूं, क्योंकि हमारे लिसनर इंपॉर्टेंट है, वो इंतजार कर रहे होंगे, हम उनके मैसेज पढ़ के सुनाएं। सर मनीष इदरीसी का मैसेज है रामपुर बिलासपुर से। नमस्कार सर जी, नमस्कार मेजर साहब।
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: ये मैसेज है, जय हिंद टू सर, आई एम अजय अहिवार फ्रॉम मध्य प्रदेश। फिर से आया इनका मैसेज और क्लास 12 प्रिपेयर्ड कर रहे हैं ये। फिर से मैसेज आया और हमने आपको बताई दिया है, सर ने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब ये मैसेज आया सर, संदेश टू सोल्जर्स, मेजर साहब जय हिंद। शो रोचक, ज्ञानवर्धक, लाभप्रद और सकारात्मक संदेश देने वाला है। मेजर साहब इस शो से लोग इंस्पायर्ड होंगे, देशभक्ति का जज्बा कायम रहेगा, ये कह रहे हैं।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हर दिल में देश प्रेम की आग सुलगती रहनी चाहिए। और ये एक आगे कुछ पंक्तियां लिखते हैं सर, अर्ज है चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें,

0: जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये हैं सर एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, जिन्होंने ये मैसेज किया है। और इसके अलावा मैसेज है विलेज बरकतपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर स्टेट यूपी, नेम चरुण कुमार, आप सभी आर्मी ऑफिसर्स को मेरा जय हिंद सर।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और ये है सर नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, प्रोग्राम हमें अच्छा लग रहा है जी, खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, करता हूं उन्हें सलाम ए वतन, सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।
1: भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत अच्छा मैसेज साहब
0: जी। सर मैसेज और भी हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ के सुनाई दूं फिर आगे हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे मैसेज हैं सर, ये बहुत लंबा एक मैसेज है। गुड आफ्टरनून टू यू बोथ सर, संदेश टू सोल्जर्स, अ नाइस प्रोग्राम, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स सोल्जर्स एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, थैंक यू शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एक्सपीरियंस स्पेशली रिगार्डिंग कारगिल वॉर, रिगार्डिंग योर अचीवमेंट एंड मेडल्स विच आर डिजर्विंग ऑन द 15th ऑफ आवर कंट्री इंडिया सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे, ऑन दिस ओकेशन आई विश All Indians happy 80th Independence Day, भारत माता की जाए, अपना भारत महान है, वंदे मातरम, जय हिंद। फ्रॉम एम आर मधुसूदन, ये एम बी राजेश्वर, सन ऑफ एम बी राजेश्वर, दत्तर कॉलोनी नियर शिवालयम टेम्पल, सीता फल मंडी, सिकंदराबाद, तेलंगाना से सर ये मैसेज आया है।
1: थैंक यू,
0: काफी खूबसूरत और बड़ा लंबा मैसेज था ये। और ये है जय हिंद सर, आपको और हमारे देश को समस्त जवान स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से।
1: धन्यवाद, आपको भी जय हिंद। और मैं बोलना चाहूंगा
0: जी जी जी
1: कि ये सारे अच्छे मैसेजेस सुन के, चाहे मैं अभी रिटायर्ड हूं या सर्विंग
0: जी,
1: हो
0: जी,
1: किसी भी फौजी को बहुत अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं ना कि आपको पता है भाई हमारे देश में इतना प्रेम और रिस्पेक्ट है फौजियों के लिए।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल,
1: आप अपनी ड्यूटी करते घबराते नहीं, आपको पता है पीछे मेरा देश है,
0: पीछे मेरा देश है, देशवासी हैं सर, और देशवासी सर आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और सर हम आपके ऋणी हैं, क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे देश के भीतर भी, देश की सीमाओं पर भी, देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो डेडिकेशन है देश और देशवासियों के लिए, तो वो सैल्यूट है सर हमारे सोल्जर्स को, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स। सर मैसेजेस में लगातार अभी मैं सोचता हूँ रोक दूं, अभी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं आपसे सर आगे बातचीत बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सर आपसे हम जानने के, फिर आप जब गोरखा रेजिमेंट में आप हुए कमीशन 1999 में,
1: हाँ
0: तो वो फिर जो सफर शुरू हुआ, हाँ अब आप बताएं कि फिर जिस तरह से आपका फिर आगे आप जाते हैं।
1: मैं तो फिर कमीशन कुपवाड़ा में था, कश्मीर में फॉरवर्ड एरिया है, वहां पे हमारा रोल या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कारगिल के एकदम बाद था।
0: अच्छा,
1: तो सीज फायर तो नहीं था, तो दिन रात गोलाबारी होती रहती थी।
0: अच्छा,
1: तो हम भी उन पर करते हैं, वो भी हम पर करते रहते हैं। उस टाइम ये क्रॉस बॉर्डर रेड बहुत होती, उन्होंने काफी सोल्जर्स हमारे उसमें भी शहीद हुए, लेकिन जो था मतलब वो एक सोल्जर के लिए, एज अ सोल्जर
0: जी
1: एक एक्सपीरियंस था कि आप किसके लिए सोल्जर बने। अगर आपने लड़ाई नहीं देखी, अगर आपने गोलाबारी नहीं देखी, अगर आपने वो, तो इस हिसाब से फिर हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में चले गए
0: जी,
1: जहां पे हमने, मेरी यूनिट ने बहुत अच्छा करा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव एरिया था।
0: अच्छा, मतलब सेंसिटिव एरिया था और हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग।
1: तो कुपवाड़ा बॉर्डर जो है वहां से बहुत सारे लॉन्च पैड है जहां से पाकिस्तान टेररिस्ट अंदर भेजता रहता है।
0: ओके,
1: तो इस कारण वो बहुत एक्टिव एरिया माना जाता है
0: और वहां पर आपकी पोस्टिंग थी।
1: हाँ जी, तो आम आदमी एक्चुअली अक्सर जब भी आप बात करते हो जंगल में टेररिस्ट ढूंढ रहे थे, पहाड़ में ढूंढ रहे थे
0: जी,
1: उसका स्केल समझ नहीं पाता,
0: जाहिर
1: स्केल पे हम बात कर रहे हैं कि वो जंगल कितना बड़ा था।
0: अगर मैं इमेजिन भी करूं तब भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता।
1: यूं लगा लीजिए एक पूरा शहर जंगल है।
0: अच्छा,
1: जिस शहर में आप लोग, आपके लिस्नर रह रहे हैं
0: जी,
1: वो पूरा शहर जंगल है और आप 100 लोग हैं।
0: अच्छा,
1: आप कितना ढूंढेंगे, और उसमें पहाड़ियां भी हैं, क्लिफ भी हैं, बर्फ भी पड़ी हुई है 20-20 फुट।
0: 20-20 फुट,
1: 20 फुट तो एवरेज आफ्टर स्नोफॉल होती है।
0: अच्छा,
1: और आप 9000 फीट से आपका बेस शुरू होता है, 15-17000 फीट तक जा रहा है, आपको सारा पेट्रोल करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा फौजी से आप सब लोग पूछते हैं कैसा था ये, हाँ ठीक था, अच्छा था,
0: तो यानी कि वो जो ठीक था कह रहे हैं वो,
1: ओनली रीजन इज समझा पाना पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरह का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है।
0: सर मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, वो आप बताइए प्लीज।
1: तो सी जो माउंटेन्स हैं वहां पे क्लिफ्स हैं
0: जी,
1: और बर्फ पड़ी हुई है, एक पीछे की तरफ पूरा जंगल है,

0: चलने की जगह नहीं है, स्नो स्टॉर्म आ जाता है, ब्लिजर्ड आ जाएगा.
1: अच्छा.
0: उसके बाद ऊपर से टेररिस्ट है
1: जाहिर है,
0: जो
1: जो
0: वेट
1: सबसे
0: कर रहा
1: बड़ा,
0: है, जो हाँ जो वेट कर रहा है कि आप
1: वो
0: उसको
1: वेट कर
0: पहले
1: रहा
0: दिख
1: है
0: जाए.
1: जी.
0: खाना आपको हफ्ते में एक बार हेलीकॉप्टर से आता है.
1: एक बार
0: हाँ, जो भी फ्रेश राशन वो आपको हफ्ते में एक बार मिल जाएगा, राइट. आपको अगर गर्म गर्म गर्म रहना है, ये 20-25 साल पुरानी बात है, तो उसमें केरोसिन का स्टोव यूज करना पड़ रहा
1: ओके
0: है. मॉडर्न इक्विपमेंट उस टाइम नहीं थे.
1: जी.
0: डेली आप, क्योंकि अनदर थिंग इज, ये कारगिल के एकदम बाद की बात है,
1: हाँ
0: तो इंडियन आर्मी ने, भारत सरकार ने डिसाइड करा कि कारगिल इसलिए हुआ था कि कुछ पहाड़ी हमने विंटर वैकेट करी थी तो पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे,
1: ओके
0: तो अब हम कुछ भी विंटर वैकेट नहीं
1: नहीं
0: करेंगे.
1: करेंगे, हम वहां पर भी अपनी ड्यूटी रखेंगे.
0: तो नेचुरली प्रेशर इज ऑन आर्मी. अब वो पहाड़ियां जहां पर हम आज तक गए भी नहीं थे, उनके
1: ओके
0: ऊपर छोटे छोटे टुप्पे, हिल, रॉक, वहां पे जाके नई पोस्ट एस्टेब्लिश करना, रिसोर्सेज नहीं. क्योंकि आप अगर फौजी को ये भी बोल देंगे ना, चप्पल में जाओ फौज, बर्फ में जाके पोस्ट
1: जी.
0: बना लो, वो चला जाएगा.
1: अच्छा,
0: हमें आदत में नहीं होता है बोलना कि ये कंप्लेंट करे कि ये नहीं है, वो नहीं
1: एक्सक्यूज
0: है,
1: कुछ नहीं.
0: या तो उस हिसाब से काफी डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्टी में सर्विस थी. और उस सारे में आपको अंदर आते हुए टेररिस्ट को भी रोकना है, जो अंदर आ गए उनको भी ढूंढना है.
1: अच्छा
0: आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो वहां पे जो गांव है, लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप, वो आपके देशवासी हैं,
1: बेशक,
0: आप नहीं
1: उनकी भी
0: चाहते.
1: हिफाजत.
0: हाँ, आपको ये नहीं चाहते वो सोचे फौज हमारे को तो परेशान कर रही है. तो इट इज अ वेरी हाई स्ट्रेस, वेरी स्ट्रेसफुल जॉब. और एक ही चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है, मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली, ये इस तरह के मैसेजेस कि आपको बस
1: जहां से
0: ये,
1: हमारी बात शुरू हुई
0: हाँ,
1: थी.
0: कि मैं आपको यही बस, कि जो मैं कर रहा हूं इस देश में उसकी वैल्यू है, ये लोग उसको मानते हैं मैं क्या कर रहा हूं,
1: जी, उनको
0: और
1: कदर है
0: बस
1: इस बात की, और उनको परवाह है कि भाई हमारा जो फौजी,
0: ये
1: हमारा
0: तो
1: भाई
0: मान लीजिए
1: है.
0: बात है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट दुनिया के एक तरफ, सारे लीडर ब्यूरोक्रेसी और
1: बिल्कुल,
0: फौजी एक तरफ,
1: फौजी एक तरफ.
0: जो प्यार हम फौज को मिलता है वो नहीं, और इसी कारण से
1: जी
0: आप कॉन्फिडेंटली देश सेवा में लगे रहते हैं.
1: बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये तो मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ. हम हर हफ्ते यहाँ पर संदेश टू सोल्जर्स में अपने जो हमारे आर्मी वेटरन्स हैं और जो सर्विस में भी हैं, फौजी आते हैं, तो उनसे मिलकर के वो जो देशभक्ति का जज्बा है ना सर, जो है ऑलरेडी, वो कई गुना बढ़ जाता है. क्योंकि वो बातें, वो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस, जो हम कभी ना महसूस कर सकते, हम कितना भी इमेजिन करने की कोशिश करें, जैसे कि आपने बताया अभी, वो हम कर ही नहीं सकते. और एक फौजी उसको एक्सप्लेन कर पाने में मतलब असमर्थ ही महसूस करेगा कि मैं कैसे बताऊं. तो ये एक अननोन सी, एक जो डेडिकेशन हम महसूस करते हैं कि वो हमारे फौजियों की है, तो वो सिर्फ एक दिल से जज्बा ही हम जाहिर कर सकते हैं,
0: बिल्कुल.
1: इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. सर, इसी दौरान जैसे अब आप जब दूर होते हैं, घर से भी दूर होते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे हालात में होते हैं जहां पर जैसा, तो कितने टफ, तो फिर घर की भी याद आती होगी.
0: बहुत बिल्कुल. और ये, दिस इज, वहां पे मोबाइल भी नहीं था,
1: और उस जमाने में
0: तो
1: तो
0: महीनों महीनों में बात होती थी. मैं 10-15 दिन बाद चिट्ठी आती थी,
1: 10-15 दिन में
0: क्योंकि
1: एक बार.
0: पहाड़ में वो एक खच्चर के ऊपर वो पोर्टल लेके आता था,
1: अच्छा.
0: चिट्ठी दूर से दिख जाता था, 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है, और सारे एक्साइटेडली बैठे रहे कि मेरी भी चिट्ठी
1: मेरी भी
0: आई है,
1: चिट्ठी
0: मेरी.
1: आएगी
0: तो जो आप फिल्मों में छोटा सा दिखाते हैं ना चिट्ठी का क्रेज, वो
1: जी.
0: मजाक नहीं है एक्चुअली.
1: अच्छा.
0: आपको महीने में एक बार चिट्ठी आनी है आपकी, और आपको लगता है यार कहीं से, परिवार से, आपके दोस्तों से
1: दोस्तों
0: कुछ
1: से
0: खबर आए, तो लेटर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी वहां
1: क्या
0: पे.
1: बात
0: हाँ,
1: है, मतलब लेटर्स की. हम आज
0: और
1: ये
0: 15 दिन से आप लिख रहे हो,
1: जी
0: आपको उसी डाक से वापस
1: वापस
0: भेज
1: भी
0: देंगे.
1: भेजना है.
0: या
1: ओके.
0: तो लेटर्स की बहुत वैल्यू. तो उस टाइम एक रेडियो कैसेट ये सब होता था,
1: अच्छा.
0: तो आपके पास कुछ कैसेट्स बाई चांस जो आपके साथ ऊपर चली
1: ऊपर
0: गई,
1: चली गई.
0: वो नेचुरली या तो आपकी फेवरेट बन जाती थी क्योंकि
1: हाँ,
0: और
1: सुनते
0: कुछ था
1: सुनते, क्योंकि और
0: नहीं,
1: कुछ है ही
0: या
1: नहीं.
0: रेडियो सुनते थे कभी अपना कभी पाकिस्तान का,
1: अच्छा,
0: दोनों कैच करते, तो बस कुछ गाने आपके फेवरेट बन जाते हैं, आप वो सुनते रहते
1: तो
0: हैं.
1: उसमें से कुछ बताइए सर.
0: तो एक उस टाइम मेरा फेवरेट, बहुत अभी भी आस भी है, एक रुस्तम सर आपका पुराना गाना फिर

0: अंग निकाल लिया है
1: जबरदस्त।
0: मेजर मानिक एम जॉली आज के संदेश के हमारे खास मेहमान, सेना मेडल सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, और मेजर मानिक की पसंद का ये ट्रैक आप भी एंजॉय करें हमारे साथ, बने रहें संदेश सोल्जर्स में, शाहिद आपके साथ।

0: शाहिद की आवाज़। और मेरे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जौली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। और ये गाना मेजर साहब की पसंद से हमने सुना सुस्तम सौराब से। सर, यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो तो उतना शायद जोशीला नहीं था, लेकिन जिस जोश से हम आगे बढ़े हैं तो प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया और अभी मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए बची हुई हैं। तो मैं मैसेजेस जो ऑलरेडी काफी सारे इकट्ठे हो गए, मैं उनको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे ये जानना चाहूंगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी आपने एक काफी बड़ा समय दिया, एक बड़ा रोल प्ले करा, तो वो क्या था एक्सपीरियंस आपका, उसके बारे में बताइए।
1: तो शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस में आप वॉलंटियर करते हैं कि मैं इसमें सर्विस करना चाहता हूँ, आपको 2 साल का प्रोबेशन रखते हैं वो।
0: अच्छा।
1: तो अराउंड 10-11 साल में MI में था, तो वहां पे मैं काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट था।
0: अच्छा।
1: और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, काउंटर इंटेलिजेंस की हमारी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए।
0: ओके।
1: इंटेलिजेंस ऐसे होती है उनकी खबर लें, तो अलग अलग डोमेन में, और नॉर्थ मेरा डोमेन था तो उसमें वही नौकरी करी मैंने ज्यादा, काफी ऑपरेशन किए हमने, काफी देश में जो जासूस घूम रहे हैं काफी पकड़े हैं।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह से मेन टास्क हमारा फिर ये होता है कि
0: कोई अगर इंट्रूडर है,
1: हाँ जी,
0: तो उसका पता लगाना और उसको पकड़ना।
1: क्या, और हमारे जो बेसिकली कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस का बेस इज कम्युनिकेशन, वहां से खबर आती रहे और यहां से खबर ना जाए। बाकी सारी दुनिया इसके अराउंड बनी हुई है, ये ये दो पिलर हैं। सो अपना अपना रोल सब प्ले करते हैं। तो उसमें मैंने मैंने स्पेशलाइजेशन थी मेरी कम्युनिकेशंस की, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, जो अभी मैं पढ़ाता हूँ और फौज छोड़ने के बाद तब से वही करते हैं
0: जी। तो सर, इसमें जो जो साइबर सेल का भी जो रोल रहता है, वो भी आपने सेटअप किया, उसमें भी आप शामिल रहे।
1: तो 2001-2002 में जब नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था, तो सबको समझ आया था कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन अब होगा।
0: ओके। ये वो जमाने की बात है,
1: चिट्ठी फोन पे चल रहा था सारा
0: जी
1: काम।
0: जी जी।
1: तो उस टाइम देश का आर्मी का रादर पहला साइबर सेल पुणे में मैंने सेटअप करा था। मैंने एक दो कोर्स करे थे, स्पेशली कोर्स करवाए साइबर इन्वेस्टिगेशन के, एथिकल हैकिंग के, तो हमने समझा कि ये कैसे। तो उससे काफी आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी चीजें टेक्नोलॉजी नहीं आती है पहले पकड़ने की कोशिश करती है।
0: Okay.
1: ताकि हमें एक स्टेप आगे रहे।
0: hmm.
1: तो फिर हमने साइबर सेल, साइबर पॉलिसी, इस पे काफी काम किया।
0: अच्छा।
1: तो वो आज तक चल रहा है और काफी अब तो बहुत डेवलप्ड है, पूरी डोमेन है।
0: बिल्कुल।
1: तो उस टाइम तो नया नया था
0: तो जाहिर है टफ भी रहा होगा उस टाइम पर, उसको सब मतलब स्ट्रीमलाइन करना,
1: समझने में टाइम लगता था,
0: समझने में टाइम
1: कैसे होता है
0: जी। तो सर, अभी ये सब चीजें तो हो गई आपकी,
1: ये वो वाला जमाना था शायद जब आप किसी से ईमेल मांगते थे, वो ईमेल के साथ पासवर्ड देता था।
0: अच्छा।
1: मैं सच बता रहा हूँ, तो लोगों ने कहा पासवर्ड क्यों दे रखा था, फिर वो चेक कैसे करेगा।
0: अच्छा।
1: मतलब धीरे धीरे समझ आया
0: कि भाई ये जो साइबर है ये किस तरह से काम करता है और इसमें कैसे सिक्योर रह सकते हैं। सर, इन सब चीजों के साथ साथ आप जो हैं ऑथर भी हैं, आपने किताब लिखी है कुपवाड़ा कोड्स, और इसके बारे में जरूर बताइए, इतना सब आपने किया, आप एक डायरिंग आर्मी ऑफिसर, इंटेलिजेंस पर आपने काम किया, काउंटर टेररिज्म पर आपने काम किया, आपको सेना मेडल से और दूसरे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आपको पीएम मोदी के मिशन इनोवेशन के नेशनल चैंपियन के तौर पर भी आपको सम्मानित किया गया, अब आप ऑथर भी बन गए।
1: तो ये अभी मैंने 1 साल पहले लिखी थी, तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऑपरेशंस को इकट्ठा करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, गोरखा गैरिसन।
0: अच्छा।
1: जिसमें गोरखा यूनिट और कुछ इंटेलिजेंस वाले जम्मू कश्मीर में ISI और टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक स्टोरी है,
1: ये एक पूरी ये सीरीज है, ये फर्स्ट बुक थी उसकी, कुपवाड़ा कोड्स।
0: ओके।
1: जो कि पिछले साल आई थी और हार्पर कॉलेज के साथ है।
0: क्या बात है।
1: तो
0: सर, क्या आप चाहेंगे कि इसको मतलब हम OTT प्लेटफॉर्म या कहीं पर देखें, इसको अगर पिक्चराइज किया जाए इसको, फिक्शन।
1: इट इज अ वेरी गुड स्टोरी, आई होप किसी दिन इस पे कुछ बने।
0: जरूर सर, जरूर, हमारी शुभकामनाएं है और हम जरूर चाहेंगे कि इस पर अच्छी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, जो इसमें एक्सपर्टीज के साथ जो आपने लिखी है ये, उसको जरूर पर्दे पर, छोटे पर्दे पर ही सही लेकिन उतारा जाए और हम उसको देख पाए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातें करी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। और 80वां देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसकी भी बहुत बहुत तमाम देशवासियों को, हमारे सुनने वालों को, और मेजर मानिक आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर, जाते जाते जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जाते जाते मैं सर आपसे अब ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कम से कम एक आपकी पसंद का गाना जरूर चलाऊं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके दिल से करीब है।
1: तो मैं आपको बताता हूँ, जब NDA में थे तो ये पिक्चर रिलीज हुई थी बॉर्डर
0: जी, बड़ी फेमस,
1: तो उसका गाना था संदेश से आते हैं
0: जी।
1: संडे को दोपहर को हर कमरे में गाना चल रहा था।
0: अच्छा।
1: और इस गाने आई डोंट थिंक फौजी लाइफ, फौजी इमोशंस को इस गाने से अच्छा कोई कैप्चर करता है।
0: क्या बात।

0: तो मैं फर्स्टली आपको थैंक यू, आपके सभी लिसनर्स को जय हिंद
1: सर. लिसनर्स तो हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं और मैसेजेस आ रहे हैं.
0: हाँ जी, और स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए. यहां पर मेजर मानिकम जॉली की पसंद का ये गाना हम छोड़ करके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सर को जाते जाते जो मैसेज कुछ एक तो मैं कम से कम पढ़कर सुनाई दूं. सर, हैट्स ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस शेयरिंग. विश वन लाइफ वी गेट अ चांस टू लिव 1% ऑफ योर लाइफ. प्लीज शेयर योर बुक फ्रॉम यूएसए न्यू जर्सी. ये मैसेज आया है किसी का और इनका नाम मुझे नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन इन्होंने सर बड़ा दिल से मैसेज कराया.
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज. जय हिंद आपको भी.
1: और सर ये मैसेज है, सर कैन वी ज्वाइन सीक्रेट सर्विस थ्रू एनडीए और आफ्टर एनडीए. ये पूछ रहे हैं सर. समय हालांकि खत्म हो गया लेकिन मैं क्या करूं.
0: हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर, आप फौज में जाइए और कुछ भी ज्वाइन करें.
1: और सर ये मैसेज है, हेलो सर, एनडीआर एंड आरजे एंड मेजर सर, जय हिंद जय भारत सर. जैसे आप जैसे महानुभाव की बातें सुनकर यूथ बहुत इंस्पायर होते हैं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है. आप सदा स्वस्थ रहें. मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से सर ये मैसेज आया सर आपके शहर.
0: अरे वाह, हमारे शहर से आया
1: जी.
0: भाटिया जी थैंक यू वेरी मच, जय हिंद आपको भी.
1: और सर मेजर साहब को विजय कुमार त्रिचुरपल्ली की ओर से जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं. सर विजय कुमार है ये.
0: आपको भी विजय जी जय हिंद आपको भी.
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है. बहुत बहुत धन्यवाद मेजर एम जॉली हमारे साथ थे आज, वेटरन इंडियन आर्मी सेना मेडल से सम्मानित. और आप सुन रहे थे संदेश सौदर्श शाहिद के साथ.

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे देश में पर्यटन को समृद्ध करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना के विषय में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत।

श्रोताओं, देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हीं कारणों से पर्यटन को समृद्ध करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना चलाई जा रही है। भारत में सतत और उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन को विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में बौद्ध, तटीय, मरुस्थलीय, पारिस्थितिकी, विरासत, पूर्वोत्तर आदि थीम आधारित पर्यटन सर्किट

किटो का एकीकृत विकास करना है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ यह योजना भारत को एक पर्यटन स्थल के रूप में उसकी पूर्ण क्षमता का एहसास कराते हुए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इस योजना के माध्यम से देश के विरासत शहरों को दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विकसित और संरक्षित किया जा सकेगा, साथ ही देश में टिकाऊ एवं जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास भी किया जा सकेगा। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार का सृजन करना, आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करना, इसके लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, क्षेत्र के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना, पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करके पर्यटकों के आकर्षण को स्थायी रूप से बढ़ावा देना, इन्हीं लक्ष्यों पर आधारित स्वदेश दर्शन योजना, वेबसाइट, ऐप और पर्यटन मेलों के जरिए पर्यटकों को आकर्षित करती रहती है। पर्यटन के क्षेत्र में ही भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रसाद योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत चिन्हित तीर्थ स्थलों और विरासत स्थलों के विकास को एकीकृत किया जाता है। यह योजना पूरे भारत में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है। इस योजना का पूरा नाम है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, यानी तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। इस योजना का उद्देश्य तीर्थ स्थलों पर सड़क, पानी, स्वच्छता, पार्किंग आदि बुनियादी ढांचे में सुधार करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना तथा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों का संरक्षण करना है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना न केवल सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करती है, वरन स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर देश की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने में सहायक होती है। पर्यटन आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान तो देता ही है, क्षेत्रीय विकास, सामाजिक समावेशन, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने में भी सहायक है। पर्यटन के क्षेत्र में की गई इन पहलों का दृष्टिकोण केवल पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मजबूत और उच्च मूल्य वाले पर्यटन इकोसिस्टम के निर्माण तक विस्तृत है। श्रोताओं, भारत विविधताओं का देश है। एक ही देश के भीतर पर्यटक, प्राचीन सभ्यता, जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं, पवित्र तीर्थ स्थलों, विभिन्न वन्य जीवों से भरे प्राचीन जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ों, जीवंत त्योहारों, विविध व्यंजनों और विश्व प्रसिद्ध आरोग्य पद्धतियों का अनुभव कर सकते हैं। स्वदेश दर्शन योजना एवं प्रसाद योजना के अंतर्गत विभिन्न पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढांचों में सुधार एवं कनेक्टिविटी आदि सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाता है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले और पर्यटक भी पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकें।

अभी हम पर्यटन को समृद्ध करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना के विषय में चर्चा कर रहे थे। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आइए अब आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में बता दें।

अब से कुछ ही देर में शाम 5:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। साथ ही होगा सेगमेंट गुफ्तगु बस यूं ही, जिसमें यूसुफा की स्टूडियो में आमंत्रित प्रतिभाशाली युवा मान्य राजपूत से बातचीत सुनवाई जाएगी। शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे हरियाली तीज पर विशेष कार्यक्रम पग डंडी। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग प्रमोद सिंह का होगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे अंकित सैनी।

शाम 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। नुसरत अली और साथियों की आवाज में कव्वाली सुनवाई जाएंगी सुगम संगीत में 7:32 पर। आज रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुने

एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर, रात्रि 9:30 पर कंट्री वाइड इनसाइट्स का प्रसारण किया जाएगा। यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे अमन कुमार के आलेख पर आधारित रूपक तिरंगा नहीं झुकने देंगे। प्रस्तुति शोभित शर्मा की होगी और प्रस्तुति सहायक होंगे सुबेंद्र सिंह, आलोक कुमार। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर।

श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आइए अब आपको कल के प्रमुख प्रसारणों के विषय में बता दें। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। कल रात्रि 8:15 पर हरियाली तीज पर्व के अवसर पर कवि गोष्ठी का प्रसारण किया जाएगा। इस कवि गोष्ठी में प्रतिभाग करेंगी श्रीमती सुनीता सोलंकी, पूजा गोयल एवं सुमन प्रभा। संचालन श्रीमती मंजू जौहरी का होगा। फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद आप सुनेंगे कल रात्रि 9:30 पर।

फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर प्रसारित किया जाएगा रात्रि 10:30 पर। यह कार्यक्रम कल रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे। कल दिन में 1:15 पर घर संसार का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें क्रम होगा माटी मारे देश की। कल प्रातः 10:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। यह कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर आधारित होगा, विषय रहेगा भूले बिसरे नायक। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नया दौर है, नई सोच है और नए हमारे इरादे हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के खुद से कई वादे हैं। रुकना तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है मेरे यारों, क्योंकि युववाणी के इस मंच पर हम सब जीत के शहजादे हैं।
1: विश यू अ वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में, जिसमें आज की शाम आपके साथ प्रोग्राम में रहूंगी मैं आपकी अपनी दोस्त रुमान परवीन।
0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, रुमान के साथ आज प्रोग्राम में बनी रहूंगी मैं आपकी रेडियो पार्टनर और सखी सहेली वंशिका सोती।
1: और दोस्तों कैसे हैं आप? अरे वंशिका तुम तो बताओ तुम कैसी हो?
0: रुमान जब हमारे दोस्त बढ़िया तो हम भी बढ़िया, एकदम एनर्जी से फुल, और हमारे दोस्त भी एकदम एनर्जेटिक ही हो जाएंगे प्रोग्राम सुनकर।
1: ये तो है वंशिका, क्योंकि आज प्रोग्राम में बहुत कुछ खास होने वाला है। जैसे कहानी के उस पार सेगमेंट में जाएगा हमारा एपिसोड 4, जहां आसमान खत्म नहीं होता। साथ ही मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया सीरीज का एपिसोड 13 बटुकेश्वर दत्त, और रहेगा नॉन फिल्मी चार्टबस्टर।
0: बहुत कुछ है प्रोग्राम में।

0: दोस्तों, तकनीक और रफ्तार की इस दुनिया में भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण मुक्त सफर को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में ग्रीन एनर्जी का दौर शुरू हो चुका है।
1: दोस्तों, भारतीय रेलवे अब ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है और इसी से जुड़ा है हमारा आज का बूझो तो जाने का सवाल।
0: जी हाँ दोस्तों, तो आज का बूझो तो जाने का सवाल आपके लिए रहेगा कि भारत ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से शुरू की,
1: जिसका सही जवाब आपको लिख भेजना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में।
0: और आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक नॉन फिल्मी चार्टबस्टर के इस गीत के साथ।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
7: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
8: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
9: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
8: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
10: और डोज में क्या है?
9: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
11: अरे भाग्यवान, खाना ले आओ जल्दी से।
12: अरे लाई जी लाई, सब्र नहीं होता है तुमसे बिल्कुल भी। लो ये रहा खाना, खाओ।
11: ये क्या, फिर से बैंगन की सब्जी बना दी तुमने? तुम्हें मालूम नहीं है क्या?
12: क्या, हर टाइम कुछ भी बना लो तुम, तो यही ऐसे ही करने लगते हो, पता नहीं क्या है। क्या हो गया अगर बैंगन की सब्जी बनाई है तो?
11: अरे तुम्हें मालूम नहीं क्या, ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा पैदा होता है, गधा।
12: ये बात तो वैसे तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी।
11: है?
9: जी हाँ, मजा आ गया।
12: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम में, और अब शुरू करते हैं अपना डेली सेगमेंट। कुछ खास है आज
11: दोस्तों, किसी की जिंदगी बचाने के लिए हमेशा डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, कभी कभी आपका एक फैसला भी किसी की जिंदगी की वजह बन सकता है।
12: जी हाँ दोस्तों, और आज का दिन हमें इसी खूबसूरत सोच से जोड़ने के लिए है, क्योंकि दोस्तों आज है 13 अगस्त, यानी कि विश्व अंगदान दिवस।
11: वंशिका एक बात बताओ, अगर कोई इंसान अपने जाने के बाद भी किसी और की जिंदगी में रोशनी बन सकता है, तो इससे खूबसूरत बात क्या होगी भला?
12: इससे खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अंगदान का मतलब ही है कि किसी व्यक्ति के अंग उसकी सोच, इच्छा और मेडिकल एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी जरूरतमंद व्यक्ति के इलाज में काम आ सके।
11: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम में से बहुत से लोग अंगदान के बारे में सुनते तो हैं, पर कुछ मिथ्स की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
12: ये बहुत होता है दोस्तों, आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने टिश्यूज या कोई भी बॉडी पार्ट डोनेट करने का फैसला करता है, तो मेडिकल रूल्स और कंसेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनका ट्रांसप्लांटेशन जरूरतमंद पेशेंट्स के लिए किया जा सकता है।
11: और याद रखिए दोस्तों, अंगदान सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि इंसानियत और अवेयरनेस का भी हिस्सा है।
12: दोस्तों जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं, किसी के काम आ जाए तो उससे खूबसूरत कोई इनाम नहीं।
11: बिल्कुल दोस्तों, और दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, और अब हम सुनेंगे
12: मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 80वें स्वतंत्रता दिवस के रनअप पर विशेष कार्यक्रम।
11: दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया चल रही है, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो उसी के उपलक्ष्य में चल रही है, और जिसका आज जो हमारा एपिसोड जाने वाला है वो एपिसोड 13, बटुकेश्वर दत्त। तो चलिए चलते हैं स्टूडियो से बाहर, और मेरे साथ है हमारी प्यारी सी साथी
12: वंशिका। दोस्तों भारत केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि विचारों, संघर्षों, त्याग और परिवर्तन की सदियों पुरानी कहानी है। इस कहानी को आधुनिक भारत का स्वरूप देने में अनेक महान व्यक्तित्वों का योगदान रहा है, और ये जो हमारी सीरीज चल रही है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के तहत, हम ऐसे ही महान व्यक्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है भारत को महान बनाने में। तो रुमान, अब हम के जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बता देते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में, लेकिन हमारी जो ये युवा पीढ़ी है, क्या ये उनको जानती है या नहीं?
11: अरे वंशिका, ये जाकर युवाओं से पूछते हैं ना।
12: एग्जैक्टली, तो चलिए चलते हैं फिर अपने युवा साथियों की ओर,
11: और देखो हमें हमारी पहली साथी मिल भी गई है, जो की बहुत प्यारी सी है और हमारे सामने ही खड़ी है। तो सबसे पहले जानते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
13: माहिरा।
11: तो माहिरा, हम आपसे पूछते हैं कि आप हमारे एक अनसंग हीरो हुए हैं जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त, क्या आप उनके बारे में जानती हैं?
4: नहीं।
11: नहीं जानती? तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं उनके बारे में। तो वंशिका, जरा माहिरा को बताइए बटुकेश्वर दत्त के बारे में।
12: बिल्कुल बताते हैं रोमान। बटुकेश्वर दत्त भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भगत सिंह के निकट सहयोगी थे। उनका जन्म 18 नवंबर सन 1910 को कानपुर के निकट बंगाली परिवार में हुआ था।
11: जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बम फेंकने की कार्यवाही में शामिल हुए थे। इस कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या करना नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार और क्रांतिकारियों का विरोध पहुंचाना था। और दोनों ने गिरफ्तारी दी और अदालत का इस्तेमाल अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए किया। उन्हें कारावास और कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। और साथ ही आपको बता दें
12: कि स्वतंत्रता के बाद उनका जीवन अपेक्षाकृत गुमनामी और कठिनाइयों में बीता। देखा ना रुमान, गुमनामी में हम कह ही रहे हैं, गुमनाम की बात कर रहे हैं ना हम इस सीरीज के अंतर्गत। और लेकिन अब वो गुमनाम नहीं रहे हैं क्योंकि आज के सीरीज में हमने अपने युवा साथियों को बताया और मायरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मायरा, उम्मीद है कि आप भी बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में जान चुकी होंगी कि कौन थे बटुकेश्वर दत्त।
11: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए वंशिका। अब चलते हैं आगे और मिलते हैं अपने अगले युवा साथियों से।
10: हम अब आगे बढ़ रहे हैं और जुड़ेंगे हमारे अगले साथी से। तो चलते हैं हमारे अगले साथी की ओर और जानते हैं उनसे उनका नाम। तो आपका नाम?
13: जूही अग्रवाल।
10: ओके मैम, आप क्या करती हैं?
13: मैं एक टीचर हूँ।
10: ओके तो मैम, हम आपको बता दें कि आप वाकिफ़ हैं कि 80वां स्वतंत्रता दिवस है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप एक टीचर हैं तो आपके स्कूल में ऑब्वियस सी बात है आपने तैयारियाँ शुरू करवा दी होंगी, तो क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं आपके स्कूल में?
13: हमारे स्कूल में थोड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, डांस, खेल वगैरह ये सब हो रहे हैं।
10: ओके आप जानती हैं कि आज़ादी हमें यूं ही तो नहीं मिली है। इस आज़ादी को दिलवाने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ है। कुछ स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनके नाम से शायद हम सभी अवगत हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनको शायद हम जानते भी नहीं हैं। तो आज हम बात करें बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप उनके बारे में कुछ जानती हैं, मतलब ये नाम सुना है आपने या नहीं?
13: हाँ जी, मैंने नाम सुना है, मैं जानती हूँ उनके बारे में।
10: ओके तो आप टीचर हैं, ऑब्वियसली बात है आपको पता ही होगा, थोड़ा सा हमें बता सकती हैं आपके उनके बारे में, आप क्या जानती हैं?
13: हाँ जी क्यों नहीं, बटुकेश्वर दत्त भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भगत सिंह के साथी थे और 1929 में उन्होंने भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में कठिन यातनाएं सही। स्वतंत्रता के बाद भी उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। 20 जुलाई 1965 को उनका निधन हुआ। वे बहुत साहसी, देशभक्त और बलिदान के लिए सदैव याद किए जाते हैं।
10: तो ये तो आपने बहुत अच्छे से हमें उनके बारे में बता दिया है। तो आपको क्या लगता है कि वो हमारे आज के युवा के लिए प्रेरणा स्रोत हैं?
13: हाँ जी बिल्कुल।
10: तो आप आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगी इस स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से? क्योंकि देखिए, हम जब बात करते हैं ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की जो साहस से और निडर होकर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, तो आज का युवा क्या इस ओर बढ़ रहा है? क्या आप एक टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली बात है कि प्रेरित करती होंगी, कहानियां सुनाती होंगी स्वतंत्रता सेनानियों की, तो क्या मैसेज रहेगा आपका?
13: कि हमें अपने इन देशभक्तों को याद रखना चाहिए और उन्हीं की तरह अपने देश से प्यार करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए।
10: बहुत खूबसूरत मैसेज मैम। उम्मीद है हमारे युवा साथियों को आप का ये दिया हुआ मैसेज और जो भी आपने बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में बताया, जो भी जानकारी हमारे साथ साझा की, उस वो बहुत उपयोगी रहे उनके लिए और हमसे जुड़ने के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
13: थैंक यू।
10: तो देश के बारे में तो देखिए साथियों, हम बात कर ही रहे हैं।

0: और करनी भी चाहिए क्योंकि देश सर्वप्रथम है। और अब मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया सेगमेंट के अंतर्गत बढ़ते हैं अगले युवा साथी की ओर, और हमारी साथी हमें नज़र आ चुकी हैं, बिना देरी किए चलते हैं उनके पास और जानते हैं सबसे पहले उनसे उनका नाम। तो आपका नाम?
1: मेरा नाम अनुराधा है।
0: ओके अनुराधा जी, आप जानती हैं कि हमारा स्वतंत्रता दिवस बहुत करीब है। बहुत करीब क्या, ये कहें कि बस कल का ही दिन बीच में है, परसों स्वतंत्रता दिवस है ही, 15 अगस्त। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो देश प्रेम के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कह सकती हैं, क्या देश प्रेम होगा आपके लिए? क्या बॉर्डर पर जाकर सेवा करनी ही देश प्रेम है?
1: मैं तो ये सोचती हूँ कि हम सब लोग घर में बैठकर भी बहुत अच्छे से अपने देश के लिए बलिदान या मतलब कोई प्रोग्राम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ हमारे देश के लिए अच्छा रहे।
0: ओके मैम, आज हम बात कर रहे हैं बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में। हिस्ट्री में कभी आपने ये नाम सुना है या कुछ जानती हैं आप इनके बारे में? अगर कुछ है तो प्लीज़ हमारे साथियों के साथ शेयर कीजिए।
1: हाँ जी, कुछ थोड़ा बहुत जानती हूँ उनके बारे में। उन्होंने एक नारा भी दिया था।
0: अच्छा,
1: इंकलाब जिंदाबाद।
0: वेरी गुड, हमारी साथी काफ़ी है। कहते हैं ना, एक ऐसा पॉइंट बता दिया है उन्होंने जो मतलब शायद बटुकेश्वर दत्त जी को हाईलाइट करता है। ये एक खासियत जो है उनके बारे में मैम ने बताया कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो बटुकेश्वर दत्त जी ने दिया था। बहुत खूब मैम, और क्या जानती हैं आप उनके बारे में?
1: उनका जन्म 18 नवंबर 1910 में ग्राम ओआरी नंदीग्राम में बंगाल में हुआ था। वे क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी। अच्छा। और उन्होंने 8 अप्रैल 1929 में उन्होंने भगत सिंह से दिल्ली में बम और पर्चे भी फेंके थे।
0: अच्छा
1: जी, उनका उद्देश्य जनता को नुकसान पहुंचाना नहीं था, फिर भी अंग्रेजों ने उनके प्रति गलत वे में उनका
0: जो उनका एक्शन था
1: वो ले लिया। अच्छा। और फिर उनको जेल भी डाल दिया गया।
0: हाँ।
1: और उनको कैद भी हो गई, काला पानी की सजा भी हुई थी।
0: ओके अंडमान निकोबार जेल में भी वो रहे। तो काफी कुछ बताया मैम ने हमें बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में। ऐसे ही तो उनका नाम शहीदों की लिस्ट में नहीं आया है। ये जो उनकी कुर्बानियां हैं जो आपने बताया उनके बारे में, ये शायद मुझे नहीं लगता कोई आम इंसान थे, तो वो आम इंसानों में से ही, लेकिन इसके लिए जिगर चाहिए कि आप देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। देश के लिए और कुछ ना किया हो तो प्राणों के बलिदान देना तो बहुत ही बड़ी बात है देश के लिए। उनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे साथियों को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हमें भी उनकी तरह अपने देश की सेवा करनी चाहिए और देश के लिए त्याग भी करना चाहिए। देशभक्ति की मिसाल भी हमें अपने बनानी चाहिए। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जवानी सारी जेल में काट दी, इस तरीके से भी हमें कुछ देश के लिए करना चाहिए।
0: आप हमसे जुड़ी और इतना अच्छा मैसेज हमारे युवा साथियों को दिया, उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो रुमान, अच्छा लगा हमारे युवा साथियों से जान के, कुछ जानते थे और कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जो जितना जानता था उन्होंने उतनी बात हमसे बताई। तो रुमान, इसी तरह कुछ क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों पर बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं और कुछ अपने त्याग से उन पन्नों को अर्थ देते हैं।
2: जी हाँ दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त ऐसे ही क्रांतिकारी थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और अपने साहस से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमिट स्थान बनाया।
0: जी हाँ, तो हमारी सीरीज तो यूं ही जारी रहेगी और कल फिर मुलाकात होगी एक और नए अनसंग हीरो के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे और रुमान परवीन को इजाजत।
2: धन्यवाद।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
4: हम हंसाएंगे, आप

0: मुस्कुराएंगे।
1: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा?
4: चुप।
3: क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा?
4: अरे बाबा चुप हो जाओ।
3: क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा?
4: नहीं कहा, प्लीज अब भौंकना बंद करो।
3: हैं?
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: तो दोस्तों, मजा तो उम्मीद है आपको आ ही रहा होगा, कि क्योंकि देखिए प्रोग्राम में हम इतने अच्छे अच्छे सेगमेंट्स जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो है कहानी के उस पार। और इस हफ्ते हमारी कहानी चल रही है जहां आसमान खत्म नहीं होता। आज हम सुनने वाले हैं इसका एपिसोड 4। तो बिना देरी किए आइए सुनवाते हैं आपको कहानी का एपिसोड 4।

0: कभी कभी इंसान एक शहर नहीं छोड़ता, वो अपने अंदर जमा हो चुकी थकान को पीछे छोड़ आता है। ये बात मियाँ को उस दिन समझ आई जब उसने कांपते हाथों से अपने इस्तीफे पर साइन किया। ना किसी ने उसे रोकने की कोशिश की, ना ये पूछा कि वो क्यों जा रही है। उसी पल उसे समझ आया कि दुनिया में ज्यादातर जगहों पर इंसान से ज्यादा उसकी जगह मायने रखती है। एक चला जाए तो दूसरा आ जाता है, ऑफिस चलते रहते हैं, शहर चलता रहता है और जिंदगी भी किसी का इंतजार नहीं करती। कमरे में लौटकर उसने अपना सामान समेटा। रात को आखिरी बार कमरे की बत्ती बंद करते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा वैसा ही था, लेकिन उसमें रहने वाली लड़की बदल चुकी थी। घर लौटती और ट्रेन उसी रास्ते से गुजर रही थी जिससे कभी वो सपनों से भरा दिल लेकर निकली थी। इस बार उसके बैग में सिर्फ सामान था और दिल में थकान। स्टेशन पर माँ खड़ी थी, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मीरा उनके गले लग गई और दोनों देर तक चुप रही। दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशियों से टूटे हुए लोगों को जोड़ देते हैं। घर में कदम रखते ही उसकी नजर पिता की तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर के सामने बैठ गई और धीमे से बोली, मैं हार कर नहीं आई पापा, मैं बस थक गई थी। जवाब में कोई आवाज नहीं आई, फिर भी उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया हो। अगले कई दिन तक वो बस सोती रही। माँ उसे जगाती नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि शरीर की थकान नींद से उतर जाती है, लेकिन आत्मा की थकान को सफे चाहिए। एक सुबह वो छत पर गई। सूरज की हल्की धूप हथेलियों पर पड़ी तो उसे अपना बचपन याद आ गया, वही छोटी सी लड़की जो धूप पकड़ने की कोशिश करती थी। उसने मुस्कुरा कर फिर से अपनी मुट्ठी बंद की। धूप आज भी पकड़ में नहीं आई, लेकिन इस बार उसे दुख नहीं हुआ। शायद कुछ चीजें पकड़ने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं।
1: दोस्तों, अब इसी के साथ और एक सेगमेंट हमारा वेट कर रहा है। आपसे हमारी बातें तो यूं ही चलती रहेंगी, हमें बात सुननी है, गुफ्तगू सुननी है। गुफ्तगू बस यूं ही सेगमेंट में मान्या राजपूत से यूसुफा की, तो आइए सुनवाते हैं आपको कि क्या बातें की हैं यूसुफा ने मान्या से।
2: गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दा तो सामना नहीं होता। ये शेर है बशीर बद्र का। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अजैदी और आप सुन रहे हैं सेगमेंट गुफ्तगू बस यूं ही। आज मुद्दतों बाद उनसे सामना भी हुआ है। जी हाँ, आप जो आवाजें हमारे सेगमेंट गुफ्तगू बस यूं ही में सुनते हैं, हाँ हाँ, उनकी शक्ल आपको नजर नहीं आती लेकिन आवाज तो सुन लेते हैं ना आप। तो एक ऐसी ही खूबसूरत सी आवाज हमारे साथ है, जान लेते हैं सबसे पहले उनका नाम।
3: मेरा नाम मान्या राजपूत है।
2: तो मान्या, सबसे पहले शुरुआत फिर आपके नाम से ही करते हैं। आखिर क्या है आपके नाम का मीनिंग?
3: मेरे नाम का मतलब है सम्मान के योग्य।
2: तो मान्या, जैसे कि आपका नाम है मान्या राजपूत, तो आपको लगता है, कहते हैं कि एक नाम का इंसान की पर्सनैलिटी पर पूरा पूरा असर होता है,

0: को भी ऐसे लगता है कि हाँ बाकी ये बात सच है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सच है।
0: तो मानिया, फिर आपका नाम का अर्थ है कि सम्मान के योग्य। तो आप अपनी जिंदगी में सम्मान पाने के लिए किस किस रास्ते से गुजर रही हैं, कैसे कैसे गुजर रही हैं, वो जरा हमें आराम आराम से बता दीजिए। लाइक आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, आपने अभी क्या परस्यू किया है, आपकी हॉबी क्या है, धीरे धीरे आराम आराम से बता दीजिए आज सारे राज आप।
1: देखिए, मैंने सबसे पहले बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन करा है कोर यूनिवर्सिटी से, रुड़की। और उसके अलावा मैं अब टीचिंग कर रही हूँ, और टीचिंग में आपको पता ही है सम्मान किस तरह से हमारा होता है।
0: जी, मानिया, तो फिर आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप स्कूल में एंटर होती हैं तो बच्चे एकदम से कूद जाते हैं ना, और टीचर के लिए एकदम से चेयर लाएंगे, और फिर वो उनका एक गाना सा होता है कि गुड मॉर्निंग टीचर। क्या
1: टीचर
0: आपने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया
1: जी,
0: है?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। और जब बच्चे ऐसा बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। और जब हम छोड़ करके जाते हैं क्लास को, तो वो ऐसे भी बोलते हैं, थैंक यू सो मच मैम फॉर टीचिंग अस। तो वो जो गाना है ना, वो बड़ा दिल को छू जाता है।
0: तो आपके दिल को छू गया छोटे बच्चों का तराना। असल में वो ये पता नहीं कहाँ से आता है और ये सब में ही
1: एक
0: होता है।
1: लय सी बन जाती है।
0: जी, लय बन जाती है वो। तो फिर आपका कोई किस्सा ही सुना दीजिए कि आपके और स्टूडेंट के साथ आपका कैसा रिश्ता है, कैसा बॉन्ड है आपका।
1: देखिए, स्टूडेंट्स और टीचर का एक फ्रेंडली बॉन्ड भी होता है और एक रिस्पेक्टफुल बॉन्ड भी होता है, तो मेरा दोनों ही है।
0: तो मान्या, आपने जैसे कि अभी बताया कि आप BCA कर चुकी हैं जो कि कंप्यूटर फील्ड है, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे BCA ही करना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं और मैं सोचूं कि मुझे BCA के बारे में नहीं पता, तो आप मुझे कोई एक रीजन दीजिए कि आपको BCA करना चाहिए, क्यों करना चाहिए BCA?
1: देखिए, BCA कंप्यूटर का आजकल बहुत युग है और जमाना है, और कंप्यूटर हमारी जरूरत का एक साधन बन गया है आजकल की लाइफ में। सो कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। तो आप जो है BCA, इसलिए मैंने, क्योंकि एक ये ट्रेंडिंग में भी था तो मैंने यही चूज करा अपने करियर को लेकर के।
0: और उसके बाद फिर आप टीचिंग में आ गई,
1: मतलब मैं मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और साइड बाय साइड टीचिंग कर रही हूँ।
0: साइड बाय साइड टीचिंग करेंगे। तो फिर आप स्कूल्स में कंप्यूटर पढ़ाती हैं?
1: जी हाँ,
0: कौन सी क्लास को आप कंप्यूटर पढ़ाती हैं?
1: मैं 11th और 12th को पाइथन पढ़ाती हूँ।
0: फिर मानिया, आप बता दीजिए आज कि ये पाइथन क्या चीज है।
1: देखिए, पाइथन एक लैंग्वेज है जो कि ग्लूडोवन रॉसम ने बनाई थी, और इसका कुछ ऐसा, मतलब फेक फनी सा चीज है जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। मॉन्टी पाइथन सर्कस एक नाम का शो आता था, तो जो बनाने वाले थे ग्लूडोवन रॉसम, उनका ये फेवरेट शो था, तो उन्होंने उसके नाम पर ही ये नाम रखा है।
0: फिर इसे सीखने के बाद बच्चे किस चीज में इन्वॉल्व हो सकते? समझिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, या हमारे बहुत सारे लिसनर ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, आप उनको समझा रही हैं एज अ टीचर, तो बता दीजिए सब कुछ फिर।
1: देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि हम कई तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, हार्डवेयर्स भी होते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो जो जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, उसमें हम क्या करते हैं, अपने लिए एक लैंग्वेजेस में कोड बनाते हैं और वो जो है लिखते हैं। सबसे पहले तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं, फिर एप्लीकेशन पे, फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, फिर वेब एप्लीकेशन पे जाते हैं। IoT आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, क्लाउड सर्वर पे हम काम करते हैं। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। और इसके अलावा हम AI ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे भी काम करते हैं, और मेन थिंग्स आर ट्रेंडिंग नाउ डेज, जिसपे ये पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम सारे तरह के सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो पाइथन इसलिए ही भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
0: तो दोस्तों, फिर आपको समझ में आ गया, यानी कि मान्या मैम ने आपको अच्छे से समझा दिया कि पायथन क्या है और क्यों है। अब उनसे हम थोड़ा सा अपने फील्ड का सवाल पूछ लेते हैं कि मान्या, आप रेडियो सुनती हैं?
1: जी हाँ बिल्कुल, सुनती हूँ।
0: कैसा लगता है आपको, आप किस चीज को ज्यादा सुनती हैं, कौन सा प्रोग्राम आप ज्यादा सुनती हैं?
1: आजकल तो यूवाणी के ही प्रोग्राम ज्यादा सुन रही हूँ।
0: थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम सुन रही हैं। तो मान्या, जैसे कि आपने भी काफी बार सुना होगा कि जब हमारे कोई मेहमान आते हैं तो हम उनसे एक एडवाइस लेते हैं अपने लिसनर के लिए कि उनके लिए वो क्या कहना चाहती हैं। तो जो भी कोई एक एडवाइस जो आप अभी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रही हैं या कर चुकी हैं, तो वो क्या हो?
1: आई बिलीव इन गुड टाइम मैनेजमेंट एज अ की टू मेंटेन बैलेंस। आई प्रायोरिटाइज माई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट एंड डेडिकेट फ्री टाइम इन माई हॉबीज। तो हॉबीज करना बहुत जरूरी है, और हॉबीज में आप जितना टाइम हो सके इन्वॉल्व करें, इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहे।

0: डिबेट करती हैं, वो मुझे बहुत पसंद है।
1: यानी कि आप एक तरह से कहना चाहती हैं कि आपको फिट रहने का भी काफी शौक है
0: जी
1: ना?
0: हाँ जी हाँ बिल्कुल।
1: तो मानिए कोई एक फेवरेट सॉन्ग बता दीजिए अपना।
0: लव यू जिंदगी, ये डियर जिंदगी से लिया गया है और मुझे जिंदगी जीने का बहुत शौक है।
1: इस जिंदगी को जीते जीते तो मानिए हम बातें करते रहेंगे, दिन गुजर जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन हमारे पास वक्त की थोड़ी गुंजाइश कम होती है, तो इसलिए अभी हम इस बात को यहीं पर रोक देते हैं और हमारे दोस्तों को बता देते हैं कि मान्या की बातचीत आपको कैसे लगी आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मान्या, आप हमारे स्टूडियो आई और आपने हमें वक्त दिया और हमारे लिसनर से इतनी प्यारी प्यारी बातें शेयर की।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो दोस्तों आगे आप सुनते रहिएगा हमारे कार्यक्रम युववाणी और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते आपसे। नमस्कार।

0: दोस्तों, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने पूछा था आपसे एक सवाल। हमारा आपसे सवाल था, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से शुरू की? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है, भारत ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलाई गई है, जिसका उद्घाटन 17 जुलाई 2026 को हुआ। अब देख लेते हैं हमारे सही जवाब भेजने वाले साथियों के नाम।
1: सही जवाब भेजने वालों के नाम हैं मुकेश कश्यप, गुरमीत सिंह मीता, मोहम्मद रफीक पवार, शाहरून नूर अंसारी, पुरुषोत्तम शर्मा, विठल सुरोशे, सत्येंद्र सुभाष गोदारा, भाई रफत साहब, सुरेश गगनेजा, नदीम बाकी, राजकुमार दूदी, फागुराम यादव, मोहम्मद सईद अब्बासी, सदाशिव थोरात, मोहम्मद असलम सैफी, रतनदीप आर्य, शेख मूसा, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अजीत भावसार, संजय डिंगिया, बीआई धाकड़, निसार सलमानी, अनिल विनोचा, मसरूर हसन, राघव बघेल, धीरज भाई रबारी, दीपेश वर्मा, मोहम्मद यासीन अंजान, नवाबुद्दीन, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और धीरज भाई रबारी। तो इन सभी लिसनर्स ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और अब आइए प्रोग्राम में चलते चलते एक और नॉन फिल्मी चार्टबस्टर का आनंद उठाते हैं।

0: फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है @आकाशवाणी नजीबाबाद, इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही आप हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।
1: और इसी के साथ के जल्द होगी आपसे एक नई मुलाकात। तब तक के लिए अपनी साथी वंशिका सोती को
0: और रुमान परवीन को
1: दीजिएगा कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। श्री बादल की हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरोमणि हमले की जांच के आदेश दिए हैं। ये पिछले 2 वर्षों में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अल कायदा ए कायदा ए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11

0: लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को आपके भैया प्रमोद सिंह की राम राम। भैया कैसे हाल चाल है? सब ठीक ठाक, राजी खुशी? बहुत बढ़िया बात है भैया। देखो, सबका ठीक होना बहुत जरूरी है। और भैया देखो, तुम्हें तो पता ही है आजकल मौसम कैसा हो रहा भाई। गर्मी भी बतेरी हो रही, बारिश भी हो रही। और भाई इस टाइम पे हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो अपनी फसलों की देखभाल में लगे हुए हैं। और भैया फसलों की देखभाल करना, अपने पशुओं की देखभाल करना, अपने स्वास्थ्य को देखना, यो काम बहुत ज़रूरी हैं भाई। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो देखो, इस मौसम में अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है ना, वो भैया बहुत अच्छे तरीके से निभाने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई इस टाइम पे बुखार, या हम तो नू कहेंगे कि भैया जो संक्रामक रोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही फैल रहे हैं। इसलिए भाई इन सब बीमारियों से बचने के प्रयास करते रहेंगे तो भैया हम ठीक ठाक रहेंगे। हम ठीक रहेंगे, हमारा परिवार ठीक रहेगा, खेतीबाड़ी ठीक रहेगी, तो भैया यूं समझो कि सब ठीक ठाक रहेगा। अब भैया देखो, हम बात कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की, तो भाई वो तो ऐसे ही रह सके जब हम साफ सफाई का ध्यान रखें। और भाई जो गंदगी घरों के आसपास में इकट्ठी हो जाए इस बरसात के मौसम में, उसे बिल्कुल भी ना इकट्ठी होने दें। क्योंकि भाई इस मौसम में जो मक्खी मच्छर हैं वो गंदे पानी पे ही भाई ज़्यादा पनपते हैं, और उनसे ही भाई ये संक्रामक रोग जो हैं फैलने का खतरा बना रहे हैं। तो ध्यान रखें, साफ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, और हमें जो है भैया पानी खूब पीना चाहिए, ताज़ा पानी पीना चाहिए। साथ ही साथ भाई बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कटे फटे फल अगर बाजार में आ रहे हैं वो हम लेकर खा रहे हैं तो वो भी नहीं खाने चाहिए। भाई ध्यान रखने की बात तो यही है कि हम इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो भैया बीमारियों से हम बचे रहेंगे, और हम ठीक रहेंगे तुम्हारा परिवार भी ठीक रहेगा। भाई देखो, बातचीत तो हम आपसे कर ही रहे हैं, आगे भी बहुत सारी बातचीत आज के कार्यक्रम में करेंगे। तुम्हें तो पता ही है भाई आज भला दिन कौन सा? ठीक समझ रहे हो, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो भाई, गुरुवार है, और वो भी अगस्त महीने का दूसरा गुरुवार। और भैया देखो, तुम्हें यो भी पता है कि हर महीने के दूसरे गुरुवार को हम आपको सुनवावे हैं अपना विशेष कार्यक्रम पगडंडी। तो देखो आज हम ये पगडंडी कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि भैया हरियाली तीज पर आधारित कार्यक्रम हमारा आज का होगा। आपसे बातचीत भी हम करते रहेंगे, आपका मनोरंजन भी हम करावेंगे। और भाई देखो, पहले तो ये कुछ संदेश हैं, पहले इन्हें सुन ले हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान

0: बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: भाई संदेश तो हमने सुन लिए, और भाई हम बात यूं कर रहे थे कि इस मौसम में बरसात भी हो रही, गर्मी भी हो रही, और ऐसे मौसम में भैया देखो हम अपने फसलों की देखभाल भी कर ही रहे हैं, पर कई बार क्या हो कर रहा है भैया देखो हम अपनी फसलों की ठीक तरीके से देखभाल भी कर रहे हैं, और उस पर भी भैया बहुत सारी बार क्या हो कर रहा है कि हमें जो है भैया अपनी फसलों से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाया करे, क्योंकि कई बार ज़्यादा बारिश हो गई या भाई बारिश ही ना हुई, कहीं जगह कम होती है तो इसका प्रभाव जो हमारी फसलों पर पड़ा है और भैया उससे फिर बहुत सारा नुकसान हमें उठाना पड़े करे, तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए भाई हमारी जो सरकार है वो बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए चला हुआ है, और उनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यो योजना बहुत अच्छी है भाई। देखो इस योजना से किसान भाई अपनी फसल के नुकसान की भरपाई कर सके हैं, बस थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है इसमें भैया। देखो ये जो योजना है ना, इसके लिए अगर हम जागरूक हैं, अपनी फसल का हम बीमा करा ले हैं, तो फिर हमें अपनी फसलों की देखभाल तो हम कर ही रहे हैं, और भैया अगर कोई दैवीय आपदा आ जाए या किसी वजह से फसल को कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई हम इसके माध्यम से कर सके हैं, बस बहुत थोड़े से प्रीमियम को देख के। अब देखो इसमें भैया जहाँ तक प्रीमियम की बात है तो इसमें खरीफ में जो फसलें हम बोए हैं उसमें भी जो खाद्यान्न फसलें होए करे हैं, जो तिलहनी फसलें होए करे हैं, तो उसमें भैया हम अधिकतम 2% प्रीमियम दे हुए हैं। रबी फसलों में भैया हम 1.5% प्रीमियम, और जो हमारी वाणिज्यिक फसलें हैं या बागवानी फसलें हैं उनके लिए भैया 5% हम इसका प्रीमियम देकर अधिकतम हम भैया लाभ कमा सके हैं। और देखो इस योजना का लाभ उठाने के लिए हम PMFBY पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सके हैं, तो देखो ये बहुत अच्छी योजना है, बस भैया हमें जागरूक रहना चाहिए। एक कम राशि देकर अगर हमें हमारी फसल की भरपाई हो रही है तो इससे बढ़िया तो कोई बात है नहीं, इसलिए हमारे सब किसान भाई इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाएं। और भैया देखो लाभ उठाने की बात चली रही है, आज हम आपसे ये भी बता चुके कि भैया आज भला दिन कौन सा, आज दिन है गुरुवार, अगस्त के महीने का दूसरा गुरुवार है, आज हमें आपको कार्यक्रम पगडंडी सुनवाना है। और भैया देखो आपको तो पता ही है कि हरियाली तीज का त्यौहार आने वाला है, इस हरियाली तीज पर जो हमारी बहनें हैं इसका आनंद उठाएंगी, और भैया यो हरियाली तीज पे ही आज का जो पगडंडी कार्यक्रम है हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आओ अब सुनते हैं यो हमारा विशेष कार्यक्रम पगडंडी। दोस्तों नमस्कार, पगडंडी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, और आज के इस विशेष कार्यक्रम पगडंडी के साथ मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। पगडंडी यानी वो छोटा सा रास्ता जो हमें मंजिल तक पहुंचने की दिशा देता है। जीवन में भी कई छोटी छोटी अच्छी आदतें और परंपराएं हमें विकास की बड़ी राह पर ले जाती हैं। सावन का महीना प्रकृति के श्रृंगार का महीना है, खेतों में हरियाली, पेड़ों पर झूले, लोकगीतों की मधुर धुन और मन में उमंग। सावन की फुहारें, हरी भरी धरती, झूलों की पींगें, हाथों में सजी मेहंदी और लोकगीतों की मधुर गूंज, ये सभी मिलकर जिस पर्व को जीवंत बना देते हैं वो है हरियाली तीज। ये पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि प्रकृति, जल, वृक्ष और खेती के प्रति हमारी संवेदनशीलता का भी प्रतीक है, जिसमें प्रकृति, प्रेम, आस्था और उल्लास एक साथ दिखाई देते हैं। तो आइए चलते हैं आज की पगडंडी पर।

0: सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज क्या है और क्यों मनाया जाता है। इस संबंध में बता रही हैं निर्मला गोकुल सिंह यादव, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की प्रवक्ता फूलमाला जी।
1: हरियाली तीज समाज में खुशहाली बिखेरने, नव शक्ति, नारी शक्ति के उल्लास को सम्मान देने, नई पीढ़ी को अपनी जड़ों व लोक संस्कृति से जोड़े रखने का और प्रकृति तथा मानव के बीच एक तादात्म्य का रिश्ता स्थापित करने वाला बड़ा ही प्यारा उत्सव है। यह उत्सव श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस उत्सव का जितना प्राकृतिक एवं सामाजिक महत्व है उतना ही पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती का मिलन हुआ था, अतः यह उत्सव सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं तथा अखंड सौभाग्य के लिए हरे हरे, लाल तथा सुंदर सुंदर नवीन वस्त्र धारण कर, हाथों में प्यारी सी मेहंदी सजाकर, हरी हरी चूड़िया पहनकर, सोलह श्रृंगार करके पूजन करती हैं, झूला झूलती हैं तथा कजरी, मल्हार और अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर झूला गीत भी गाती हैं। लहरी, साड़ी, हरी चूड़िया, मांग में सजा सिंदूर तथा हाथों में रची लाल लाल मेहंदी भारतीय सौंदर्य शास्त्र और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर अनूठा बनाते हैं। इस उत्सव के बहाने हमारी सदियों पुरानी लोक परंपराएं जीवित रहती हैं। तीज पर गाए जाने वाले गीत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। इस उत्सव पर बागों में झूले डाले जाते हैं। नव विवाहित जोड़े, स्त्रियां, बच्चे सभी बड़े प्रेम से झूला झूलते हैं। इस अवसर पर वनस्पतियां ही नहीं अपितु जीव जंतु भी आनंदित हो उठते हैं। आसमान में घिरी काली काली रिमझिम पड़ती घटाएं, सावन की रिमझिम रिमझिम फुहारे, बागों में कू कू करते मोरों का नाचना, कोयल की कू कू की आवाज, पपीहे की प्यू प्यू की ध्वनि तथा रंग बिरंगे फूलों पर तितलियों का मंडराना इस उत्सव को और अधिक आनंददायक बना देते हैं। ऐसा लगता है प्रकृति भी मानो झूम रही हो।
0: सावन आते ही वातावरण में हरियाली की चादर बिछ जाती है, पेड़ों की डालियों पर झूले पड़ते हैं और महिलाएं सखियों के साथ झूला झूलते हुए तीज के लोकगीत गाती हैं।

0: हरे रंग के परिधान, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी और 16 श्रृंगार इस पर्व की शोभा को और बढ़ा देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की स्मृति से जुड़ी है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके इसी समर्पण और प्रेम की स्मृति में तीज का पर्व मनाया जाता है, इसलिए विवाहित महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, जबकि अविवाहित युवतियां भी मनोवांछित जीवन साथी की कामना से इस त्योहार में श्रद्धा पूर्वक शामिल होती हैं। इस त्योहार का क्या महत्व है, इस संबंध में बता रही हैं लोक गायिका रजनी टोंक।
1: देखिए, जैसे ही हमारा सावन माह शुरू होता है तो कुछ ना कुछ त्योहार हमारे शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सौभाग्य से ये जिनकी शादी हो जाती है उनको सिंदारा भेजते हैं। नई नई शादियां होती हैं, लड़कियां महिलाएं श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करते हैं। तो कहा जाता है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार पार्वती माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, और इसी कड़ी तपस्या और 108वें जन्म के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। कहा जाता है कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तभी से ही ये पर्व सुहाग पर्व मनाया जाने लगा। हरियाली तीज व्रत के प्रभाव से अविवाहित कन्याओं को शिव समान पति प्राप्त होता है, वही सुहागिन महिलाओं को सुखद दाम्पत्य का आशीर्वाद मिलता है। तभी से ये हमारी परंपरा चली आ रही है और हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है।
0: हरियाली तीज कैसे मनाते हैं, इस संबंध में फूलमाला बताती हैं।
2: हरियाली तीज पर सभी महिलाएं एक जगह इकट्ठा होकर झूला झूलती हैं, नाचती गाती हैं, जो ऊंच नीच या भेदभाव को भुलाकर आपसी भाईचारे को भी बढ़ाता है। पुराने समय में जो स्त्रियां होती थी वो घर से बाहर बहुत कम निकलती थी, तो यह उत्सव उनके लिए विशेष महत्व रखता था। आज भी जो स्त्रियां हैं घर से बाहर जाती हैं, अत्यधिक व्यस्त रहती हैं, व्यस्तता के कारण जो एक दूसरे से बहुत समय तक नहीं मिल पाती, उन महिलाओं के लिए यह उत्सव सखियों से मिलने, अपने सुख दुख को साझा करने का आनंददायक अवसर है।
0: हरियाली तीज का एक महत्वपूर्ण पक्ष हमारी लोक संस्कृति भी है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। कहीं तीज माता की शोभा यात्रा निकलती है तो कहीं पारंपरिक गीत संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते हैं, और बेटियों तथा बहनों को स्नेह पूर्वक उपहार दिए जाते हैं। हरियाली तीज के पावन पर्व पर सभी बहनें अपने भाई के आने का इंतजार करती हैं कि कब हमारा भाई हमारे लिए घेवर और कोथली लेकर आएगा। इस संबंध में बता रही हैं श्रीमती फूलमाला।
2: मायके से कपड़े, घेवर और श्रृंगार का सामान सिंधारे के रूप में आता है, जिसका महिलाएं बड़े ही चाव से और बड़े ही बेसब्री से इंतजार करती रहती हैं। कब भैया आएगा, कब हमें लेके जाएगा, कब हमारे लिए सुंदर सुंदर श्रृंगार की वस्तुएं लेकर आएगा। बड़ा ही मनोहर होता है वह इंतजार भी। अतः यह उत्सव महिलाओं को उसके मायके से जोड़े रखने का भी उत्सव है। भाई के आने का इंतजार इस अवसर को और अधिक भावुक बना दे।

0: पर्व हमें प्रकृति के प्रति अपने जुड़ाव की भी याद दिलाता है। हरे रंग की प्रधानता मानो हमें संदेश देती है कि पेड़ पौधे, वर्षा और हरियाली हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सावन की वर्षा केवल खेतों को ही नहीं सींचती, बल्कि लोकमन में भी नई उमंग भर देती है। हरियाली तीज हरियाली समृद्धि और खुशी का प्रतीक है, ये बता रही हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय मदनपुर विकासखंड किरतपुर जनपद बिजनौर की शिक्षिका श्रीमती विनीता सिंह।
1: इस दिन महिलाएं हरे कपड़े और हरी चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं। इसे हरियाली तीज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सावन में आता है और चारों तरफ हरियाली रहती है। और हरियाली तीज में जैसे कहते हैं कि हरी ही चूड़ियां ही क्यों पहनते हैं, क्योंकि हरी चूड़ियों के पीछे यह हरा रंग वो हरियाली समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। सावन में चारों तरफ प्रकृति हरा रंग लिए रहती है, इसी हरे रंग को सावन से जोड़ा गया। मान्यता है कि हरी चूड़ियां पहनने से सुहाग और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और ये माता पार्वती के प्रति हमारी श्रद्धा और सौभाग्य का प्रतीक भी है।
0: इस त्योहार पर मेहंदी भी लगाई जाती है और मेहंदी का क्या महत्व है इस संबंध में विनीता सिंह बताती हैं।
1: इस दिन जो हम मेहंदी लगाते हैं, अब मेहंदी के पीछे भी परंपरा और धार्मिक संस्कृतियां हैं। मेहंदी जो है वो सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि मेहंदी का जो गहरा रंग पति पत्नी के प्रेम और रिश्ते को मजबूती का संकेत है। सावन और तीज में मेहंदी लगाना खुशी और उत्सव और सुंदरता का प्रतीक भी माना जाता है। देखो, इसमें हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़कियां मायके आती हैं, मायके आकर वो जब पूरी चूड़ियां पहनती हैं, अपना सोलह सिंगार करती हैं, तो माता पिता को भी उनकी सुख समृद्धि और अच्छे परिवार में जाने का एक संकेत मिलता है और वो भी उसे देख के बहुत खुश होते हैं। और जो लड़कियां जो बिटिया आ नहीं पाती हैं, उनके लिए माँ बाप उनके लिए वस्त्र भेजते हैं, मिठाइयां भेजते हैं, चूड़ियां भेजते हैं, सोलह सिंगार का सामान भेजते हैं।
0: दोस्तों, बदलते समय के साथ त्योहार मनाने के तौर तरीके भले ही बदल रहे हों, लेकिन हरियाली तीज का मूल भाव आज भी वही है, प्रेम, सौहार्द, आस्था और प्रकृति के साथ आत्मीय संबंध। हरियाली तीज भारतीय संस्कृति का ऐसा पर्व है जो वर्षा ऋतु के स्वागत और हरियाली के सम्मान का संदेश देता है। जब अच्छी वर्षा होती है तो किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठती है। यही मौसम खरीफ फसलों की अच्छी शुरुआत का आधार भी बनता है। हरियाली केवल पेड़ों से ही नहीं आती, बल्कि सोच से भी आती है। खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना, वर्षा जल का संरक्षण करना, जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना और मिट्टी की सेहत का ध्यान रखना, ये सभी छोटे कदम भविष्य की समृद्ध खेती की मजबूत पगडंडी हैं।

किसान भाइयों, हरियाली तीज हमें ये संदेश देती है कि प्रकृति का सम्मान ही समृद्धि का आधार है। यही छोटी छोटी पगडंडियां हमें खुशहाल गांव और समृद्ध किसान की मंजिल तक पहुंचाएंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम पगडंडी, जो कि हरियाली तीज पर आधारित था। तो आप सभी इस हरियाली तीज के पावन पर्व को मनाइए, प्रकृति के साथ हरे रंगों में रंग जाइए और त्योहार का आनंद उठाइए। आप सभी को हमारी ओर से हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इसी के साथ मुझे अर्थात प्रमोद सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

तो भाइयों, आपने सुना हमारा मासिक कार्यक्रम पगडंडी। और भैया, इस कार्यक्रम में आपने हरियाली तीज का आनंद उठाया, हरियाली तीज के बारे में आपको जानकारी मिली। और भाई देखो, हरियाली तीज की जो हम अभी बात कर रहे थे, इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देवे है। अरे, हमारे खेतों में हरियाली, खेतों के आसपास देखेंगे, घरों के आसपास देखेंगे, तो भैया हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आवे है। और इससे जो हमारी प्रकृति का जो एक दृश्य है ना, वो बहुत बढ़िया हो जाए। और भाई, इस प्राकृतिक दृश्य को और अधिक मनोरम बना सकते हैं हम, अगर हम इसमें जरा सा अपना और योगदान देते हैं। अब भैया देखो, योगदान देने की जब बात आवे है, तो भाई हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अगर हम अपने घरों के आसपास खाली जगह में पेड़ लगा लें, अपने खेतों के आसपास मेड़ों पे पेड़ लगा लेंगे, तो भाई इससे देखो हमें बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा तो यही होगा कि हमारा जो पर्यावरण है वो एकदम साफ सुथरा रहेगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी, और भैया हमारे जो खेत हैं वो भी उपजाऊ बने रहेंगे। अब भाई देखो, बात हमने बहुत सारी आपसे यूं कर ली कि भैया पेड़ लगा के बड़े सारे फायदे होंगे। अब देखो, जहां तक भैया इससे फायदों की बात है, जो हम अभी आपको बता रहे हैं कि इससे हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। दूसरी बात यह है कि भाई अगर हम अपने खेतों में ये पेड़ लगाएंगे, तो हमें भैया पशुओं के लिए चारा भी मिलेगा, फल भी मिलेंगे हमें खाने के लिए, ईंधन भी मिलेगा, औषधीय जो हमारे पौधे होते हैं उनसे हमें दवाइयाँ मिलेंगी। तो देखो, इनसे बड़े सारे फायदे हैं। और भाई, इस काम को हमें ज़रूर करना चाहिए, जहाँ तक मिट्टी

उर्वरता बढ़ाने वाली बात है, तो अगर हम इसको अपने खेतों के चारों तरफ लगाएंगे, खेतों में लगाएंगे, तो जो इनकी पत्तियां गिरेंगी उससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जैविक पदार्थ इससे हमारे जो खेत हैं उसमें बढ़ेंगे। तो भैया इससे बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए हमें ये पेड़ जरूर लगाने चाहिए, कृषि वानिकी का लाभ जरूर उठाना चाहिए। हरियाली हरियाली की बात हो रही है, ये सारे काम हमें जरूर करने चाहिए। अब भाई देखो, बात तो बहुत सारी है करने को, और भी बहुत सारी बातचीत हम आपसे करेंगे, मौसम की जानकारी भी हम आपको देंगे, पर भैया अब लगे हाथ अगर हम एक रागनी सुन लें तो कैसा रहेगा भला? बहुत अच्छा रहेगा ना। तो आओ भाई अब सुनते हैं यो रागनी।

सावित्री सुन बात मेरी। भैया आपने यो सत्यवान सावित्री के किस्से की रागनी सुनी राजकुमार और साथी की आवाज में। हम उम्मीद है भैया रागनी आपको अच्छी लगी होगी, आपका मनोरंजन होया होगा। और अब भैया देखो बारी आ गई है मौसम की जानकारी की। तो भाई देखो मौसम की जानकारी हमें मिली है भारत मौसम विज्ञान विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। और भाई इनके अनुसार अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और भैया बीच बीच में हल्की बारिश भी हो सके है। और ऐसे मौसम को देखते हुए भैया देखो इनके द्वारा कुछ किसान भाइयों को सलाह भी दी गई है। ये कह रहे हैं कि उन क्षेत्रों में जहां लगातार जल भराव की स्थिति बनी रहे है वहां उचित जल निकासी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। दलहनी और तिलहनी फसलों में जल भराव ना होने दें, जल निकास का उचित प्रबंधन करें। और भैया इन्होंने लिखा है कि जिन किसान भाइयों ने अरहर और लाल चना या जो अरहर है वो अगर इन्होंने लगा रखी है तो उसकी फसल में भी पानी की निकासी की व्यवस्था करके रखें। साथ ही भैया चावल मतलब धान की फसल में बताया है कि धान में जीवाणु झुलसा और जीवाणुधारी झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 90% और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% को 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP के साथ मिलाकर 500 से 750 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर में घोल के इसका छिड़काव करें। और भैया ये छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। और लौकी की फसल के लिए बताया है लौकी वर्गीय सब्जियों में मचान बनाकर सहारा दें और सभी सब्जियों में उचित

जल निकासी की व्यवस्था किसान भाई करते रहें। तो भैया यो तो थी मौसम की जानकारी, और भाई आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, क्या आप इसमें सुनना चाह रहे हैं, यो भैया आप हमें पत्र लिख के जरूर बताएंगे ऐसी हमें उम्मीद है। पत्र लिखने के लिए पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2467। इसके अलावा भैया आप हमें 94-570-78-288 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी आकाशवाणी नजीबाबाद का जो हमारा पेज है भैया उसको आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रमों का आनंद आप ले सकते हैं। तो भाई देखो, बात करते कार्यक्रम का समय लगभग भैया समाप्ति की तरफ है, तो आज का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करते हैं। अपने भैया प्रमोद सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आइए अब आपको हमारे केंद्र के आज के शेष और कल के प्रमुख प्रसारणों के विषय में बता दें। आज शाम 6:50 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। नुसरत अली और साथियों की आवाज में कव्वाली सुनवाई जाएगी सुगम संगीत में 7:32 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा सुनवाई जाएगी आज रात्रि 8:00। 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे कार्यक्रम गीत संध्या में। एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे धरती कहे पुकार के फिल्म से कुछ गीत। समय रहेगा रात्रि 8:30।

कल शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। कल रात्रि 8:15 पर हरियाली तीज पर्व के अवसर पर कवि गोष्ठी का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें प्रतिभाग करेंगी श्रीमती सुनीता सोलंकी, पूजा गोयल।

कल प्रातः आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर आधारित होगा। विषय रहेगा भूले बिसरे नायक। कल शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी। संध्या 5:15 पर युववाणी का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें सेगमेंट होंगे ये शाम गजलों के नाम और कहानी के उस पार। साथ ही यंग अचीवर्स के अंतर्गत स्टूडियो में आमंत्रित प्रतिभाशाली युवा विवेक से सलोनी की बातचीत सुनवाई जाएगी। इसी कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे 80वें स्वतंत्रता दिवस के रन अप पर विशेष कार्यक्रम मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। संध्या 6:05 पर कृषि जगत में कल क्रम रहेगा किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं के पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्रिका।

आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे अमन कुमार के आलेख पर आधारित रूपक तिरंगा नहीं झुकने देंगे। प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनेंगे आज रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 2036 तक देश में घरेलू सीबीजी उत्पादन को मौजूदा स्तर से करीब 10 गुना बढ़ाना। योजना के तहत सीएनजी और पाइप्ड गैस में सीबीजी की अनिवार्य ब्लेंडिंग भी की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2027 में 3%, 2028 में 4% और 2029 से 5% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए गोबर और कृषि अवशेष से अतिरिक्त आमदनी के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही कचरे का बेहतर प्रबंधन, प्रदूषण में कमी और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिलेगी।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?

0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: ज्योति बहिनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
1: देखो हम पंच बाग वाग तो लगौबे करी थे।
3: हाँ।
1: मूल कऊ दाय का हो जाते कि वही के समय समय पर का कुछ करे है वही का समझ ना पाए और वही से अपन बाग खराब हो जाते है।
3: बिल्कुल भैया, देखो खेती के साथ अगर फल फूल हुआ करत है तो देखो कितना अच्छा लागत है।
1: बिल्कुल बहनी, यही बदे आज की बात माँ विषय है अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन, और यही पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कुंदन किशोर भैया।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, अमरूद के बागों में इस समय सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंदन किशोर साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन की बात करें तो अमरूद की बागवानी जहां शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या गुंजाइश है?
5: नमस्कार सभी किसान भाई और बहनों को। जो भी किसान भाई हमारे अमरूद की खेती करना चाहते हैं, ये ध्यान रखें कि भारतवर्ष में अमरूद एक बहुत महत्वपूर्ण फल के तौर पर सामने आ रहा है और हमारे देश का ये चौथा सबसे महत्वपूर्ण फल है। इसकी उत्पादकता तो वैसे 15 टन प्रति हेक्टेयर है हमारे यहाँ, लेकिन बड़ी गुंजाइश है कि अगर हम इसकी खेती अच्छे से करें इसकी उत्पादकता काफी बढ़ सकती है और 25 टन तो हम आराम से उत्पादन कर सकते हैं। जो नए पौधे लगाने जा रहे हैं इसमें जो है अधिक घनत्व के पौधों को लगाने की जरूरत है, जिसमें कि हम कम से कम 800 से 1000 पौधे एक हेक्टेयर में लें, जैसे 3 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर हम अमरूद के पौधे को लगाएं। दूसरा, हमारा संस्थान एक तकनीक जो है ट्रेनिंग सिस्टम जिसको कहते हैं अलग, उसको कहते हैं एस्पेलियर ट्रेनिंग सिस्टम,
4: यानी छत्रक प्रबंधन।
5: छत्रक प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है और उस छत्रक प्रबंधन में हम 1500 से 2000 पौधे को उसमें लगा सकते हैं, और अधिक पौधे होने के कारण उसके अच्छे से हम प्रूनिंग की एक जो है तकनीक बताते हैं किसानों को, ताकि उसका जो उत्पादन है लगभग 50% आसानी से बढ़ने की संभावनाएं होती।
4: डॉक्टर साहब, चूंकि रोपण का समय है तो जहां योजना है तो कौन कौन सी प्रजातियां चुने जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से बाजार के हिसाब से अच्छा रहेगा?
5: देखें, हमारे संस्थान ने श्वेता, ललित, लालिमा, धवल और एक नई वैरायटी भूषण, ये 5 वैरायटी हमारे अमरूद के तैयार किए गए हैं। ये सभी वैरायटी बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे VNR की भी वैरायटी उत्पादन करते हैं, उसके साइज बड़े होने के कारण उसका बाजार में अधिक मूल्य है, आकर्षण है और मूल्य जो है वो अधिक मिलता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे देश की प्रजातियां हैं उसमें भी उतना ही पोटेंशियल है
4: और स्वाद अलग है।
5: स्वाद अलग है। हमारे जो अपने वैरायटी हैं उस पर भी तवज्जो दें, ताकि हमारा भी जो वैरायटी है वो आम जो कंज्यूमर हैं वहां तक पहुंच पाए और हमारा जो उद्यानिकी है वो आगे बढ़ता रहे।
4: डॉक्टर साहब, जहां अमरूद की पुरानी बागवानी है व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, वहां खड़ी फसल में इस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण काम है?
5: अब देखिए, आप देखेंगे तो अमरूद की मुख्य फसल जो है एक बरसात के सीजन में आ गई और दूसरे जो है वो जाड़े के सीजन में आते हैं।
4: हाँ।
5: ऐसा देखा गया है जो बरसात के अमरूद होते हैं वो थोड़े फीके होते हैं
4: और बाजार भाव भी कम,
5: बाजार भाव भी कम है, और उसमें जो है एक होता है फल मक्खी, उसका ज्यादा जो है प्रकोप होता है। और बरसात में क्या है कि आप बहुत दिनों तक अमरूद को नहीं रख सकते, अगर 2 दिन नहीं बिका अमरूद तो किसानों को घाटा हो जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम जाड़े के फसल को लें जो हम लोग प्रेरित करते हैं तो उसमें ये सभी चीजें नहीं होती है
4: जी,
5: तो इसका हम रेगुलेशन करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं क्रॉप का रेगुलेशन, और उसको हम करते हैं प्रूनिंग के द्वारा। कि अगर आपने प्रूनिंग मार्च अप्रैल में किया तो आपको फल मिलेगा बरसात में
4: जी,
5: और अगर आपने प्रूनिंग को डिले करके जून कर दिया, जून में कटिंग किया तो फल मिलेगा जाड़े में
4: जी।

0: किसानों को ये कहता हूँ कि मार्च के जो है उसको फल को कम करें और प्रूनिंग करें आप
1: जून
0: में, ताकि आपको
1: जाड़े की फसल
0: आपको अच्छे से मिल पाए।
1: डॉक्टर साहब, आपने पोषक तत्व प्रबंधन की बात की, तो अमरूद के जो फलदार वृक्ष हैं उनकी भूख मिटे, इसके लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कब, कितना और कैसे करना है?
0: हम एक पौधे में कितने फल हो ये निर्धारित करना बहुत जरूरी है। किसान भाई क्या करते हैं कभी कभी कि बहुत ज्यादा फल छोड़ते हैं तो फल का साइज घट जाता है। फल कम छोड़ेंगे तो साइज बढ़ जाएगा, और जितने फल होंगे उसके अनुसार हमको उसको लवण देना है। एक साधारण भाषा में कहते हैं कि हम लोग लगभग 300 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और लगभग 400 ग्राम पोटास प्रति पौधा हम लोग बताते हैं
1: हर साल।
0: और ये हमको कम से कम तीन स्टेज में देना चाहिए
1: जी।
0: एक महत्वपूर्ण स्टेज है जब हम प्रूनिंग करके नए पत्ते निकलते हैं, उस समय देना जरूरी है। दूसरा, जब फल बढ़ रहे हो तब देना है, जैसे अगस्त सितंबर में हमने एक बार दे दिया। और फिर हम फल जब तोड़ लेते हैं तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट बाहर चला जाता है, तब एक न्यूट्रिएंट की जरूरत। इस तरह से अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उसका प्रबंधन करेंगे तो हमारा जो अमरूद की खेती है वो बेहतर होगा।
1: डॉक्टर साहब, कई बार बेसल डोज में बागवान भाई अगर नहीं दे पाए हैं पोषक तत्व तो पानी छिड़काव भी कर सकते हैं?
0: आजकल बड़ा अच्छा तकनीक आया है कि हमारे पास पानी में घुलने वाले खाद उपलब्ध है,
1: जल विलेय।
0: उसमें जैसे आप कहेंगे 18-18-18, मतलब नाइट्रोजन 18% है, फॉस्फोरस 18% है, पोटास भी 18% है, कहीं कहीं ये 20-20-20 में भी उपलब्ध है। इसका छिड़काव हम कर सकते हैं। इसका छिड़काव 3 ग्राम से लेके 4 ग्राम प्रति लीटर हम इसमें घोल दें और पौधे में स्प्रे करें। फिर इसके साथ हमको बोरोन की जरूरत पड़ती है
1: जी।
0: बोरोन का छिड़काव हमको करना बहुत जरूरी है,
1: क्योंकि पोषक तत्व
0: का वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और हमारे जो मिट्टी है इसमें बोरोन कम है,
1: काफी कमी दिखती है।
0: तो इसलिए उसका छिड़काव साथ में ही हम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर हमारे संस्थान में ने भी तैयार किया है, और वो पोषक तत्व हम उसमें 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। उसको हम लोग फसल प्रभात कहते हैं
1: जी।
0: वो उपलब्ध है किसानों के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर। अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो कोई भी सूक्ष्म तत्व का मिक्सर बाजार में उपलब्ध होते हैं, अच्छे ब्रांड का लें और वो आप छिड़काव करें तो वो भी पोषक तत्व आप जो मैनेज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा नंबर है 9337962793 या 9337962793। इससे संपर्क कर सकते हैं। जो भी जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हैं अमरूद से संबंधित, प्रश्नों का उत्तर हम जरूर देंगे। तो पौधे का फोटो इस व्हाट्सएप पर भेजें, निश्चित रूप से आपको सही जानकारी प्राप्त होगी।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: मैं यही कहूंगा कि ये एक तो विटामिन सी पूर्ण फल है, दूसरी इसमें आम से अगर कंपेयर करेंगे इसमें बहुत कम कीड़े लगते हैं, और इसको बहुत ज्यादा लवण की भी जरूरत नहीं है,
1: यानी पोषक तत्व की
0: जरूरत नहीं है। एक सामान्य हमारे किसान भाई इसकी खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा तकनीक की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पेस्ट मैनेजमेंट कीट प्रबंधन की जरूरत नहीं है। तो हम एक अच्छा सेफ फ्रूट कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं और बाजार में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर हम जाड़े के फल अच्छे गुणवत्ता के साथ लें, तो किसान भाइयों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है।
1: डॉक्टर कुंदन किशोर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन इस समय क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ज्योति बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो बादल इस समय गहराए रहा है और जो सावन का छटा है वो हर जगह देखे मिल रही है।
3: तो तुम्हार मन जो है कुछ मनोरंजन करे है हमका लागत है।
2: बिल्कुल बहनी, ऐसा में तो कैसे मनोरंजन न कीन जाए।
3: तो चलो भैया एक लोकगीत लेके आए हैं।
2: हाँ,
3: नकटा।
2: हाँ।
3: जो वंदना मिश्रा जी की आवाज में है। हे सैया हमका
2: बिल्कुल
3: सुन लीन जाए।

0: भाई वाह, अब तो बजरिया घूमिन लियो, अब तो ठीक है, अब चलो कार्यक्रम में। देखो हम पंच अपने खेती पाती में काम तो करबे करी थे, मूल कऊदा ऐसन होत है कि हम जितना सोचित है उतना कह ना पाई थे, और कऊ किसान ऐसे हैं जे वो से बढ़ के काम कर लिए थे, और यह सबका हम जानित है आज के किसान में।
1: सही कहे भैया। तो देखो आज जो है विषय जो हम लेके आए हैं केला और अमरूद उत्पादन है ना, जी के वार्ताकार हैं हरीश कुमार वर्मा भैया, तो यह का सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे बागवान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बाराबंकी जनपद के फतेहपुर ब्लॉक के रामपुरवा गांव के केला अमरूद उत्पादन से जुड़े हरीश कुमार वर्मा भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: किसान भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। इस समय मेरे पास केला है और ताइवान पिंक अमरूद है।
2: रकबा कितना कितना है?
3: मेरे पास 5 एकड़ केला है, 4 एकड़ ताइवान पिंक अमरूद है।
2: तो अमरूद से शुरुआत करें।

0: कि कहां से मन में जगा कि आप तो केला उत्पादन से हमेशा से जुड़े रहे,
1: जी
0: ताइवान पिंक अमरूद की तरफ रुझान कैसे हुई?
1: इसलिए हुआ क्योंकि केला में लगातार कुछ दिन से करते हुए मिट्टी में कुछ ऐसे फंगस डेवलप हो गया जिनसे केले के पौधों को नुकसान हो रहा था, फसल को नुकसान हो रहा था, तो केला के विकल्प में मुझे अन्य कोई फसल चाहिए थी। तमाम इधर उधर विचार करने के बाद चूंकि धान गेहूं में हमको उतना उत्पादन या प्रॉफिट नहीं मिलता जितना मुझे केला में मिल रहा था, तो उसके विकल्प स्वरूप मैंने देखा कि ताइवान पिंक की आज बाजार में मांग बहुत अच्छी है, खाने में बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी डिमांड है, रेट भी अच्छा है, तो मैंने ताइवान पिंक अमरूद लगा दिया।
0: तो आपने लगाया कब?
1: मेरे पास 4 एकड़ अमरूद है जिसका 2 एकड़ मैंने 2023 में लगाया था। 2023 में लगाने के 1.5 साल कंप्लीट होने के बाद में उसकी मैंने बिक्री शुरू करी, उससे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने नया 2 एकड़ और लगाया।
0: यानी लगभग 4 एकड़?
1: 4 एकड़ जी।
0: और केला?
1: केला मेरे पास 5 एकड़ है, क्योंकि मैं पहले तो केला का कुछ बड़ा काम करता था लेकिन जमीन में वही फंगस के कारण क्षेत्रफल काफी कम कर दिया, और ये जो 5 एकड़ केला भी मेरे पास है वो नई जमीन में है, यानी कि जहां पर हमने इसके पहले केला का उत्पादन नहीं करा था।
0: यानी फफूंद जनित बीमारी लगने की संभावना बिल्कुल नहीं है?
1: जी, केला रोपण के पहले गर्मियों में जब हमको धूप मिलती है, गर्मी होती है, बहुत ही ध्यान देना होता है कि जितनी गहरी और अच्छी जुताई हम करेंगे उतना मेरा पौधा अच्छे से विकास करेगा। बारिश के समय जाड़ा आने के पहले लगभग 4 महीने का जो समय होता है उसमें जितनी अच्छी हम देख रेख कर लेंगे, चूंकि जाड़े में मौसम का दुष्प्रभाव, जाड़ा के कारण, पाला के कारण हमारे केला का विकास सही नहीं होता है, तो इसके लिए जाड़ा शुरुआत होने के पहले हम अपने पौधे को 3-4 फीट का बढ़ा लें, और ऐसा हम तब कर सकते हैं जब अच्छी जल निकास व्यवस्था हो, समय समय पर उसको जो भी फर्टिलाइजर देना हो, खेत को खरपतवार मुक्त रखें, तब उसकी हम ऐसा 4 फीट का वो कर सकते हैं।
0: अभी आपकी फसल किस हालत में है? केला
1: लगभग 70% फूल आ चुका है, 30% में अगले 10-15 दिन में फूल आ जाएगा।
0: यानी आपकी अगेती फसल है?
1: हाँ, थोड़ा सा अगेती है और इसकी कटाई लास्ट अगस्त से शुरू हो जाएगी।
0: उस समय भाव अच्छा रहेगा?
1: बहुत ज्यादा संभावना होती कि शुरुआत में लाभ अच्छा मिले।
0: और अमरूद में कौन कौन सी बारीकी आपने किया?
1: अमरूद में अभी 1-2 साल से फ्रूट फ्लाई और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होता है, थोड़ा सा होता था, लेकिन पिछले साल से कुछ ऐसा हुआ, मौसम में दुष्प्रभाव हो सकता है, तो फ्रूट फ्लाई की बहुत समस्या आ गई, तो इसके लिए अब अमरूद के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उसकी बैगिंग की जाए, फल की बैगिंग की जाए।
0: तो आप अमरूद की बैगिंग की तैयारी में हैं?
1: जी, मेरी बैगिंग मैं राजस्थान से मंगवा चुका हूं, मेरी बैगिंग मेरे घर पे आ गई है, अभी जैसे ही मेरा नींबू के आकार का जो फल होगा तो उसकी बैगिंग हम शुरू करवा देंगे।
0: अमरूद की बागवानी में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप, उसकी रोपाई से लेकर के पूरे साल?
1: जी, अमरूद की फसल में ये जो ताइवान पिंक प्रजाति है ये चूंकि घना लगता है, 8x10 की हमारी दूरी है, हमारे जो पहले के पौधे होते थे उनकी अपेक्षा इसको नमी सब कुछ बहुत अच्छा सा चाहिए, तो पर्याप्त नमी देना होता है, क्योंकि ये ऐसी प्रजाति कि इसमें साल भर फूल से फल बनते रहते हैं
0: जी।
1: थोड़ा सा साल भर में 2 समय ऐसा होता है कि तब थोड़ी सी हैवी फ्लावरिंग होती है या फ्रूट बनता है, वैसे फल मिलेंगे पूरा साल, तो उस समय जिस समय फूल से फल बन रहा हो या फल का विकास हो रहा हो उस समय हमारे पौधे को नमी का बहुत ही ध्यान देना जरूरी है।
0: और खुराक भी?
1: जी, खाद की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन जब हमारा फूल से फल बन रहा हो, जैसे हमको इसमें यूरिया का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, NPK आप डाल सकते हो, पोटास से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें ड्रिप इरिगेशन से आप उसको ऐसे दे सकते हो, मतलब पोटास की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए
0: ताकि मिठास रहे, क्वालिटी
1: जी,
0: रहे,
1: क्वालिटी,
0: पोटास, रोग दोख और कीड़ा मकोड़ा
1: जी,
0: ना लगे,
1: उनका थोड़ा प्रभाव कम होगा।
0: तो कुल मिला जुला करके केला अमरूद उत्पादन करके आप खुशहाल हैं?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जो हम पारंपरिक खेती पहले करते थे उनकी अपेक्षा में केला में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, और केला के विकल्प में जहां पर केला नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणवश, चाहे फंगस के कारण या अन्य कोई कारण, तो उसके विकल्प में ताइवान पिंक अमरूद, इनकी खेती मेरे हिसाब से उपयुक्त।
0: पूरे साल की लागत की बात करें तो एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा कितना होता है केला अमरूद में?
1: डॉक्टर साहब, इन चीजों को मैं अलग अलग करके बता सकता

0: हूँ, साल भर में तो नहीं बता सकते, केला में लगभग 1.25 लाख रुपए एकड़ की लागत आती है। अगर औसत दर्जे का मुझे रेट मिल जाए तो लगभग 3-3.5 लाख का बिक जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि 2 लाख रुपए से 2 लाख या 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक हमको शुद्ध लाभ हो जाएगा, लेकिन ये 15 महीने में होता है।
1: और अमरूद में?
0: अमरूद में लगभग 1 एकड़ की लागत एक साल में प्रथम वर्ष होगी लगभग 50-60 हजार रुपए और द्वितीय वर्ष में इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि अमरूद में एक काम ज्यादा होता है, हर साल उसकी कटिंग करना, और जितना आप कटिंग करोगे, जितनी अच्छी आप कटिंग करोगे, आपको उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा, फल का साइज और उसका स्वरूप दोनों बेहतर होंगे।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हम किसान भाइयों से अपने यही निवेदन करेंगे कि अगर वो केला उत्पादन करते हैं तो केला में जो उनको लाभ हो रहा था, जैसे उनको काम करने में अच्छा लग रहा था, तो अगर किन्हीं कारणवश केला उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका आकर्षण इधर अगर होता है तो उसके विकल्प स्वरूप अच्छी चीज है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, मेरा मोबाइल नंबर है 800-900-2122, 800-900-2122, 800-900-2122।
1: हरीश कुमार वर्मा भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी कहानी थी कि आप केला के लाल तो है ही हैं, आपने नई शुरुआत की है अमरूद उत्पादन की और तरबूज उत्पादन करके आप खुशहाल हैं और किसान भाई आपसे सीख लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रामजीत भैया।
4: हाँ ज्योति बहनी।
3: देखो खेती पाती करक समय अगर हमका मौसम का हालचाल बढ़िया मिल जाए
4: हाँ।
3: तो देखो कितना हमका जो है सुविधा हो जाते है। तो देखे हैं तुम्हारे हाथे में यहाँ मौसम की जानकारी है।
4: भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 अगस्त से जौन 19 अगस्त तक का मौसम है कि संभाग में कहूं कहूं पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है और चेतावनी देखा जाए तो मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के चेतावनी है।
3: तो भैया किसान पंच अपन तैयारी रखें, अपने खेतन की मेढ़ सुधिया लिए भैया।
4: बिल्कुल बहनी बहुत जरूरी है। और अब पंच भाई का बताए दिन जाए अपने कार्यक्रम का पता। तो कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन नंबर 226001।
3: रामजीत भैया।
4: हाँ ज्योति बहनी।
3: अब देखो हम अपन ईमेल आईडी बता दे। तो ईमेल आईडी लिख लिए सब लोग, farmandhomeairlko@gmail.com।
4: बिल्कुल बहनी। और देखो समय हो चला है तो पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा ये अभियान। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू हो गया नया ड्रेस कोड। 15 अगस्त से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में लगाई जाएगी वंदे मातरम वाटिका। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा में जीपीओ और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अयोध्या में गांधी पार्क के सामने से शुरू हुई यात्रा का शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने किया। वहीं बाराबंकी में जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मैनपुरी में अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। फतेहपुर में स्कूली बच्चों ने 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा मानव श्रृंखला बनाई। मऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कानपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तिरंगा अभियान घर घर पहुंच रहा है। मैं प्रदेशवासियों से, कानपुर वासियों से अपील करता हूं, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के अपने घर पर तिरंगा फहराएं। और बिठोर के हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, यहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र प्रथम की भावना से हम घर घर जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को नंबर एक पर ले जाने का काम करेंगे।
0: प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कानपुर देहात में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने लगभग 1200 फीट लंबे तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहराइच में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए।

0: इस मौके पर उन्होंने तिरंगा अभियान के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
1: मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी और उस विचारों को, उस सोच को, जो आज पूरे देश में एक साथ हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। पूरे देश भर के कोई गांव, गली, शहर, नगर कुछ भी नहीं बचेगा जहां तिरंगा ना हो। और ये सोच जो डेवलप हुई है, निसंदेह मुझे भारत के प्रति, अपने देश के प्रति एक करने के लिए, संगठित होने के लिए एक बढ़िया अवसर देती है।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में बदलाव के क्रम में रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक अब एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति ने अर्चकों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है, जिसे 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे।
2: हमारी संत समिति ने निर्णय लिया है कि वो सूचीबद्ध जो यानी कि सिला हुआ वस्त्र ना हो, ऐसा रेशमी सिल्क का वस्त्र होगा, नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय होगा। शरद कालीन ऋतु में ऋतु के अनुसार होगा वस्त्र, लेकिन कलर वही रहेगा, पीत वस्त्र में रहेंगे सभी लोग, ये तय किया गया है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की वाद सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची एवं न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ इस मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में 34,947 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विज्ञान और तकनीक की आवश्यकता पर बल दिया।
3: जल प्रबंधन 5 करोड़ का खर्च करके एक सुंदर इसमें 3 प्रकार का विभागों को नष्ट कर, 28 लाख रुपया का खर्च करके इसरो का बड़ा सुंदर बनाया। इसरो के चेयरमैन खुद ये देखने के लिए आए और हमारे बच्चों को तैयार किया और आज 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे जिस तरह उसका देखाते समझाते हैं कि है क्या क्या टेक्नोलॉजी है, हम गगनयान के लिए क्या काम कर रहे हैं, चंद्रमा की धरती पर हम कैसे उतरे, ये सब आज इतने होशियार हो गए हैं, मैं जानता हूं तो मुझे भी समझाने लगता।
0: प्रदेश के वन विभाग की तरफ से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दीपक कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान में आम नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी। एक रिपोर्ट।
4: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी सीतांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: रक्षाबंधन पर्व के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक परिवहन व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने 26 से 31 अगस्त तक प्रदेश में अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि त्योहार से पहले और उसके बाद यात्री

यात्रियों की संख्या को देखते हुए परिवहन निगम को अधिकतम बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर यात्रियों की अधिक आवाजाही के मद्देनजर इस दिशा में अतिरिक्त सेवाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यात्रियों की मांग के अनुसार लखनऊ और कानपुर समेत विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के लिए भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में गोमती नदी को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत व्यापक कार्य योजना तैयार की है। शहर से निकलने वाले सीवेज को सीधे गोमती नदी में पहुंचने से रोकने के लिए नालों की टैपिंग, फ्लो डायवर्जन, एसटीपी की क्षमता बढ़ाने और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद गोमती नदी में गिरने वाले 45 नालों की पहचान हुई है। राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि विभाग ने नए नालों की पहचान की है, जिन्हें जल्द शोधित किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। गोरखपुर में आज तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अयोध्या और आसपास के जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी व अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा ये अभियान। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड। 15 अगस्त से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में लगाई जाएगी वंदे मातरम वाटिका। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे अमन कुमार के आलेख पर आधारित रूपक तिरंगा नहीं झुकने देंगे। प्रस्तुति शोभित शर्मा की होगी और प्रस्तुति सहायक होंगे सुबेंद्र सिंह और आलोक कुमार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:32 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कव्वाली। गायक कलाकार हैं नुसरत अली और साथी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की ये पहली कव्वाली नुसरत अली और साथियों की आवाजों में। तेरी मौजूदगी में जिंदगी में एक अलग ही सुकून आ जाता है। उदास चेहरे पर मुस्कान और सूने रास्ते पर रोशनी बिखर जाती है। तू है तो दुनिया बेमानी सी लगती है। एक तू ही तो है जिसे देख सांसें रवा हो जाती हैं। एक तू ही तो है जिससे जिंदगी जवां हो जाती है।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, जलवा यार न देखा तो क्या देखा। जलवा यार ने कुछ ऐसी अदा पाई है, हर झलक एक नया दावा यकताई है। जख्म दिल हो गए फिर उनकी इनायत से हरे, मेरे गुलशन में फिर एक ताजा बहार आई है।

0: रूमानी सनम हो तो कोई रंज सताता नहीं, रूहानी सनम हो तो रूहों की बातें होती हैं और रूह फलक तक छू लेती है ऊंचाइयों को और इस जहां का कोई गम शेष नहीं रहता। नुसरत अली और साथियों की आवाज में अभी आपने ये कव्वालियां सुनी। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम संसद समीक्षा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा का 271वां सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान उच्च सदन की उत्पादकता महज 39.17% रही। उच्च सदन में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तथा नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी

राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि यह संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंधना द्रुमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडी के सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा, अनुचित

साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मानसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा,
छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के

0: नवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्यवाही में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akash.
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या।

जॉली मुखर्जी की आवाज में संगीत फिल्म का यह गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था संतोष आनंद ने, धुन तैयार की थी आनंद मिलिंद ने। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सनम से, समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया आनंद मिलिंद ने, आवाजें कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं साजन फिल्म का गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौड़वाल ने। शब्द रचना समीर की, संगीत नदीम श्रवण का।

साजन फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आपने सुना। इसी गीत के साथ गीत संध्या कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं धरती कहे पुकार के फिल्म से कुछ गीत। श्रोताओं, ये फिल्म सन 1969 में प्रदर्शित की गई, जिसके निर्देशक रहे दीनानाथ शास्त्री और निर्माता दुलाल गुहा। जितेंद्र नंदा, संजीव कुमार ने इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

धरती कहे पुकार के इस फिल्म के गीत अभी आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम है एक ही फिल्म से। श्रोताओं, इस फिल्म की यदि बात करें तो ये फिल्म अपने समय की बहुत ही लोकप्रिय फिल्म रही, और इसके संगीत की यदि बात की जाए तो आज भी इसके गीत बहुत ही प्रेम से सुने जाते हैं। इस फिल्म के लिए गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं एक और गीत मुकेश की आवाज़ में।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

0: धरती कहे पुकार के इस फिल्म से कुछ गीत अभी आपने सुने। इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। अगला प्रसारण दिल्ली से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
4: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
2: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया।

0: समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
2: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
3: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केनिया और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 520 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
4: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे

0: आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1,500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान

बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। 12 बिलों की मंजूरी के साथ पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज खत्म हो गया। हुकूमत ने बहस से आरी इजलास के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार करार दिया है। मुल्क की बरामदात में जुलाई के महीने में 13% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अकवामे मुत्तहदा सलामती काउंसिल की एक रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके को अलकायदा से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, ओडिशा, गंगाई, मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। और दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम सोने के 13 तमगों के साथ 35 तमगे हासिल कर चुकी है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट का मानसून इजलास पिछले महीने की 20 तारीख को शुरू हुआ था। 25 दिन पर मुश्तमिल 19 नशिस्तों के बाद मानसून इजलास आज खत्म हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: मानसून इजलास के दौरान ऐवान में कानून साजी और कौमी मामलात पर बहस की गई। कई अहम बिल मंजूर किए गए जिनमें पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, कौमी तज़ीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल, ट्रिब्यूनल में इस्लाहात से मुतालिक बिल, टैक्स और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल, इमदाद बाहमी की तरक्की की कौमी कारपोरेशन से मुतालिक तरमीमी बिल और केरला नाम तब्दील करने से मुतालिक बिल 2026 शामिल हैं। पार्लियामेंट ने गैर मुल्की अतियात को मंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच पड़ताल के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के पास भेज दिया है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मजीद शफाफ और जवाबदेह बनाना है। अलबत्ते इजलास के दौरान नीट पेपर लीक के मामले पर तलबा के एहतजाज के सिलसिले में एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई के सिलसिले में और अयोध्या राम मंदिर में दिए गए दान की रकम में मुबैना धांधलियों के सिलसिले में बार बार रखना अंदाजी भी देखी गई। हुकूमत की जानिब से कई बार यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि वो तलबा के मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा और ऐवान की कार्रवाई में रखना डालते रहे। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: इस दौरान पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने अपोजिशन पर पार्लियामेंट में बहस से फरार इख्तियार करने का इल्जाम लगाया, जबकि हुकूमत उसके लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट का रवैया जमहूरियत, बिलखसूस पार्लियामानी जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट बहस, तबादला ख्याल और कानून साजी से मुतालिक कार्रवाई के लिए है, लेकिन लगातार नारेबाजी और एहतजाज से मानसून इजलास में ऐवान की कार्रवाई मुतासिर रही। जनाब रिजिजू ने कहा कि मानसून इजलास के दौरान 12 बिलों को मंजूरी दी गई, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पर दोनों ऐवानों में बहस हो पाई। उन्होंने ये भी बताया कि इस इजलास के दौरान लोकसभा की कारकर्दगी 19% और राज्यसभा की कारकर्दगी 39% रही।
2: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करना नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: जनाब रिजिजू ने इस बात पर तश्वीश का इजहार किया कि पहली मरतबा पार्लियामेंट में आए कई अराकीन पार्लियामेंट बार बार की रखनांदाजी के सबब पार्लियामेंट का तजुर्बा हासिल नहीं कर पाए। कोयले और कानकनी के वजीर

ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल यूएनएससी की दहशतगर्दी पर नजर रखने वाली एक टीम ने लाल किले में हलाकत खैज खुदकुश कार बम वाक़े को बर्रे सगीर भारत में अलकायदा AQIS का काम करार दिया है। इस वाक़े में 11 अफराद हलाक हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS अलग अलग ग्रुपों से बढ़कर एक इलाकाई दहशतगर्दाना ग्रुप के तौर पर उभर रहा है और उसने लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल नेटवर्क कायम कर ली है और वो बड़े यूनिटों के बजाय गैर मरकूज छोटे और बिखरे हुए सेल्स की सूरत में काम कर रहा है। इस पस मंजर में टीम ने खबरदार किया है कि जनूबी एशिया में दहशतगर्दी के खतरात बढ़ गए हैं। AQIS अलकायदा के लीडर एमन अल जवाहिरी की जानिब से साल 2014 में कायम की गई थी। न्यूयॉर्क में कायम ताउन और पाबंदियों पर नजर रखने वाली तजियाती टीम ASSMT 10 माहिरीन पर मुश्तमिल है जो उन ग्रुपों और उनकी जैली तंजीमों की जानिब से आलमी दहशतगर्दी के खतरात पर नजर रखती है और वक्फे वक्फे से रिपोर्ट्स और अपडेट्स मुहैया करती है ताकि कमेटियों से ग्रुपों और अफराद के मुतालिक ये फैसला करने में मदद मिले कि किन पर दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मियों के सिलसिले में पाबंदी आयद की जानी है। चीन और रूस ने इस बरस भारत की ब्रिक्स की सदारत के लिए अपनी हिमायत की तौसीख की है। भारत चौथी मरतबा इस ग्रुप की सदारत करेगा। भारत में चीन के सफीर शू फिंगहोंग और रूस के शौजी फेर रोमन बाबुशकिन ने नई दिल्ली में आज विवेकानंद बैनुल अक्वामी फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा ब्रिक्स मुल्कों के सफीरों के राउंड टेबल डिस्कशन में हिस्सा लिया। सफीर यू ने कहा कि चीन आलमी उमूर में ग्रुप की किरदार को मुस्तहकम करने और ताउन को बढ़ाने के लिए भारत और ब्रिक्स के दिगर मेंबर मुल्कों के साथ काम करने के लिए तैयार है। रूस के रोमन बाबुशकिन ने भी ब्रिक्स के सदर के तौर पर भारत की तरजीहात के तहत रूस की हिमायत की तौसीख की और ग्रुप को आलमी खित्ते जुनूब के मफादात में पेशरफ्त के लिए और अमली ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। इस तबादले ख्याल में एक मजाहिम और पायदार आलमी निज़ाम की तश्कील में ब्रिक्स के रोल पर तवज्जो मरकूज की गई जिसमें सबकी शमूलियत कसीर सतहियत और जुनूब जुनूब ताउन पर जोर दिया गया। भारत की 2026 की ब्रिक्स सदारत को जिस मौजू से रहनुमाई हासिल होती है वो है मजाहिमत इख्तराआत ताउन और पायदारियत के लिए तामीर। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकची ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि आबनाए हुरमुज पर वाशिंगटन को मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब अराकची ने अमरीका पर इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम आबी गुजरगाह के बारे में बार बार गलत अंदाजे लगाने का इल्जाम आयद किया। जनाब अराकची का यह तबसरा जनाब ट्रंप के उस दावे के बाद सामने आया है जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि अमरीका को आबनाए हुरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है और वो इसे बरकरार रखेगा। सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ईरान का फौजी बुनियादी ढांचा शदीद तौर पर तबाह कर दिया गया है। इस दौरान ईरान ने यह कहते हुए जनाब ट्रंप के दावों को मुस्तरद कर दिया कि आबनाए हुरमुज बदस्तूर बंद रहेगी और उसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक तेहरान की शरायत कबूल नहीं कर ली जाती। भारतीय महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़ में कल तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अगले 3 से 4 दिनों तक मगरबी बंगाल के तराई वाले इलाके, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात ने इस माह की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, बस्ती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। नाइजीरिया के लागोस में मुनक़िदा 4 रोजा दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप मुकाबलों में भारत 35 तमकों के साथ चैंपियन के तौर पर उभरा है। भारतीय दस्ते ने इन मुकाबलों में अंडर 23 और सीनियर जुमरों में सोने के 13, चांदी के 8 और कांसे के 14 तमगे जीते हैं। सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने मुकाबले के चौथे और आखिरी दिन 6 मुकाबलों में सोने के 5 तमगे अपने नाम किए। इस बेहतरीन कारकर्दगी ने भारत को विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी दिलाने में भी मदद की जो दौलत मुश्तरका तलवारबाजी फेडरेशन की जानिब से मजमुई तौर पर बेहतरीन नतायज हासिल करने वाले मुल्क को दी जाती है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। 12 बिलों की मंजूरी के साथ पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज खत्म हो गया। हुकूमत ने बहस से आरी इजलास के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार करार दिया है। मुल्क की बरामदात में जुलाई के महीने में 13% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की एक

रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके को अलकायदा से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, ओडिशा, गंगाई मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। और दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम सोने के 13 तमगों के साथ कुल 35 तमगे हासिल कर चुकी है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शाइन 2026 युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं ICMR महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत।
1: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देने और देश के युवाओं को विज्ञान तथा अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में ICMR लगातार महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शाइन 2026, शाइन मतलब साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स का दूसरा संस्करण 11 और 12 अगस्त को देश भर में आयोजित किया गया। देश के 83 ICMR केंद्रों पर स्कूली बच्चों को प्रयोगशालाओं में जाने, वैज्ञानिकों से बातचीत करने और स्वास्थ्य अनुसंधान को सीधे तौर पर समझने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के केलोंग से लेकर केरल तक और दमन दीव से लेकर नागालैंड तक देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 30,000 बच्चे इस पहल से जुड़े हैं और इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर बहल, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: डॉक्टर बहल। सबसे पहले शाइन 2026 के सफल समापन पर आपको ढेर सारी बधाई हो। दो दिनों तक ये चला, देश भर के 83 केंद्रों पर हजारों स्कूली बच्चों ने ICMR की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान गतिविधियों को करीब से देखा। आपके लिए इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या रहा?
2: ये कार्यक्रम हमने पिछले साल शुरू किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हर युवा को, हर स्कूली बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए कि वो एक दिन एक साइंटिस्ट की तरह व्यतीत करे, कम से कम साल में एक बार। तो इससे प्रेरित होकर हमने ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस साल 30,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो मेरा अनुभव अपना रहा इसमें, जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे इम्प्रेस किया, वो ये था कि बच्चों की जिज्ञासा जो हमने देखी और जिस तरह के सवाल उन्होंने पूछ रहे थे मुझसे भी, क्योंकि मैंने भी पर्सनली दिल्ली में कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया, और जिस तरह के सवाल वो प्रयोगशाला में और जो एग्जीबिशन लगी थी उनमें और जो साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन में जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे, उसको पूछ के बहुत ही प्रसन्नता हुई के बच्चों में इतनी जिज्ञासा है, इतना कुछ वो जानना चाहते हैं और इतने अच्छी तरह से उन्होंने इसको लिया, और बहुत अच्छा फीडबैक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमें दिया है कि उनको इस प्रोग्राम से आने से उनको कितना अच्छा इस बारे में लगा और आगे उनकी सोच पे इसका क्या असर।
1: बच्चे यानी नेक्स्ट जनरेशन ही हमारे देश के असली भविष्य है। डॉक्टर बहल, क्या बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा जो आपको अभी तक याद है?
2: एक्चुअली 3 बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे लगा कि कोई बड़ा साइंटिस्ट भी पूछ सकता है ऐसे सवाल, इतने अच्छे सवाल थे। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि हम ICMR कैसे आगे आने वाले किसी भी महामारी के लिए तैयारी कर रहा है, कैसे हम जल्दी वैक्सीन बना पाएंगे, कैसे हम जल्दी कोई डायग्नोसिस बना पाएंगे, इसके लिए ICMR क्या कर रहे। तो इतना अच्छा सवाल था क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये, और ICMR इस एरिया में इतने अच्छे काम कर रहा है पहले से ही,

0: तो मैंने अच्छे से बच्चों को इस बारे में समझाया कि किस तरह हम महामारियों को और कोई भी आने वाली बीमारी को, नई बीमारी को किस तरह से ढूंढेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे देश के होने वाले नागरिक, जो विकसित भारत के शायद पहले नागरिक होंगे, वो बच्चे इस तरह का बहुत ही जिम्मेवारी वाला सवाल पूछा उन्होंने। इसी तरह एक बच्ची ने पूछा कि वायरस और कैंसर का क्या रिलेशनशिप है। और जैसा आपको पता है कि अभी ही हाल ही में HPV वैक्सीन लॉन्च हुई है, और ना मुझे अच्छा लगा कि बच्ची पूछ रही है कि कैसे वायरस जो है वो कैंसर करता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसने ये भी पूछा कि क्या कैंसर की कोई नई तरह की वैक्सीन बन रही है। तो मुझे ये सब चीजें तो कटिंग एज है और बच्चों की ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा और उनको इसका जवाब देने में मुझे अति प्रसन्नता हुई कि किस तरह से हम कैंसर को, जैसे सर्वाइकल कैंसर या हिपैटिक कैंसर को वैक्सीन के जरिए हम रोक सकते हैं, किस तरह से जो इम्यूनिटी हमारी है, इम्यून सिस्टम है, वो हमारे को कैंसर से बचाता है, और हम किस तरह से उसके ऊपर नए नए ट्रीटमेंट कैंसर के ला रहे हैं, और पूरे
1: जी
0: विश्व में कैंसर पे किस तरह का रिसर्च हो रहा है, ये बताने का मुझे मौका मिला ऐसे प्रश्न को पूछ सुनने से। और भी कई तरह के क्वेश्चन मैंने उनके देखे जब मैं प्रयोगशाला में गए और वहां पर पूछ रहे थे कि जिस तरह मस्कीटो का लाइफ साइकिल है, इसका क्या मतलब होता है, क्या ये सिर्फ जो अंडे हैं ये सिर्फ पानी में पनपते हैं, उस तरह उन्होंने देखा कि किस तरह से ये होता है। तो ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा।
1: बिल्कुल, आपसे अगला सवाल हमारा ये है कि शाइन में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों के साथ सीधे बातचीत का अवसर मिला। क्या आपका मानना है कि ऐसी पहल से बच्चे साइंस को केवल अब एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि करियर और नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना शुरू कर चुके हैं?
0: जब किसी चीज को बच्चा देखता है और एक अपने स्कूल में एक विषय की तरह देखता है, एक किताब पढ़ के देखता है और कुछ छोटे मोटे प्रयोग करता है, लेकिन जब वो आके ये देखता है कि किस तरह से रिसर्च जो चीजों को चेंज कर रही है, कोई नई चीज, नया डायग्नोस्टिक या नई वैक्सीन बनाने में मदद कर रही है, तो उस एज पे, उसके दिमाग पे उसका एक बहुत अच्छा और बहुत गहरी छाप पड़ती है, और उससे उसकी ना सिर्फ जिज्ञासा बढ़ती है बल्कि उसको ये भी समझ आने लगता है कि ये भी एक ऐसा चीज है जो हम कर सकते हैं। यही नहीं कि हम सिर्फ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या कुछ और इस तरह की अपने प्रोफेशन करें, बल्कि हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं।
1: और इस काम में ICMR, जैसा कि आप बता रहे हैं, बच्चों को मदद करने के लिए बेहद तत्पर है। डॉक्टर राजीव बहल, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जिनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रेसिजन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ बड़ी तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र को बदल रहे हैं। क्या AI और नई टेक्नोलॉजीज के आने से आने वाले सालों में भारत के हेल्थ रिसर्च को कोई इसमें फंडामेंटल चेंजेस, बदलाव आ सकता है?
0: बदलाव आ सकता है और अवश्य ही आएगा, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज भारत ने अपने आप भी विकसित किए हैं, अपनी हमारी जिस तरह की कैपेसिटीज डेवलप हुई हैं इस देश में पिछले सालों में जब से हम आजाद हुए हैं, सबसे हम अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले एक दशक में खास तौर एक तरह का कॉन्फिडेंस जो आया है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ इसको यूज करेंगे बल्कि हम इसमें अग्रसर रहे। जिस तरह से भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में उदाहरण के तौर पे UPI को यूज करके, जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल उसमें अपना टिक्का जमाया पूरे विश्व में, इसी तरह से भारत डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे, ये ऑलरेडी हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह जीनोमिक्स इंडिया में हो रहा है, ऐसा इस तरह की चीज जो आज हम कर रहे हैं, वो हम वही सब कर रहे हैं जो विश्व में कहीं भी ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध है, वो हमारे पास भी उपलब्ध है।
1: डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज भी स्वास्थ्य से एक तरीके से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और क्लाइमेट चेंज के कारण नई तरह के की हेल्थ चैलेंजेस, इन्फेक्शस डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है। ICMR इन इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स

0: के लिए अपनी रणनीति में, खासतौर पर रिसर्च की रणनीति में किस तरीके की बदलाव ला रहा है या क्या तैयारी कर रहा है?
1: क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से होता रहा, इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो ये हमारे लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स करेगा। हेल्थ उसमें से एक प्रमुख प्रॉब्लम है जिसको क्लाइमेट चेंज से हमें देखें तो बहुत मुश्किल होने वाली है अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा। तो रिसर्च क्या कर रहा है और रिसर्च इस बारे में क्या हम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि इस तरह की वार्मिंग से, इस तरह के क्लाइमेट चेंज से क्या असर आएंगे और क्या असर हो रहे हैं। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीजेज में अब डेंगू जिसको कहा जाता है, जो बुखार आता है डेंगू होता है,
0: जी
1: वह बीमारी जो है वो उन इलाकों में भी बढ़ रही है जहां पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे जो वेक्टर है डेंगू का, जो मच्छर है, वो वैसे वैसे उसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसी तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कि कार्डियक डिजीज और हाइपरटेंशन, ये बीमारियां जो हैं इनका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है जब क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसे ही जो किडनी फेलियर है देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी इसका प्रभाव रहता है। तो पहली चीज तो हम ये कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हो रहे हैं उसको समझ के वो हम सामने लाए। जो हमारी रणनीति है वो है इनकी एमिलियोरेशन, यानी कि इनको किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन को रखते हुए इनको किस तरह से हम इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा काम करने का समय है, क्या हम उसमें बदलाव ला सकते हैं? क्या हम भरी दोपहर में लोगों को बाहर काम ना करना पड़े इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के घर बना सकते हैं कि जो उस तरह से गर्म ना हो जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी घर होते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं?
0: आप मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि उपचार के साथ साथ बचाव यानी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पर भी ICMR ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसके बारे में भी लोगों को जागरूक बना रहा है।
1: बिल्कुल, ये इंटरवेंशन जो प्रिवेंशन के हैं और हेल्थ के जो दुष्प्रभाव क्लाइमेट चेंज के हैं उससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसका इलाज, जैसे अगर हीट स्ट्रोक और दूसरी तरह की जो तकलीफें होती है उसका इलाज करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि हम किस तरह से एक तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको रोकें और दूसरा कि उसके प्रभावों को कम करें।
0: डॉक्टर राजीव बहल, यदि शाइन में शामिल कोई 15-16 साल का बच्चा ये कार्यक्रम सुन रहा है और आपसे ये सवाल पूछता है कि मैं अभी से वैज्ञानिक बनने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप उसे क्या सलाह देंगे?
1: तो मेरी सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, उसको सोचिए। ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट को याद करना है, ये सोचिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं अगर बच्ची है तो वो क्यों होता है, इसको किस तरह से हम सोचें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ उसको जाके समझ के और कोशिश करें जानने की कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या है और उसको कैसे साइंटिस्ट ने पहचाना। दूसरी चीज ये है कि अपने मन को खुला रखिए, अपने को इस वक्त आप 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं, आप अपने को एक क्यूरियस स्टूडेंट के रूप में, जैसे कि आपने देखा हमारा मैस्कॉट है डॉक्टर क्यूरियो, और उसका नाम ही हमने इसलिए रखा है कि यह आपकी क्यूरियोसिटी को आप रखें। और आज आपके पास अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने टीचर्स के अलावा, आपके पास और भी बहुत संसाधन हैं, जैसे कि आप AI अपने किसी पेरेंट्स की मदद से या अपने किसी बड़े की मदद से भी AI के जरिए भी सीख सकते हैं, आप इंटरनेट के जरिए सीख सकते हैं। तो आप अपने सारे रिसोर्सेस को यूज करके अपने मन को इस तरह से अगर आप सीखेंगे तो आगे जाके आपका वैज्ञानिक बनने का जो सपना है वो अवश्य पूरा हो।
0: डॉक्टर राजीव बहल, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए और शाइन के बारे में जानकारी देने के लिए देश के युवा बच्चे कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान में जा सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे शाइन 2026, युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से।

0: जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं आईसीएमआर महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
1: Countrywide.

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए रूपक, तिरंगा नहीं।

सुने देंगे। आलेख अमन कुमार का है, प्रस्तुति सहयोग सुबेंद्र सिंह और आलोक कुमार का है, प्रस्तुतकर्ता हैं शोभित शर्मा।

0: बिजनौर से मुरादाबाद, जीटी रोड पर स्थित नगर नूरपुर कई कारणों के लिए जाना जाता है। जीटी रोड पर स्थित इस नगर की खास पहचान है सन 1942 का करो या मरो आंदोलन। 16 अगस्त सन 1942 को नूरपुर में भारत के दो अमर बलिदानियों परवीन सिंह और रिक्खी सिंह ने प्राण त्याग दिए, परंतु अपने हाथ से तिरंगा नहीं छूटने दी। अगर आप अभी भी नूरपुर थाने की शहादत को नहीं समझ पाए हैं, तब आइए हमारे साथ, हम बताते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था।
1: अरे भाई परवीन सिंह।
2: हाँ रिक्खी सिंह।
1: हमें किसी भी सूरत में नूरपुर थाने पर अपना जान से प्यारा तिरंगा फहराना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
2: अच्छी खासी भीड़ जुटानी होगी भैया।
1: हाँ।
2: अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखानी होगी।
1: बिल्कुल सही कहा भैया।
3: भैया कह तो ठीक रहे हो, देखो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा।
1: वो कौन सी?
3: भाई चारों तरफ से भीड़ आनी चाहिए, जिससे पुलिस कुछ भी समझ ही ना पावे कि अक हो क्या रहा।
1: सही बात है भैया।
4: भाइयों हमें भीड़ का इंतजाम करना है और थाने पर तिरंगा फहराना है।
3: बिल्कुल
4: चलो साथियों संकल्प लेते हैं आज
5: थाने पर तिरंगा फहराना है।
0: देश में चारों ओर से करो या मरो की आवाजें आ रही थी। ऐसे में जनपद बिजनौर का नूरपुर क्षेत्र भी इससे अछूता कैसे रह सकता था। यहां की जवानी के खून में भी गर्मी आ गई, तो बालकों युवाओं और अधेड़ों ने मिलकर 11 और 12 अगस्त की रात्रि को एक गुप्त मीटिंग करके 16 अगस्त को थाने पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। इस मीटिंग की कार्यवाही इतनी गुप्त थी कि पुलिस को उसकी कानों कान हवा न लग पाई। परंतु ये क्या, किसी मुखबिर ने पुलिस को बता ही दिया। पुलिस ने नूरपुर के नन्हे सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और थाने में उससे पूछताछ की जा रही है।
4: जहां मुझे नहीं पता।
6: बहुत हो गई, बता दे बता दे।
7: ओके ओके ओके, नाउ लिसन टू मी। हमें सब सच सच बताओ नन्हे सिंह, तुम लोग क्या करने वाले हो?
4: भला मैं क्या जानू कि होने वाला क्या है।
6: अबे हमें सब पता है, बता दे बता दे, नहीं तो
7: सच क्या है इसके हलक से गुलवाओ।
6: ठीक है जनाब, ठीक है। क्यों बे?
4: कुछ भी कर लो जनाब, कुछ भी कर लो, मुझे कुछ नहीं पता। आपको मैं क्या बता सकता हूँ
3: जनाब। बहुत पीट लिया इसको तो पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, कुछ बताने को तैयार ही नहीं है।
7: आना तो इसे पड़ेगा ही। नन्हे सिंह यू विल टेल, कुछ और तरीका अपनाऊ मैं।
4: जान से मार डालो साहब, मगर मैं कुछ भी बताने से रहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ।
6: बता
4: दे। कुछ भी नहीं जानता हूँ जनाब।
7: सिपाहियों।
3: जी जनाब।
7: इसे तब तक मारो जब तक ये पूरी बात ना बता दे। मारो इसको।
4: जनाब मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता जनाब मुझे।
8: पुलिस ने अपने सभी हथकंडे लगाकर नन्हे सिंह से पूछताछ की, किंतु नन्हे सिंह से रत्ती भर भी सुराग हासिल न कर सकी। और मीटिंग में लिए गए संकल्प के अनुसार 16 अगस्त 1942 को एक जुलूस चंद्रपाल सिंह और छत्रपाल सिंह के नेतृत्व में, दूसरा गोहावर से परवीन सिंह और रिक्की सिंह, नारायण सिंह और किशोरी सिंह के नेतृत्व में, और तीसरा जत्था ताजपुर में डॉक्टर राजकुमार के नेतृत्व में जुड़ा और सिवारा को गरमाता हुआ

0: नूरपुर की ओर बढ़ गया। आह, कितना मनोहारी दृश्य है। सभी मतवाले बिना किसी खौफ के शान से तिरंगी पताकाएं आकाश में लहराते हुए चल रहे हैं। उससे उनके इरादे और हौसले दोनों का पता चल रहा है।
1: भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद।
2: जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद
1: इनकलाब।
2: जिंदाबाद जिंदाबाद।
1: अंग्रेजों
2: भारत छोड़ो।
1: अंग्रेजों
2: भारत छोड़ो।
1: अंग्रेजों
2: भारत छोड़ो।
1: अंग्रेजों
2: भारत छोड़ो।
3: Attention! Now listen to me carefully. सभी ध्यान से सुनेंगे। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ के लोग थाने पर अटैक करने वाले हैं। हमें कस्बे के लोगों को मिसगाइड करना है।
4: ठीक है जनाब।
3: उन्हें बताना है कि भीड़ उन्हें लूटने आ रही है।
4: जी ठीक है सर।
1: इनकलाब
2: जिंदाबाद।
1: जिंदाबाद
2: जिंदाबाद। जिंदाबाद
1: इनकलाब।
2: जिंदाबाद जिंदाबाद।
3: लगता है वो लोग आ गए। सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लो।
4: ठीक है जनाब।
3: यू नो वेरी वेल तुम्हें क्या करना है। ओके
4: जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
5: जी जनाब।
0: वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लोकेंद्र त्यागी बताते हैं,
6: महात्मा गांधी जी के अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रेरित होकर क्षेत्र के अनेक लोग 16 अगस्त को नूरपुर थाने पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया, जिसमें ताजपुर क्षेत्र के भी लोग थे, नेहटौर क्षेत्र के लोग भी थे और फीना क्षेत्र के और रतनगढ़ क्षेत्र के लोग भी थे। इसमें जब ये लोग इकट्ठा यहाँ हुए और झंडा फहराने के लिए, तो नेहटौर रोड के आने के लिए उस समय के चौधरी भोपाल सिंह त्यागी नेहटौर, लल्लू सिंह शर्मा निवासी बालापुर के साथ सैकड़ों लोगों ने एक योजना बनाई कि जिला मुख्यालय से पुलिस प्रशासन उनके इस आंदोलनात्मक कदम को कोई रोक ना पाए, इसलिए उन्होंने उस भरी भरी बरसात में क्षेत्र के ग्रामीणों से सहयोग लेके सब आज़ादी के जो दीवाने थे सबने मिलकर बालापुर के पास उस सड़क को काट दिया और जिले से संपर्क तोड़ दिया, जिससे उनके कुछ इस अभियान में कोई व्यवधान ना हो पाए। उधर ताजपुर क्षेत्र के, गुहावर क्षेत्र के और पीना क्षेत्र के लोग यहाँ थाने पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। उन्होंने यहाँ पर तिरंगा अपने लिया और फहराने की तरफ चले। उसी समय बुनियाखेड़ी निवासी परवीन सिंह युवा अवस्था में उस समय शहीद हो गए ब्रिटिश पुलिस की गोली से, और जबकि रिक्की सिंह निवासी असगरीपुर ये घायल हो गए थे, जिनका बिजनौर जाकर निधन हो गया था। 16 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन नूरपुर के लिए है और ये हमेशा रहेगा, और अब धीरे धीरे वो नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरित करने के लिए पहले से ही है। 16 अगस्त को एक मेला लगता है।
7: आजादी के मतवाले थाने की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्या, पुलिस ने फीना की ओर से आए जुलूस पर लाठी चार्ज कर दिया है। भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे अरे, किंतु ये क्या, जिस जिस को लाठी लग रही है वही किसी जख्मी शेर की भांति गुस्से में आकर थाने की ओर बढ़ रहा है। नारे आकाश में गूंज रहे हैं, नारे तेज होते जा रहे हैं।
1: इनकलाब
2: जिंदाबाद।
1: जिंदाबाद
2: जिंदाबाद।
1: इनकलाब
2: जिंदाबाद।
1: अंग्रेजों
2: भारत छोड़ो।
1: अंग्रेजों
2: भारत छोड़ो।
1: महात्मा गांधी
2: जिंदाबाद।
1: महात्मा गांधी
2: जिंदाबाद।
1: अंग्रेजों
2: भारत छोड़ो।
1: अंग्रेजों
2: भारत छोड़ो।
7: अब तो तीनों ओर के जुलूस और नूरपुर की जनता भी लाम बंद होकर मुकाबले के लिए थाने के सामने डटकर खड़ी हो गई है। लगभग 15,000 से ज्यादा की भीड़ होगी और पुलिस भी डंडे और बंदूकों के साथ मुस्तैद है। पता नहीं क्या होने वाला है। सभी युवकों में जैसा जोश दिख रहा है उससे लग रहा है

0: कुछ तो बड़ा होने वाला है।
1: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
2: क्या चाहते हो तुम लोग? What do you want?
1: आज हमारा फैसला है, थाने पर तिरंगा लहराएंगे।
2: No. It's not possible.
3: ऐसा होकर रहेगा दरोगा जी?
2: It's not possible. ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।
3: हमने संकल्प लिया है, हम ऐसा करके रहेंगे।
2: Never, stupid man. मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
3: हमें शांतिपूर्वक ढंग से तिरंगा फहराने दीजिए। हम कोई विवाद नहीं करना चाहते। तिरंगा फहराकर चले जाएंगे हम।
4: चले जाएंगे हम, चले जाएंगे।
2: इससे पहले कि मैं सिपाहियों को लाठी चार्ज का ऑर्डर दूं, चले जाओ यहाँ से।
3: हम यहाँ जिस संकल्प के लिए आए हैं, वो पूरे किए बिना हम नहीं जाएंगे दरोगा जी।
1: अंग्रेजो
5: भारत छोड़ो,
1: अंग्रेजो
5: भारत छोड़ो।
1: भारत माता की
5: जय,
1: भारत माता की
5: जय।
1: इनकलाब
5: जिंदाबाद,
6: जिंदाबाद।
2: भैया
6: जी जनाब,
2: लाठी चार्ज।
6: ठीक है,
3: तिरंगा जी फहरेगा, भले हमारी जान चली जाए।
7: हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं जाएंगे। तिरंगा फहराएंगे,
3: तिरंगा फहरा कर रहेंगे।
1: अंग्रेज प्रशासन।

0: स्वतंत्रता सेनानी श्री चरण सिंह सुमन अपनी पुस्तक स्वाधीनता संग्राम के वीरों की गाथा में लिखते हैं, हालांकि जान पर खेलकर थाने के ऊपर झंडा लगाने की कसम खाई गई थी, तथापि पूर्ण शांति से ही उसे फहराने का विचार था, किंतु पुलिस चूंकि मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ चुकी थी, पुलिस ने यह भ्रम फैलाया कि ये भीड़ नूरपुर को लूटने के लिए इकट्ठा हुई है। पुलिस के इस झांसे में आकर कस्बे के कुछ लोग पुलिस के साथ हो गए। इससे पुलिस का हौसला बढ़ गया। उसने निहत्थे प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। दोनों ओर से रेलम पेल शुरू हो गई। उस धक्का मुक्की में काफी लोगों को चोटें आईं। प्रदर्शनकारियों का उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। इस माहौल में पुलिस अपनी आदत पर उतर आई और ताबड़तोड़ लाठियां चलाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। वे लाठियों के जवाब में नारा लगाते रहे,
1: जय भारत माता की जय, मारो हमें कितना भी
2: नहीं जाएंगे,
3: लाठी बरसाओ,
4: तिरंगा फहरा कर रहेंगे,
3: एक आदमी यहाँ से भाग ना जाए।
4: जनाब मार तो बहुत रहे हैं लेकिन इन पर तो कोई असर ही नहीं है।
2: जनाब नहीं आता, एक बार तिरंगा फहराएगा।
5: इंकलाब
2: जिंदाबाद,
5: जिंदाबाद,
2: जिंदाबाद, मर्दाबाद।
3: कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा।
4: बहुत बहुत लाठी बजा दी जनाब, आप सिपाही थक रहे हैं, ऐसे तो भीड़ जाने वाली नहीं है जनाब। अगला आदेश जनाब, जनाब अगला आदेश।

ये क्या? पुलिस हवा में फायरिंग कर रही है। गोलियों की आवाज से भीड़ में से कुछ ही लोग इधर उधर हो रहे हैं। आजादी के मतवाले तो जैसे सर पर कफन बांध कर निकले हैं। ये तो किसी पत्थर की दीवार से डटे खड़े हैं। दरोगा भी पूरा जालिम नजर आ रहा है। अरे अरे, ये क्या? युवाओं को निशाना बनाकर गोलियां चलाई जाने लगी हैं। ओह, घबराहट हो रही है। अगर यहां खुली जगह ना हो तो बहुत जाने जा सकती हैं। गोलियों की बौछार से भीड़ तितर बितर हो रही है। ये क्या? अभी अभी किसी के चीखने की आवाज आई है। लगता है किसी को गोली लगी है। आओ आओ, देखते हैं क्या हुआ।

0: Stop! Stop fire!
1: जी जनाब।
0: सिपाहियों, देखो कौन मरा कौन बचा।
1: जी जी। अरे ये कौन है? इसका तो पूरा शरीर छलनी हो गया है, मगर तिरंगा इसने अभी भी हाथ से नहीं छोड़ा है, और ये तो खड़ा है।
0: जस्ट मिनट।
1: ठीक है जनाब।
0: तिरंगा इसके हाथ से निकाल का फेंक दो।
1: ठीक है जनाब।
2: आज हमारा फैसला है, थाने पर तिरंगा लहराएंगे।
0: प्रवीण सिंह, हाँ यही नाम है ना तुम्हारा? यू ब्लडी फूल, अगर जिद नहीं छोड़ी होती तो जान बच सकता थे।
2: जान की परवाह किसे है जनाब? आज हमारा फैसला है, थाने पर तिरंगा लहराएंगे।
1: जनाब इसका तो सिर लुढ़क गया है, गर्दन भी सीधी नहीं रही जनाब, लगता है मर गया।
0: बच्चा अभी तक तिरंगा इसके हाथों में क्यों है? I will not tolerate it. निकालो इसे बाहर।
1: निकालने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं जनाब, छूट ही नहीं रहा।
0: अरे खींचो इसको।
1: जी जी ठीक है जनाब।
0: केरोसिन डाल के आग लगा दो इसको, कर दो इसका अंतिम संस्कार। एक एक सबूत मिटा डालो।
1: जनाब देखो ये एक दूसरा भी है, इसकी तो सांसें भी चल रही हैं।
0: ओ, एक और। ओके, इसको भी थाने के अंदर खींचो।
1: ठीक है जनाब।
0: हटाओ इसके हाथ से भी तिरंगा। What is your name?
2: क्या कह रहे हो?
0: What is your name? क्या नाम है तेरा?
2: रिक्की सिंह।
0: Leave it! छोड़ो ये तिरंगा।
2: इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। दरोगा जी,
1: छोड़ दे झंडे को।
2: हमारा फैसला है, थाने पर तिरंगा लहराएंगे।
0: लुक देखो उधर, तुम्हारा साथी मर गया। लुक,
2: तुमने मारा है उसे दरोगा जी।
0: यस,
2: तुमने मारा है उसे। तुम्हारी
0: विल आल्सो बी किल्ड, तुम्हें भी मार दिया जाएगा।
2: अंग्रेजी हुकूमत ने मारा है इसे। इस हुकूमत की जड़ एक दिन जरूर हिलेगी।
3: देखा आपने, गुनियाखेड़ी के परवीन सिंह का शरीर छलनी हो गया है, फिर भी उन्होंने तिरंगा छोड़ने की बजाय मृत्यु को चुना है। क्या आप भी इसे मृत्यु ही कहेंगे? नहीं नहीं, यह बलिदान है, ऐसा बलिदान जो अमर हो गया है।
4: ओह, अस्करीपुर के रिक्की सिंह अचेत हो गए हैं, और पुलिस उन्हें अचेत अवस्था में ही थाने में खींचकर ले जा रही है। ये कौन है जो उठकर भाग लिए हैं? इनमें से एक तो ढेली के मुंशी राम है, इनके सिर से खून बह रहा है, और ये दूसरे गोहावर के नत्थू सिंह हैं, इनके कंधे से काफी खून बह रहा है। ये वीर खून से लथपथ होने के बावजूद पुलिस की पकड़ से दूर हो रहे हैं। अब प्रदर्शन का तूफान शांत है, लगता है मेला उजड़ गया है।
3: स्वतंत्रता सेनानी नारायण सिंह के पुत्र सहदेव सिंह बताते हैं,
5: 1942 में यहाँ पर थाने पर चढ़ाई की गई थी, जिसमें दो व्यक्ति शहीद प्रवीण सिंह और रिक्की सिंह शहीद हो गए थे, उन्हीं की याद में इस स्मारक की स्थापना की गई थी। सरकार को ये चाहिए कि भाई ऐसे स्मारक को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, ताकि इसकी पहचान पूरे देश में हो। इसके लिए प्रशासन की तरफ से हम ये चाहेंगे कि भाई जो पहले यहाँ 16 अगस्त को मेला लगता था, उसमें यहाँ एक दिन की छुट्टी की जाती थी, कि ताकि सारे जिले के लोग यहाँ बच्चे यहाँ उपस्थित हों और इसकी जानकारी लें, और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सबका उन्हें लाभ मिले।

0: स्वतंत्रता सेनानी श्री चरण सिंह सुमन अपनी पुस्तक स्वाधीनता संग्राम के वीरों की गाथा में लिखते हैं, कहते हैं शहीद प्रवीण सिंह के शव को पुलिस ने उसी दिन मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया था, जिससे पुलिस के पाप और अत्याचार का मुद्दा ही समाप्त हो गया। घायल रिक्की सिंह भी जिला जेल बिजनौर में एक सप्ताह के पश्चात हमेशा के लिए भारत माता की गोद में सो गए। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से क्रुद्ध होकर पुलिस ने नूरपुर क्षेत्र के गांव-गांव में दमन चलाया। पुलिस की जबरदस्त लूट खसोट और बेरहम मारपीट से सर्वत्र पुलिस का आतंक बरपा हो गया। इस कांड में उसने 50 युवाओं को गिरफ्तार कर 32 को मुलजिम करार दिया। फीना, अस्करीपुर और गोहावर से ज्यादा व्यक्तियों को पकड़ा गया।
1: वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लोकेंद्र त्यागी बताते हैं,
2: एक मूर्ति इन्हीं जो हमारे स्वाधीनता सेनानी हुए हैं प्रवीण सिंह, उनकी जो चांदपुर रहा है उस पर भी लिखी है और इनके एक शहादत को याद दिलाती है, इनके बलिदान को याद दिलाती है। मेरी शासन प्रशासन से एक ही अपील है कि ये आजादी का आंदोलन किसी पार्टी या संगठन का नहीं था। हमारे देश के युवाओं में जो भावी पीढ़ी है उनके अंदर भी देश सेवा की, राष्ट्र सेवा की भावनाएं जागृत रहें और उसके लिए वो काम करने के लिए प्रेरित हों। इसके लिए जरूरी है कि शासन प्रशासन स्तर से ऐसे मेले, ऐसे स्थानों की महत्ता को बनाए रखा जाए, उसकी साफ सफाई, उसके लिए अगर कहीं टूट फूट है उसका जीर्णोद्धार और जो मेले हैं उसको वास्तविक रूप दिया जाए। तो हम चाहे तो प्रोजेक्टर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम ऐसी उनकी वीर गाथाएं उसको हम प्रदर्शित करें 16 अगस्त को, जिससे वो ये दिवस हमेशा के लिए जिंदा रहे।
1: ग्राम ढेला अहीर के मुंशी राम, भूप सिंह, जसराम सिंह और लीलापत सिंह, इन 4 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। इसी गांव के अन्य 8-10 युवक पकड़े गए। सीमावर्ती गांव पर 6,000 रुपया सामूहिक जुर्माना कर सख्ती से वसूल किया गया। क्रांतिकारियों को निचली अदालत से 6-6 साल की सख्त सजा का हुक्म हुआ। सेशन जज बिजनौर के यहाँ अपील करने पर 16 व्यक्ति झूठे चालान के आधार पर छोड़ दिए गए। शेष की सजा घटाकर 2-2 साल रह गई। इस केस की सफाई में निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस की जाति से बचाने के लिए श्री गोविंद सहाय की प्रेरणा से नारायण सिंह, क्षेत्रपाल सिंह, भूप सिंह, चंद्रपाल सिंह और डॉक्टर भारत सिंह के नाम से एक इश्तिहार प्रकाशित कराया गया। नूरपुर थाने पर जो कुछ किया हमने किया है। हम गिरफ्तार होना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम इस सरकार को हर कीमत पर हटाना चाहते हैं।
0: नूरपुर थाने पर तिरंगा झंडा फहराने के उद्देश्य से किया गया ये प्रदर्शन केस हाईकोर्ट ले जाया गया। हाईकोर्ट ने उन लोगों को छोड़ दिया जिनके नाम इस इश्तिहार में थे। हाईकोर्ट ने कहा, जनता को पुलिस के अत्याचार से बचाने के लिए ऐसा किया गया है, भुगती हुई सजा ही इनके लिए काफी है। शेष व्यक्ति भी इस प्रकार 24 अप्रैल 1944 तक जेल मुक्त हो गए।
1: शहीद परवीन सिंह और रिक्की सिंह की अमर स्मृति में प्रतिवर्ष 16 अगस्त को नूरपुर थाने के सामने शहीद मेला लगता है। एक शहीद विद्या केंद्र भी इन वीरों की स्मृति में इसी स्थल पर चल रहा है। शहीद विद्या केंद्र के प्रधानाचार्य राजवीर सिंह यादव बताते हैं,
3: ये 1967 में यहाँ विद्यालय की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना श्री नारायण सिंह पूर्व संता सेनानी और यहाँ पूर्व प्रधानाचार्य भगवंत सिंह थे, उन्होंने की थी। विद्यालय के पास लगभग 12 बीघे जमीन है जिसपे चारों तरफ से अतिक्रमण हुआ है और सरकारी सुविधाओं के नाम

0: यहाँ केवल विद्यालय में स्टाफ का वेतन आता है, बाकी कोई सुविधा सरकारी नहीं प्राप्त होती है। यहाँ शहीद मेले का आयोजन किया 16 अगस्त को, यहाँ शहीद प्रवीण सिंह और निखिल सिंह जो डाक बंगला था उस पर चढ़ाई करते हुए शहीद हुए थे, उससे संबंधित यहाँ 16 अगस्त को मेला लगता था, पूरे जिले की छुट्टियाँ भी होती थी।
1: नूरपुर के शहीद स्थल पर लगने वाले मेले को देख अनायास ही होठ बुदबुदा उठते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा।

अभी आप सुन रहे थे रूपकात्मक प्रस्तुति तिरंगा नहीं झुकने देंगे। आलेख अमन कुमार का था। भाग लेने वाले कलाकार थे पवन संगम, आलोक कुमार, सुबेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह। सूत्रधार की भूमिका में थे सचिन शर्मा और ममता अग्रवाल। प्रस्तुति सहयोग सुबेंद्र सिंह और आलोक कुमार। प्रस्तुति शोभित शर्मा की थी।

0: अभी आप सुन रहे थे अमन कुमार के आलेख पर आधारित रूपक तिरंगा नहीं झुकने देंगे। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: हम अपने श्रोताओं को बता दें, कल शाम 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। कल रात्रि 8:15 पर हरियाली तीज पर्व के अवसर पर कवि गोष्ठी का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें प्रतिभाग करेंगी श्रीमती सुनीता सोलंकी, पूजा गोयल, सुमन प्रभा। संचालन श्रीमती मंजू जौहरी का रहेगा। फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद आप सुनेंगे कल रात्रि 9:30 पर, और फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम रात के हमसफर प्रसारित किया जाएगा 10:30 पर।

फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाणकर, राही सरिता ग्वाणकर, सिद्धांत प्रिंस एकांश, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित, ध्वनि ग्वाणकर, गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी आकाशदीप, अनहद पोत्रा गुलशबद, तैलीपुरा रवाना शिकारपुर बिजनौर से मोहम्मद यूनुस अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अताउर रहमान, निरंजन सिंह, अब्दुल अजीज, मेन बाजार नहटोर यूपी से एम जुल्फकार राही, मुमताज राही, जुनैद सबा, किरण अयाज कैफ, मोहल्ला अफगानान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम अजीम, अदीम अब्दुल कनी, अलमीर जन्नत, नजमा, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, ग्राम जुजैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, साइना महविश, मोहम्मद अरफान और अदीना नूर। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर प्रस्तुत है खुददार फिल्म का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में, शब्द रचना राहित इंदौरी की और संगीत अनु मलिक का।

कुछ बातें आपकी होंगी, कुछ हम गुनगुनाएंगे, चलिए कुछ इस तरह संगीत की महफिल सजाएंगे। तो श्रोताओं, आपकी फरमाइशी गीतों पर महफिल सज चुकी है। यदि आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9457078288। और आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जिसे भेजी है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिव्यंद भूषण, संस्कृति पौरुष और इनके सभी साथी ने। और हमारे श्रोता जो इस गाने को सुनना चाहते हैं वो हैं शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, आदिब कादिर, कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मिका, बलविंदर, जैतेक और मीका बिरक, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, गौतम नगर से हैं प्रभाकर चौंधले, आरती चौंधले, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित, मोहित और इनके सभी साथी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, नवनीत राय, जयवीर सिंह, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। और ये श्रोता हैं नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, इशरत, रुबीना, आरिज, ममता, पूनम, नव अरहान, हमजा, मुजम्मिल, हुमैरा, सुमैरा, कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से फैसल शेख, नुसहत जहां नाज, शेख टोली, समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज, मुसर्रत।

जहाँ नाज़, और हमारे ये श्रोता हैं करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया शोएब खान, सिंधौली बरेली से जिशान वारिस। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं एक बार फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है हसन कमाल ने, संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने, गायक कलाकार हैं आशा भोसले और भूपिंदर सिंह।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, सिफान सिद्दीकी, यूसुफ, अनाबिया, अलीशा, शकील, फहीम, मोहम्मद यासीन अंसारी, रहमानिया मोहल्ला सीतामणि बिहार से तलत जहानाज, फरहत, रिफत, रूही, वसीम, नदीम, शमीम, अमन और आपके सभी साथी, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी परवीन, साजदारानी हीना कौसर और आपके सभी साथी, और अगले ये हमारे श्रोता हैं परिमहल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, इल्मा, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान। अगले हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, रहुनागी, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका, अक्षत, आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। अगले हमारे ये श्रोता हैं मोहल्ला मंजार चांद से हैं मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली, मंसूरी, अरमान अली, रायना, राहिमेन और आपके सभी साथी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौड़वाल ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म द लीजेंड ऑफ शहीद भगत सिंह फिल्म से। आवाजें सोनू निगम और साथियों की हैं, संगीत एआर रहमान का और शब्द रचना समीर की। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र, शमशेर, मनोज, और ये हैं साउथ एक्सटेंशन गुरमीत सिंह मीता नई दिल्ली से। इसके साथ ही पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी मिसहाक लोलामानी और मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी और आपके सभी साथी। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता, पूजा, विकी, स्वाति, मालती, गणेश, कार्तिक और आपके सभी साथी। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से हैं ये हमारे श्रोताओं के नाम रिपीट हो रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि कृपया एक ही बार आप मैसेज भेजा करें। अगले हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज महम

अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां, गंज डुंडवारा से हैं मिस्टर खिल्लू, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजी शेख, दानिश अमन आफरीदी। और अगले हमारे श्रोता हैं मोहल्ला बारादरी रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह, विनोदपुरी जयपाल यादव। इसके साथ ही राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षित, अभिषेक और आपके सभी साथी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लीजिए पेश है ये गीत।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब तक न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today.